सुहासिनी सुमधुर भा

आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मिलेंगे 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की 10वीं तिथि, तदनुसार 1 अगस्त 2026 प्रातः के 5:57 होने को है। हमारी आज की प्रथम सभा आरंभ

0: आकाशवाणी बीकानेर का ढूंढनारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6 बजने को ही कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखानी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने

0: के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनके और उनके दिवंगत मां के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि इस घटना को देश और दुनिया के लोगों ने देखा है और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश और निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है।
1: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों से चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
0: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सोशल मीडिया कंपनी मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। उनसे एल्गोरिथम में पूर्वाग्रह और सार्वजनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका से संबंधित मुद्दों पर पूछताछ की जाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मेटा की ग्लोबल टीम से अगले सप्ताह के मध्य में पूछताछ होने की संभावना है। टीम को संसदीय समिति के समक्ष भी पेश होना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में भोगपुरम स्थित अन्नूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित इस हवाई अड्डे को प्रतिवर्ष 60 लाख यात्रियों को संभालने के लिए तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री इस दौरान विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूर पहुंचेंगे। यहां वो स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। मंत्रिमंडल ने 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये निर्णय युवा विकास और राष्ट्र निर्माण के लिए खेलों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
2: कंप्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा। स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, मेंटोरशिप हो, उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है। 29,000 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है 5 ईयर्स के लिए और ये सीधा वीव इन करेगी ओलंपिक, पैरालंपिक और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले हैं 2030 में भारत में, उन सब के साथ ये वीव इन करेगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम से बात कर उन्हें पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी। कल सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बताया कि बातचीत के दौरान दोनों नेता प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, शिक्षा और जनधन संबंधों जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने और भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर सहमत हुए। दिल्ली सरकार ने बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा का लाभ उठाने के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के अनिवार्य उपयोग की समय सीमा 16 अगस्त तक बढ़ा दी है। संशोधित निर्णय के अंतर्गत 15 अगस्त तक पिंक टिकट जारी किए जाएंगे। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने जूडो में पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में स्वर्ण पदक जीते। भारत के अब तक कुल 31 पदक हो गए हैं, जिसमें 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:05 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आज का विचार। कार्यक्रम में हम आपको सुना रहे हैं नैतिकता विषय पर डॉक्टर छगन मेहता के विचार।
4: नैतिकता का मानदंड क्या है? नैतिकता शब्द

शब्द का भावार्थ दो शब्दों से प्रचलित है, एक है सदाचार और दूसरा है लोकाचार। नैतिकता अंग्रेजी भाषा में प्रचलित शब्द मॉरलिटी का हिंदी अनुवाद है, जो मॉरल का विशेषण है, जिसका मतलब लोक सम्मत श्रेष्ठाचार ही होता है। प्रत्येक लोक सम्मत श्रेष्ठाचार या लोकाचार देशकाल और परिस्थिति की आवश्यकता के अनुसार बदलता रहता है, परंतु लोकाचार का मूल सदाचार ही होता है, जो शाश्वत होने के कारण कभी नहीं बदलता। किसी भी लोकाचार में सदाचार पूरी तरह से प्रतिफलित नहीं होता, इसलिए किसी न किसी अंश में किसी देश विशेष या काल विशेष में प्रचलित और परिस्थिति विशेष में व्यक्ति द्वारा आश्रित व्यवहार में और सदाचार में अंतर विरोध पाया जाता है। इसलिए जहां नैतिकता के मूल प्रश्न पर विचार करें तो उसकी सार्वभौमिकता सर्वकालिकता के आधार को ध्यान में रखकर सदाचार को वास्तविक नैतिकता मानना चाहिए और उसी पर विचार करना चाहिए। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि सदाचार की कसौटी क्या हो। इसका उत्तर हमारी संस्कृति के बुनियादी चिंतक महर्षि व्यास के शब्दों में आत्मा प्रतिकूलानी परेशानियां समाचारित इस निषेधात्मक उक्ति के द्वारा दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि जिस आचरण या व्यवहार को व्यक्ति अपने लिए प्रतिकूल समझता है, उस प्रकार के व्यवहार को उसे दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। इस सूत्र की गणना निषेधात्मक है, विधेयात्मक नहीं है, और ये निषेधात्मकता अच्छी तरह सोच समझ कर रखी गई है, क्योंकि इसके स्थान पर यदि विधेयात्मक रूप रखा जाता तो उसका अभिप्राय यह होता कि जिस बात को या व्यवहार को या आचरण को आप अपने लिए अनुकूल समझते हैं, उसी तरह का व्यवहार दूसरों के साथ आपको करना चाहिए। तो पहले में करना चाहिए और दूसरे में करना चाहिए है, परंतु यदि ठीक तरह से समझे तो करना चाहिए कि उक्ति सदाचार के लिए कसौटी नहीं बनती। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति शराबी है या कोई जुआरी है, तो उनको यही अच्छा लगेगा कि दूसरा भी शराबी और जुआरी हो। निषेधात्मक उक्ति में त्रुटि नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि

0: रखना चाहता है तो उसको दूसरे के दो प्राणों की रक्षा करनी चाहिए, उसकी घात नहीं करनी चाहिए। इसी तरह प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि उसके न्यायपूर्वक उपार्जित वस्तु या संपत्ति को कोई दूसरा अपहरण नहीं करे, तो उसे भी किसी दूसरे के न्यायपूर्वक उपार्जित वस्तु का अपहरण नहीं करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति मूल्यदान और कर्म से असंयत होकर अपने भोग वासना की तृप्ति के लिए किसी पुरुष या स्त्री के साथ उसकी अनिच्छा होते हुए भी अपने भोग्य वस्तु से बनने का आचरण नहीं करे, तो उससे भी अपनी वासना की तुष्टि के लिए असंयत होकर छल बल या कौशल से उसे पूरा नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति यह भी चाहता है कि उसके जीवन की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति जिन वस्तुओं से होती है वह उसे ठीक तरीके से उपलब्ध हो, और वह दूसरा कोई व्यक्ति उन चीजों को सुनिश्चित करके दूसरों के लिए दुर्लभ न करे, तो उसे भी बदला में ऐसा नहीं करना चाहिए। यही पांच उदाहरण है जिसे हमारी संस्कृति में धर्म, नियम या व्रतों के नाम से अथवा शील के नाम से प्रकट किया गया है, जिन्हें हम सत्य, अहिंसा, अस्तु और ब्रह्मचर्य, संयम और अपरिग्रह कहते हैं।
1: बिल्कुल, जैसा व्यवहार, जैसी नीति की अपेक्षा हम दूसरों से करते हैं, उसी प्रकार का आचार व्यवहार हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। यही है नैतिकता की सीख जो हमें मिली आज का विचार कार्यक्रम में। अभी आपने सुना नैतिकता विषय पर डॉक्टर छगन मेहता के विचार। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में 6:10 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। शुभारंभ बल्कि श्री गणेश करते हैं हरिओम शरण के भक्तिमय स्वर में।

बेहतरीन शुभारंभ हुआ आज के भक्तिमय संगीत कार्यक्रम वंदना का। लीजिए अब सुनते हैं राधा पौडवाल के स्वर में कृष्ण भजन, मन मथुरा तन द्वारिका, जुगलबंदी कर रहे हैं भरत आचार्य। इसी भजन को रचा है प्रद्युमन शर्मा और भरत आचार्य ने।

आपने सुना मधु पौड़वाल के स्वर में मन मथुरा तन वृंदावन और किया उसका रस स्वादन। भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोले मारू चैनल से सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रभु श्री राम के दिव्य दरबार की ओर चलते हैं, जहां मर्यादा प्रेम त्याग और करुणा का अद्भुत संगम है। सुनते हैं वीणा सहस्र बुद्धि के स्वर में ये भक्ति।

श्री राम लखन और सीता के चरणों में इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:30 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है रामचरित मानस गान। श्रोताओं, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं बालकांड दोहे संख्या 292 से दोहे संख्या 294 की अंतिम चौपाई तक का सस्वर पाठ। मुख्य स्वर ए हरिहरन का है, संगीत सतीश भाटिया का।

अयोध्या की राजसभा में श्री राम लक्ष्मण के पराक्रम की कथा सुनाते हुए राजा जनक के दूत कहते हैं, श्री राम ने बिना प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडियां तोड़ देता है। परशुराम ने जो क्रोध के साक्षात अवतार हैं बहुत आंखें दिखाई, किंतु श्री राम का प्रताप देख अंत में वे भी नतमस्तक हो गए और जाते हुए अपना धनुष भी दे गए। दोनों भाइयों के तेज तथा प्रताप की गाथा सुन अयोध्या की राजसभा में हर्षोल्लास की लहर दौड़ गई। सभासदों ने राजा जनक के दूतों को भांति भांति के पुरस्कार दिए। राजा दशरथ ने कुल गुरु वशिष्ठ के यहां जाकर पत्रिका उन्हें दी और दूतों को वहां बुलाकर सारी कथा कह सुनवाई। हर्ष प्रकट करते हुए वशिष्ठ जी ने आशीर्वचन कहे और महाराज को बारात सजाने को कहा। ये शुभ समाचार जब रनिवास में पहुंचा तो वहां भी आनंद का वातावरण छा गया।

राम चरित मानस गान के आज के अंक में आपने सुना बालकांड दोहा संख्या 292 से दोहा संख्या 294 की अंतिम चौपाई तक का सस्वर पाठ। मुख्य स्वर ए हरिहरन का था। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारो चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:40 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की ओर। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम साहित्य भारती, जबकि रात्रि 10 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम प्रस्तुत होगा। ये दोनों कार्यक्रम अपने दिल्ली केंद्र से प्रस्तुत करेंगे। बात करें जयपुर अजमेर केंद्र से हमें प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की, तो संध्या 7 आप सुनेंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। संध्या 7 आप सुनेगा किसान वाणी कार्यक्रम, जबकि संध्या 6:42 पर सुनेगा जिले की चिट्ठी। श्रोताओं, बीकानेर की सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों का साप्ताहिक कार्यक्रम बीकानेर दर्पण का प्रसारण होगा रात्रि 8 से। श्रोता, हमारी इसी सभा में कुछ ही पलों में आप सुनेंगे 6:45 पर कार्यक्रम खेती की बातें। विषय रहेगा मशरूम की खेती से आय बढ़ाएं, वाचक स्वर श्रीमती मुक्ता जैन का होगा। लोक भजन सुनेंगे 6:50 पर, जबकि सुप्रभात कार्यक्रम सुनेगा प्रातः 7 जिसमें आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक भेंट वार्ता। बीकानेर ट्रोमा सेंटर में उपलब्ध सुविधाएं विषय पर डॉक्टर एल के कपिल से श्रीमती पुनित बिश्नोई की बातचीत 7 प्रातः 7 सुप्रभात कार्यक्रम के अंतर्गत। हमारी प्रातःकालीन सभा में फिल्म संगीत सुनेगा प्रातः 7:30 पर। जय जवान कार्यक्रम होगा प्रातः 10 से, जबकि हेलो बीकानेर का समय रहेगा 11 का। फिल्म संगीत आप फिर से सुनेंगे 12:40 पर और 2:30 पर। हमारी प्रातःकालीन सभा में सौरभ कार्यक्रम के अंतर्गत सुनेगा कविता पाठ कवि श्री गौरीशंकर मधुकर का प्रातः 8:30 पर। सुगम संगीत सुनेगा 8:45 पर और 12:10 पर भी सुगम संगीत का लुत्फ आप उठा पाएंगे, जबकि लोक संगीत सुनेगा प्रातः 9:10 पर। शास्त्रीय संगीत का प्रसारण होगा 9:30 से, जिसमें आज हम आपको सुनाएंगे उस्ताद अमीर खां का नागनिया की मल्हार में गावा ख्याल प्रातः 9:30 पर। बहनी सुनेंगे अपना कार्यक्रम महिला जगत हमेशा की तरह दोपहर 1:05 पर, जिसमें चर्चा के विषय रहेंगे प्रकृति बचाओ, जंगल बचाओ, जीवन बचाओ, विश्व स्तनपान सप्ताह, और एक सुनाएंगे वार्ता योग स्वास्थ्य की चाबी संतुलित जीवन की राह। वार्ताकार होंगी सविता अग्रवाल। कार्यक्रम महिला जगत में दोपहर 1:05 पर। युवाणी का प्रसारण हमेशा की तरह संध्या 5:05 पर सुनेगा। आज की बात का विषय रहेगा भारतीय संस्कृति और युवा पीढ़ी प्रातः 5:05 पर। फिल्म संगीत आप सुनेंगे सांध्यकालीन सभा में 6:05 पर। फिर से आप सुनेगा फिल्म संगीत रात्रि 9:15 पर, जबकि लोक संगीत सुनेंगे आप सांध्यकालीन सभा में 8:30 पर। ग्रामीण भजन सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्रामीण जगत, जिसमें आज 7:30 पर आप लेख सुनेंगे गर्गम गुंजे गांव गुवार, जो कि है फरमाइशी पत्रों पर ईमेल पर आधारित लोकगीतों का कार्यक्रम गुंजे गांव गुवार संध्या 7:30 पर।

0: श्रोताओं, ये था हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारी चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:45 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। आज हम सुना रहे हैं विषय है मशरूम खेती से आय बढ़े। वाचक स्वर है श्रीमती मुक्ता जैन के।
1: किसान भाई राम राम। किसान भाई, आज आप बात करें मशरूम की खेती के बारे में। मशरूम की खेती पहले सबसे मोटो उचित कदम है कि आपने जगह चयन करना जो प्राकृतिक प्रकाश और वातावरण सुखद हुए, बीमारियां और कीटाणु बचाव कम सुखद हुए। स्थानीय किसान और विशेषज्ञ से आपने सलाह लेनी चाहिए। मशरूम की खेती के लिए स्पष्ट, स्वच्छ और सांवले रंग प्लास्टिक

0: उपस्थिति जरूरी हुए है। मशरूम की खेती रवा से अपन एक क्यारिया की तैयारी करनी है जिनमें छोटे छोटे चट्टान या रेतीले मिट्टी का उपयोग करना है। तैयार क्यारिया पर खाद उपयोगिता व्यवस्था करनी है जिया की गोबर बेल पत्र कंपोस्ट आदि। मशरूम में छोटे छोटे छिड़काव में सीधे या गोल टर्मी चट्टाना पर रखना चाहिए जिससे वे नीचे रहे वातावरण में सुरक्षित रह सके। बीजा में स्वच्छ और पानी से भरोड़ी थाली में रखनो और दिन 24 घंटे तक भिगावे रखनो और बिगोड़ा बीजा ने अलग से निकाल दे और बने उच्च स्थान पर सुखाओ। सुखोड़ा बीजा ने क्यारिया में छिड़काव कर देनो और सुनिश्चित कर लेनो कि वे एक दूसरे से प्राथमिकता न मिले। बीजा रे ऊपर छिपाकर उचित मात्रा में मल्टी मीडिया कोबर करनो जिया की छोटी चट्टाना या पानी से भरोड़ा प्लास्टिक पाइप। बीजा रे उबलन के बाद क्यारिया ने उम्र कैद करने के लिए थाली से पनीर उपयोगिता व्यवस्था करनी। मशरूम में धीरे धीरे बढ़ने के लिए नियमित रूप से नमी उपयोगिता हुए है जिया की सीरे रे पानी में स्प्रे करनो। अच्छी गुणवत्ता वाला मशरूम के लिए नियमित रूप से खाद उपयोगिता करनी जिया की सीरा खाद और निर्मित कंपोस्ट। मशरूम की खेती रे वास्ते वातावरण नियंत्रण लिए उचित तापमान आवृत्ति और वातावरण की निगरानी रखनी। रोजाना क्यारिया ने स्वच्छ और बाकी मशरूम से छुटकार पाने वास्ते धोनो। उचित समय पर मशरूम की कटाई करनी जब इन ऊंचाई 4 से 6 सेंटीमीटर हो जाए और क्यारिया की सभी रेखावा ने एक साथ काटा और नए फसल लिए क्यारिया ने पुनः तैयार करनो। मशरूम की कटाई के बाद इन्हें उचित स्थान पर सुखानो और पैक करनो। आप ही खेती रो प्रबंधन करने रवा छे अच्छी तकनीक का उपयोग करना चाहिए जिया की फिल्ट्रेशन प्रणाली और सिंगल सेट प्रणाली। मशरूम की खेती में अच्छा रोग निरोधक का उपयोग करनो जिया की फोजेक टॉपसिन और कैप्टन। मशरूम की खेती में संचार रवा से उचित तरीके रो उपयोग करनो जिया की वायर नॉट या वायरलेस संचार सिस्टम। मशरूम की खेती में उचित प्रबंधन व्यवहार से समय समय माथे प्रशिक्षण ऐसे मीराना में भाग लेनो। मशरूम की खेती में प्रदर्शन व्यवहार से उचित पदार्थ उपयोग करनो जिया की बियर ब्राउन रोट ग्लीसी। मशरूम की खेती से प्राप्त उत्पाद का में स्थानीय बाजार में रेस्टोरेंट वगैरह में सप्लाई करनो। मशरूम की खेती से वित्तीय संसाधन की आवश्यकता से बचो जा सके है जिया की जल संसाधन और भूमि। मशरूम की खेती एक सामुदायिक कार्य हुए है जिसे सामुदायिक विकास में बढ़ावा भी मिले है। मशरूम की खेती से अपने परिवार ने एक अतिरिक्त आय को स्रोत भी अपने मिले है और अपने जिसो अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार आवे और मशरूम की खेती के द्वारा अपन औद्योगिक करियर भी आप बना सका जिसो अपने आवास शिक्षा स्वास्थ्य की आवश्यकता की पूर्ति करने में एक साधन के रूप में मशरूम की खेती मिली है। मशरूम की खेती से आप पर्यावरण के प्रति सतर्कता बढ़ा सका क्योंकि स्थानीय और स्वदेशी उत्पाद का ने भी प्रोत्साहित करे है और जल संसाधन भी बचत करे है। मशरूम की खेती के वास्ते कई फायदा हुए है जिया की मशरूम की खेती से उच्च मूल्य वाला मशरूम उत्पादन हुए है जिसे किसान आय अधिक हुए है। कम समय में पूर्व विकास मशरूम की खेती से आप पूर्व विकास कर सका है जिसे फसल तेजी से निर्धारण हुए है और आर्थिक विकास में मशरूम की खेती किसान ने आर्थिक विकास को अवसर भी मिले है। उच्च पोषक तत्व मशरूम में प्रोटीन विटामिन मिनरल्स और अमीनो एसिड हुए हैं जिसका स्वास्थ्य में आहार पूर्ति में महत्वपूर्ण हिस्सों हुए हैं। प्राकृतिक वनस्पतिक संसाधन और संरक्षण भी मशरूम की खेती से हुए हैं। पर्यावरण सुरक्षा में मदद कर रहे हैं। मशरूम की खेती कम पानी की आवश्यकता हुए है जल संरक्षण का अच्छे उदाहरण में प्रदर्शित कर रहा है।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम खेती की बातें, विषय था मशरूम की खेती से आय बढ़ाए। वाचक स्वर श्रीमती मुक्ता जैन के थे। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनते हैं एक लोक भजन अभय सिंह गहलोत के स्वर में रामथली नगर।

0: आपने सुना कि लोक भजन हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:55 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य एकदिवसीय आंध्र प्रदेश कर्नाटक यात्रायां भविष्यति। आंध्र प्रदेशे प्रधानमंत्री भोगापुरम इत्यत्र अल्लूरी सीताराम राजू अंतरराष्ट्रीय विमानस्थानकस्य उद्घाटनं करिष्यति। सार्वजनिक निज सहभागिता प्रारूपस्यान्तर्गतं 675,000,000,000,000 रूप्यकाधिकेन व्ययेन निर्मितं तदन्ताराष्ट्रीय विमानस्थानकं प्रतिवर्षं 60,00,000 यात्रिणां सेवा प्रदातुं विनिर्मितमस्ति। प्रधानमंत्री 80,000,000,000,000 रूप्यकाधिक व्ययुताः राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाः राष्ट्राय समर्पयिष्यति। तासां शिलान्यासम् अपि करिष्यति।

0: आन्ध्रप्रदेश यात्रानन्तरं प्रधानमन्त्री कर्णाटकस्य मैसूरनगरं गमिष्यति यत्र स्वामी विवेकानन्द सांस्कृतिक युवक केन्द्रस्य विवेक स्मारकस्य उद्घाटनं करिष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् अपशब्द प्रयोगः द्वेष भावना च कस्यापि समस्यायाः समाधानं न भवतः। असौ मार्गभ्रष्टेभ्यः युवभ्यः करुणाभावम् आह्वान अवदत् यत् ते दण्डनीयाः न अपितु राष्ट्रनिर्माणस्य राष्ट्रहितस्य च भावनया सम्यक् मार्गे प्रेरणीयाः। सामाजिक संचार पटलेषु प्रसारिते एकस्मिन् दृश्य श्रव्य सन्देशे प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय राजधान्याः जन्तर्मन्तरस्थले सद्यः एव जातायाः तस्याः घटनायाः उल्लेखमकरोत् यस्मिन् तस्मै तस्य दिवंगतमात्रे च अपशब्दाः प्रयुक्ताः आसन्। सः अवदत् यत् एषा घटना देश विदेशेषु बहुभिः जनैः दृष्टा। एतादृशस्य आचरणस्य विषये समाजे विद्यमानः आक्रोशः निराशा च स्वाभाविकौ स्तः। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् एतादृशान् युवकान् न्यायालयीय प्रक्रियासु न निवेशयेत्, सामाजिक तिरस्कारस्य भाजनं वा न कुर्यात्, अपि तु समाजेन तान् सस्नेहं स्वीकृत्य सम्यक् मार्गः प्रदर्शनीयः।
1: बचपन में गलतियां होती है और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों से चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
0: केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन प्रधानमन्त्री सूर्य सरोवर योजना अनुमोदिता। एषा योजना ऊर्जा सञ्चयन प्रणालिभिः युक्तानां फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक इति परियोजनानां विकासाय प्रवर्तिता अस्ति। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलस्य उपवेशनानन्तरं नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् अस्याः योजनायाः अन्तर्गतं 5000 मेगावाट मितानां क्षमतायुतानां फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक इति परियोजनानां विकासः भविष्यति। ताभिः सह स्थापितानां ऊर्जा सञ्चयन प्रणालीनां न्यूनतम सञ्चयन क्षमता द्विहोरात्मिका भविष्यति। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधि योजनायाः अस्मात् वर्षात् 31,000+ वर्षपर्यन्तं प्रवर्तनस्य निरन्तरतायै अपि अनुमोदनं प्रदत्तम्। भारतम् अवदत् यत् पाकिस्तानाधिकृतस्य जम्मू कश्मीर प्रदेशस्य तथा कथितानि निर्वाचनानि पाकिस्तान प्रशासनस्य अपमानस्पदम् एव सन्ति। नवदिल्ल्यां वार्ताहरैः सह वार्तालापं कुर्वन् विदेश मन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः अवदत् यत् पाकिस्तानस्य प्रशासनं पीओजेके इत्यत्र शान्तिप्रियाणां नागरिकाणां विरुद्धं निष्ठुरं बलप्रयोगं निरन्तरं करोति। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः गतसायं ईरान देशस्य विदेशमन्त्रिणा अब्बास अराघची इत्यनेन सह दूरभाषया वार्तालापम् अकरोत्। अस्मिन् वार्तालापे सः अस्मिन् क्षेत्रे प्रवर्तमानायाः शत्रुतायाः विषये भारतस्य गभीरां चिन्तां प्रकटितवान्। राष्ट्रमण्डल क्रीडासु भारतस्य पदक संख्या 23 यावत् वर्धिता, यस्मिन् 5 स्वर्ण पदकानि, 12 रजत पदकानि, 6 कांस्य पदकानि च सन्ति। इति वार्ताः।
2: मेगावेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोलामारु चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 7 बज चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुप्रभात।

संदेश लेकर आई है। बादलों की ओट से झांकती हुई जो सुनहरी किरणें हैं, जैसे आकाश पर उम्मीदों का एक नया चित्र बना रही हो। भीगी मिट्टी की सौंधी महक, पत्तों पर ठहरी बूंदों की चमक और पक्षियों का मधुर कलरव, ऐसा लगता है मानो प्रकृति स्वयं जीवन का कोई सुंदर गीत गुनगुना रही हो। बारिश हमें हर बार यही सिखाती है कि तपती हुई धरती भी फिर से हरी भरी हो सकती है, और इसीलिए जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, उम्मीदों की एक फुहार, सिर्फ एक स्प्रे हो जाए। हमेशा अपने भीतर बचाए रखिए इस फुहार को। इन्हीं भीगी भीगी ताजगी भरी भावनाओं के साथ मैं मालकों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं कार्यक्रम सुप्रभात में। नमस्कार। बारिश का मौसम हमें याद दिलाता है श्रोताओं की जीवन की भावनाओं में कभी कभी ठहर कर प्रकृति के साथ भी कुछ पल बिताने चाहिए। तो बिताने के लिए कहीं जाना पड़ेगा, यहाँ बैठे बैठे तो काम नहीं चलेगा। तो इस सुबह की शुरुआत एक ऐसे गीत से करते हैं जो हमें कुछ पल सुकून की ओर अपने साथ लेकर चलेगा।

0: आयात बॉम्बे। पता है जन विश्वास अधिनियम 2026 के द्वारा रेलवे अधिनियम 1989 के कई धाराओं में बदलाव किया गया है।
1: हाँ, अब ट्रेन में बिना टिकट या अनाधिकृत टिकट धूम्रपान जैसे अपराधों पर जुर्माना राशि बढ़ाई गई है।
0: अब रेल परिसर या ट्रेन में धूम्रपान करते पाए जाने पर नए अधिनियम में 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
1: जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर न्यायिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी जिसके द्वारा 2000 से 5000 रुपए तक का आर्थिक दंड दिया जा सकता है।
0: ये जन विश्वास अधिनियम ट्रेन में यात्रियों को सुरक्षित संरक्षित और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने और रेल प्रशासन पर आपका भरोसा कायम रखने के लिए बनाया गया है।
1: उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: प्रत्येक मंगलवार गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
3: शुद्ध स्वास्थ्य के सही जानकारी अगर मिले तो अच्छे स्वास्थ्य की दिशा में एक पहला कदम साबित हो सकती है। वो हमें हमेशा जानकारी अपने साथ रखनी चाहिए। आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का लाभ तभी मिल सकता है जब हमें उनके बारे में सही जानकारी हो। तो इसी उद्देश्य से अब प्रस्तुत है एक भेंट वार्ता। बीकानेर ट्रोमा सेंटर में उपलब्ध सुविधाएं विषय पर डॉक्टर एल के कपिल से श्रीमती पुनीत बिश्नोई की बातचीत। तो सुनते हैं ये वार्ता।
4: आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में हर व्यक्ति जल्दबाजी में है और यही जल्दबाजी कई बार दुर्घटनाओं का कारण बनती है। चोटिल हुए व्यक्ति को यदि सही समय पर उपचार मिले तो उसकी जान बचाई जा सकती है। दुर्घटना के बाद का गोल्डन आर और इलाज हेतु ट्रॉमा सेंटर्स बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। नमस्कार श्रोताओं, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और जानकारी देने हेतु स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर एल के कपिल को। आप पीबीएम हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर के सीएमओ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब।
5: नमस्कार
4: डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमें बताइए ट्रॉमा क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं और ये हमारे शरीर को किस तरह से प्रभावित।

0: आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में हर व्यक्ति जल्दबाजी में है और यही जल्दबाजी कई बार दुर्घटनाओं का कारण बनती है। चोटिल हुए व्यक्ति को यदि सही समय पर उपचार मिले
1: आपसे जिसके अंदर की डिसेबिलिटी हो सकती है, तो मोस्टली अगर हम टर्शरी सेंटर पे अगर हॉस्पिटल को देखेंगे तो हमारा मेन मुख्य कारण और मेन मुख्य ये उद्देश्य होता है कि इन दोनों चीज़ों का बचाव करना, एक तो मोर्टलिटी कम करना और एक डिसेबिलिटी कम करना। बाकी जितनी भी सामान्य जो चोटें हैं छोटे प्रकार की, उनको हमारे ट्रैश प्रोटोकॉल के हिसाब से ग्रीन एरिया होता है, वहाँ तक वो सीमित होती है या फिर एरिया तक सीमित रहती
0: है। तरह से प्रभावित करता है
1: ट्रामा, जो कि आप जान रहे हैं ये वर्ड हिंदी में देखेंगे तो इसका मतलब है चोट। तो चोट किसी तरह से भी किसी को भी लग सकती है। तो चोट के जो साधन है अगर देखे जाए तो हमारे पास जिस तरह से तीव्रता होती है चोट की, उसको अध्ययन करना पड़ता है। और चोट अगर हम हॉस्पिटल लेवल से देखेंगे तो उसके अंदर हमारे पास जो मेन सबसे खतरनाक चोट मानी जाती है वो ब्लंट ट्रामा इंजरी और हेड इंजरी को माना जाता है। तो ये इंजरीज ऐसी होती है जो कि जानलेवा भी हो सकती है, और कई इंजरीज ऐसी होती है जो एम्पुटेशन के हिसाब से जिसके अंदर की डिसेबिलिटी हो सकती है। तो मोस्टली अगर हम टर्शरी सेंटर पे अगर हॉस्पिटल को देखेंगे तो हमारा मेन मुख्य कारण और मेन मुख्य ये उद्देश्य होता है कि इन दोनों चीज़ों का बचाव करना, एक तो मोर्टलिटी कम करना और एक डिसेबिलिटी कम करना। बाकी जितनी भी सामान्य जो चोटें हैं छोटे प्रकार की, उनको हमारे ट्रैश प्रोटोकॉल के हिसाब से ग्रीन एरिया होता है, वहाँ तक वो सीमित होती है या फिर एरिया तक सीमित रहती है।
0: जी डॉक्टर साहब, ट्रॉमा सेंटर क्या होते हैं? क्या हर अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर होता है और हमारे बीकानेर में इनकी क्या स्थिति है?
1: ट्रॉमा सेंटर आप जैसे जान रहे होंगे कि चोटग्रस्त मरीज के लिए एक बहुत ही अच्छा व्यवस्थित अस्पताल, जो कि इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट का एक तरह से पार्ट होता है। लेकिन ट्रॉमा सेंटर के अंदर बहुत सारी ट्रामेटिकल इंजरीज तो किसी प्रकार की भी हो सकती हैं, जैसे रोक ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो सकता है, असोल्ट के मरीज हो सकते हैं, फॉल फ्रॉम हाइट हो सकता है, या और भी अन्य प्रकार की जितने भी चोटग्रस्त मरीज यहाँ पे लाए जाते हैं। और इसी संस्थान में उनको सब तरह की सुपर स्पेशलिटी ब्रांचेज डॉक्टर्स भी उपलब्ध रहते हैं, जैसे न्यूरोसर्जन हुए, कार्डियोवैस्कुलर सर्जन हुए, प्लास्टिक सर्जन हुए, ऑर्थोपेडिशियंस हुए, ऑप्थल्मोलॉजिस्ट, ईएनटी और भी अनेक प्रकार की। इसके साथ साथ जो यहाँ का स्टाफ होता है वो वेल ट्रेंड होता है ट्रायज प्रोटोकॉल के मैनेजमेंट के लिए। इसके साथ साथ हमारे यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर के अंदर आईसीयू बेड होना बहुत अनिवार्य होता है, उसके कई प्रकार के लेवल होते हैं, उस प्रकार से आईसीयू बेड्स होते हैं। और इमेजिंग सर्विसेज के अंदर सीटी और सोनोग्राफी एक्सरे मशीन के साथ साथ होना भी अनिवार्य होता है जो हमारे पास है। और इमरजेंसी ओटी जो कि राउंड द क्लॉक 24 आवर्स चलती है, ये भी इसके अंदर होना अनिवार्य होता है, जिससे कि जो भी मरीज आता है उसको फट से बहुत अच्छी तरह पूरे संसाधन का लाभ मिल सकता है।
0: तो सर बीकानेर में कितने ट्रॉमा सेंटर?
1: हमारे पास बीकानेर में एक ट्रॉमा सेंटर है जो एसपी मेडिकल कॉलेज के साथ अटैच्ड है, जो कि चार हमारे जितने भी तहसीलें हैं उनको भी टच करता है, हाईवेज को, और ये जो बॉर्डर है हमारा पाकिस्तान का, इसका सबसे बड़ा ट्रॉमा सेंटर है।
0: जी डॉक्टर साहब, एक शब्द सुना है गोल्डन आवर, इसका क्या अर्थ है?
1: ये गोल्डन आवर वो समय होता है मरीज के लिए जो कि जो टाइम ऑफ इंजरी होती है उसके बाद से उसको हमारे पास तक लाने का, और उसके अंदर जितने भी हम सुविधाएं उसको दे पाएंगे उससे जो पेशेंट का आउटकम होता है वो प्रोग्नोसिस बहुत पॉजिटिव रहता है। अदरवाइज जितना भी हम गोल्डन आवर को मिस करेंगे तो प्रोग्नोसिस पुअर होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है कहीं पे किसी सड़क के ऊपर और दुर्घटना के अंदर वो मरीज मान लीजिए बहुत सीरियस है, ग्लासगो कोमा स्केल से भी उसकी रीडिंग होती है, अन्यथा और भी कई प्रकार की होती है, तो जितनी जल्दी वो हमारे पास आएगा उस गोल्डन आवर में उसकी उतनी जल्दी जांचें होंगी, उस जांचों के हिसाब से उसको उतनी ही जगह अच्छा इलाज मिल पाएगा। तो गोल्डन आवर अपने आप में बहुत ही उपयोग होता है। आज के एक प्लेटिनम आवर भी चलता है लेकिन उसका अभी तक हमारे पास इतना यूज नहीं हो रहा है।
0: जी तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही दुर्घटना हुई उसके एक घंटे के अंदर अंदर अगर पेशेंट आप तक पहुंचे तो उसकी जान बचने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं।
1: बिल्कुल सही, उनकी संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं कि जान बच सकती है।
0: जी तो सर, इसमें राहगीर जो होते हैं उनका क्या रोल रहता है और उनको किस तरह से प्रोटेक्शन मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से?
1: इस तरह की एक योजना है जो माँ योजना के अंतर्गत आती है, तो उसको गुड सैमरिटन कहा जाता है। अगर कोई भी गंभीर मरीज की अवस्था के अंदर कोई गंभीर मरीज को हमारे पास लेके आता है अस्पताल में, तो सरकार की तरफ से उसको एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। और अगर मरीज बहुत ही गंभीर अवस्था में है जिसको सीएमओ डिसाइड करता है और मान लीजिए उसकी जान भी जा सकती थी, तो ऐसे जो भी अग्रहगीर उसको उठा के लाता है जिसको अच्छा आदमी बोला जाता है, उसको 10,000 रुपए तक का प्रोत्साहन राशि सरकार की तरफ से दिया जाता है। और पुलिस और हॉस्पिटल उसके ऊपर कोई भी सवाल नहीं करता, वो निस्वार्थ पेशेंट को छोड़ के अपनी एंट्री करवा के वहां से जा सकता है।
0: अच्छा, तो मतलब उसे वहां पे रुकने के लिए कोई बाध्य नहीं करता है कि जब तक पुलिस आए ना तब तक आपको यहीं रुकना होगा?
1: नहीं, इसकी कोई बाध्यता नहीं है, वो अपने सारे नाम की एंट्री स्वेच्छा से करवा के वो वहां से जा सकते हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, ट्रॉमा सेंटर तक पहुंचने की व्यवस्था जो है ये एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि जैसे दुर्घटना हुई है राहगीर सबसे पहले कहां फोन करे, कैसे उसे पहुंचाए, इसके लिए क्या व्यवस्था है?
1: इसके लिए अगर सरकार की तरफ से देखा जाए तो एम्बुलेंसेज हैं,

0: जो हमारे पास जितने भी राहगीर हैं वो 108 को कॉल कर सकते हैं इमीडिएटली, 108 की उपलब्धता रहती है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हाईवे पे हुआ है तो जितने भी हमारे पास टोल हाईवे पे लगे हैं उनके पास भी बाध्यता है कि वो अपनी एम्बुलेंस वहाँ रखते हैं, उनको भी कॉल किया जा सकता है और वो भी हमारे पास तक ला सकते हैं। कई प्राइवेट एम्बुलेंसेज भी चलती है और 212 नंबर से भी एम्बुलेंस चलती है, वो भी इसके अंदर आ सकती है। लेकिन देखने का ये तरीका है कि अगर आप मानते हैं कि आपका एम्बुलेंस निकटतम पे है तो आप उसी एम्बुलेंस को बुलाइए जो पूरे संसाधन के साथ है और जिसके पास पैरामेडिक है। अन्यथा क्या होता है कि अगर आप सिर्फ कोई भी गाड़ी ले लेंगे जिसके अंदर सुविधा नहीं है तो उसके अंदर हो सकता है कि पेशेंट को बीच में CPR की जरूरत पड़े या पेशेंट को बीच में कई और अन्य संसाधनों की जरूरत पड़ सकती है जो उनके पास नहीं है, तो उसके लिए पेशेंट को उतनी मदद नहीं पहुंचती है। लेकिन आप देख रहे हैं कि वहां पे कोई साधन है ही नहीं है इस तरह का 108 वगैरह का, तो अवश्य आप कोई भी गाड़ी में अपनी तरह से करके उनको अस्पताल पहुंचा सकते हैं।
1: श्रोताओं, जब हम किसी टोल से निकलते हैं तो जो हमें स्लिप मिलती है उसके पीछे भी एक नंबर लिखा होता है इमरजेंसी का, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे भी डॉक्टर साहब ने बताया कि जो टोल है उनकी भी एम्बुलेंस होती है, तो उसका नंबर आप उस स्लिप से ले सकते हैं। अदरवाइज जो 108 नंबर है उस पर कॉल करके भी आप किसी की जान बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आगे मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ट्रॉमा सेंटर्स में आपने अभी बताया था कि लेवल होते हैं, इसका क्या अर्थ है?
0: देखिए, चार तरह के लेवल हैं ट्रॉमा सेंटर के अंदर, लेकिन जो ट्रॉमा सेंटर सड़कों पे बने हैं और उनके अंदर कुछ डॉक्टर्स को रखा गया है लेकिन वहाँ पे पूरे संसाधन नहीं है, तो उस तरह से वो लेवल होता है। तो मान लीजिए हम लेवल 2 से शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे पास बीकानेर के अंदर पर लेवल 2 पे ट्रॉमा सेंटर है जिसके अंदर हमारे पास CT तो है, सोनोग्राफी भी है, MRI भी सर्विसेज हमारे पास हैं जो कि काउंट होती है, पर हमारा ICU का जो अभी बेड का प्रोटोकॉल है वो कम है, लेवल 1 के बराबर नहीं है। लेकिन जो सुपर स्पेशलिटी में लेवल 1 में जितने भी डॉक्टर्स या स्पेशलिटीज होनी चाहिए हमारे पास सब उपलब्ध हैं। तो इसी को देखते हुए ट्रायज प्रोटोकॉल भी हम फॉलो करते हैं जो ग्रीन येलो रेड एरिया का होता है, तो रेड एरिया के अंदर भी हमारे पास सफिशियंट ICU बेड्स हैं। लेकिन हमारे पास जो गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है अगले साल तक बीकानेर का ट्रॉमा सेंटर लेवल 2 से लेवल 1 पे जाएगा जिसके अंदर मिनिमम 30 से लेकर 40 बेड तक ICU बेड होंगे और उसके साथ साथ जितने भी उपकरण की सुविधाएं हैं और ट्रायज प्रोटोकॉल का जितना भी सिस्टम है, अभी आप ट्रायज प्रोटोकॉल में देखेंगे तो हम जितने कम संसाधन है उस कम संसाधन के अंदर जितना आप उत्कर्ष दे सके या जितना ज्यादा काम कर सके उस तरह से हम कार्य करते हैं। लेकिन ट्रायज प्रोटोकॉल का मतलब भी वही होता है। तो उस प्रकार से इस लेवल को लेवल 1 पे अगले साल तक सरकार की पूरी भूमिका है कि लेवल 1 तक बीकानेर का ट्रॉमा सेंटर बन जाए।
1: डॉक्टर साहब, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी क्या ट्रॉमा सेंटर्स बराबरी पे उपलब्ध हैं या फिर वहाँ पे कुछ और सुविधा होती है, इसके बारे में बताएं।
0: सरकार की तरफ से पूरी योजना है कि हर 70 या 60 किलोमीटर पे एक ट्रॉमा सेंटर हाईवे पे दिया जाए, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में बहुत जगह हमारे पास इंडिविजुअल ट्रॉमा सेंटर्स नहीं है, लेकिन वहाँ की CSC या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वो कार्य इस तरह से कर रहे हैं कि ट्रॉमा सेंटर उसी कैजुअलिटी के अंदर अभी रन हो रहे हैं। लेकिन सरकार की पूरी मंशा है, जैसे डूंगरगढ़ हुआ, लूनकरणसर हुआ, कुलैत हुआ, इसके अंदर जितनी जल्दी हुई नोखा हुआ इसके अंदर ट्रॉमा सेंटर लाने की पूरी योजना चल रही है और सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है।
1: जी, आपने हमें बताया कि सरकार आने वाले समय में बीकानेर के ट्रॉमा सेंटर को लेवल 1 में कन्वर्ट करने वाली है, ये एक बहुत ही अच्छा और सम्मानजनक प्रयास है सरकार का। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ABCDE असेसमेंट ये क्या होता है?
0: ABCDE असेसमेंट एक तो प्राइमरी सर्वे होता है, जैसे ही हमारे पास कोई मरीज आता है तो फर्स्ट गोल्डन आवर में भी आए चाहे लेट आए लेकिन फर्स्ट गोल्डन आए तो अच्छा है, उसके अंदर हमारा ट्रायज प्रोटोकॉल प्राइमरी सर्वे से होता है। प्राइमरी सर्वे के अंदर ट्रायज प्रोटोकॉल जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में शुरू हुआ था फ्रांस के अंदर, उस टाइम होता क्या था कि सोल्जर्स आते थे जो चिल्लाता या बोलता था तो वो तो मरीज को पेशेंट को जल्दी डॉक्टर देखता था, उस पर कार्रवाई करता था, लेकिन जो पेशेंट बेहोश रहता था उस पर कार्रवाई जल्दी नहीं हो पाती थी। तो इस तरह से देखा गया कि इसको सेग्रीगेट करने की जरूरत है। तो इस तरह से जैसे ट्रैफिक लाइट होती है वैसे ही ग्रीन येलो रेड एरिया का ट्रायज प्रोटोकॉल का निर्माण हुआ। उसके अंदर ये होता है कि जो ट्रायज नर्स पहले देखता है, इसके अंदर ऐसा कभी नहीं होता कि पहले जो आया उसको पहले इलाज मिलेगा, नहीं। इसके अंदर जो भी मरीज पहले लगता है कि ग्लास्कोकोमा स्केल से या प्राइमरी सर्वे से जिसकी स्थिति बहुत नाजुक है और पहले उसकी लाइफ थ्रेट को बचाना है तो पहले उसे देखा जाएगा, उसे रेड एरिया भेज देते हैं। उसके बाद और जो असेसमेंट है ये ABCDE से चालू होता है। A से हम एयरवे देख सकते हैं, B से ब्रीथिंग, C से सर्कुलेशन, D से ग्लास्कोकोमा स्केल और डिसेबिलिटी का कार्य होता है, E से एक्सपोजर। तो ये एक हमारे खुद का एक लेवल बनाया हुआ है जिसके अंदर डॉक्टर्स भी और स्टाफ नर्स सब इस तरह से प्रोटोकॉल में चलते हैं और ये जितना भी सिस्टम है ट्रायज का वो इसी पे ही बेस्ड है। तो इसी के बेस से हम सेग्रीगेट करते हैं पेशेंट को ग्रीन येलो रेड। जो ग्रीन एरिया में पेशेंट होता है उसके अंदर जब त्योहार आते हैं कई तरह के तो हमारे पास 3-3 घंटे की वेटिंग चलती है। कहने का मतलब ये है कि अगर वो बोल पा रहा है, हमें लग रहा है कि इसके सिर्फ टांके लगने हैं या सिर्फ पट्टी होनी है, तो वेटिंग में रहते हैं और हमारा कार्य क्षेत्र जितना भी है सारा रेड एरिया के मरीज की तरफ कंसंट्रेट हो जाता है, क्योंकि हमें जान बचाना पहले होता है, उसके बाद डिसेबिलिटी को बचाते हैं।
1: यानी कि जो पेशेंट जितना ज्यादा सीरियस है उसे पहले ही

0: कंसिडर किया जाता है।
1: बिल्कुल
0: जी डॉक्टर साहब, इसके साथ हमें ये बताइए कि जिस तरह से अगर कोई राहगीर है वो किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को लेके आ रहा है, तो क्या उसे कुछ ट्रेनिंग देने की आप लोगों की तरफ से कोई व्यवस्था है, आम जन को या फिर स्टूडेंट्स को इस तरह से कोई ट्रेनिंग कैंप्स टाइप में लगाए जाते हैं जिससे लोगों में जागरूकता हो कि वो फर्स्ट एड किस तरह से किसी को दे सकते हैं जरूरत पड़ने पर?
2: जैसे कि हमारा मेडिकल कॉलेज अटैच ट्रॉमा सेंटर है, तो स्टूडेंट्स को तो जो हमारे पास है उनको तो निरंतर इस तरह के कोर्सेज चलते ही रहते हैं, लेकिन हमारे पास इस तरह के भी हैं जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे रामपुरिया कॉलेज हुआ, बिनानी गर्ल्स कॉलेज हुआ, इसके साथ निरंतर तौर पर हमारे पास क्लासेस चलती हैं। और लिग्नाइट हवेली एनजीओज हुए जिनकी लिग्नाइट प्लांट चलता है जो प्लाना के अंदर, या हमारे पास जब सड़क सुरक्षा सप्ताह आता है वहाँ पे और भी कई तरह के हम कार्यक्रम चलाते हैं हमारे इंस्टीट्यूशन में भी, कि जिसके अंदर राहगीरों को इस तरह से सिखाया जाए कि जब पेशेंट को इस तरह की सख्त जरूरत है तो सीपीआर कैसे किया जाता है, सीपीआर के साथ साथ फर्स्ट एड के अंदर किस तरह की ऐसी सावधानियां बरतनी पड़ती है वो भी हम सिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि पेशेंट को दुर्घटनाग्रस्त हुआ है रोड के ऊपर, तो उसको किस तरह से उठाना है, किस तरह से बचाना है, ब्लीडिंग कैसे रोकनी है, प्रेशराइज या उसकी गर्दन को कैसे संभालना है इमोबाइल करते हुए, क्योंकि जाने अनजाने में कई बार हम तो उसकी पूरी हेल्प कर रहे हैं लेकिन ऐसा हो सकता है कि उसके कहीं रीढ़ की हड्डी या कोई पार्ट ऐसा टूटा जिसको हम उठाते हुए और तोड़ दे रहे हैं और बिगड़ जा रही है स्थिति। तो ये सारी स्थितियां सिखाई जाती है और इस तरह के हमारे प्रोग्राम जो है अस्पताल में भी, अस्पताल के बाद कई एनजीओ के साथ और कई हमारी एजेंसी के साथ निरंतर चलते रहते हैं।
0: डॉक्टर साहब, सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं उसमें ट्रॉमा सेंटर से जो कनेक्टेड हैं उनके बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं।
2: इसके अंदर जो राजस्थान सरकार की तरफ से माँ योजना है उसके अंदर 5 लाख के पात्रती वो सब होते हैं जिसके अंदर माँ योजना के अंदर जो लाभार्थी हैं, अगर कई लोग तो सरकार की तरफ से सवा ही लाभार्थी हो जाते हैं और जो नहीं है वो सवे अपने 850 रुपये भर के पूरी फैमिली का इंश्योरेंस ले सकते हैं। ये इंश्योरेंस 25 लाख रुपये तक का होता है सालाना पूरे परिवार के लिए। इसके अंदर जो भी दुर्घटना मरीज या जो भी किसी स्थिति में कोई मरीज हमारे पास आता है तो उसको 25 लाख रुपये तक का पूरा इलाज दिया जाता है। जानने वाली बात एक और ये है कि अगर ये मरीज किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाता है और वहाँ भी ये पैनल है सरकार के द्वारा, तो वहाँ भी इसको सारी सुविधाएं मिलती हैं। इसके उपरांत अगर किसी की डिसेबिलिटी हो जाती है या किसी की मृत्यु हो जाती है तो माँ योजना के मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा है जिसके अंदर अगर एक आदमी की मृत्यु है तो 5 लाख रुपए तक का अनुदान, अगर दो आदमी एक फैमिली के मरते हैं तो 10 लाख रुपए तक का अनुदान उनको दिया जाता है। इसके साथ एक प्रधानमंत्री की भी राहत योजना है जिसके अंदर कोई भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का आदमी भारत सरकार का कोई भी कहीं ट्रॉमा सेंटर में आता है तो उनको 1.5 लाख रुपए तक का पूरा इलाज फ्री में किया जाता है। और अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है तो निरोगी राजस्थान के अंदर राजस्थान सरकार की तरफ से वो इलाज फ्री कराया जाता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स केसेस में।
0: डॉक्टर साहब, आपने हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी, आप जाते जाते हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: सबसे बड़ा संदेश ये है कि हमारे पास अभी देखा गया है कि जितने भी हमारे पास एक्सीडेंट्स अभी आ रहे हैं रोड ट्रैफिक के, मैं बात कर रहा हूँ, एक तो ये है कि 15 साल से लेकर 35 साल तक की जो मृत्यु दर है वो सबसे हाईएस्ट रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के कारण है पूरे भारत के अंदर। दूसरा ये देखा गया हमारे पास कि जितने भी एक्सीडेंट्स आ रहे हैं उनका मुख्य कारण एक तो स्पीड है और दूसरा नशा। स्पीड इतनी होती है गाड़ियों की कि वो एक बहुत गहरी इस तरह की दुर्घटना हो जाती है कि हेड इंजरीज या कोई और इस तरह की इंजरीज से डिसेबिलिटी हो जाती है। तो स्पीड तो एक जरूर नियंत्रण में रखें और एक नशा, जो लोग गाड़ी नशे में चला रहे हैं उनको भी बहुत सावधानी पूर्वक समझना होगा कि इस तरह की गतिविधियों से वो दूर रहें गाड़ी चलाते वक्त, अन्यथा कोई और भी दारू में अगर चल रहा है या नशे में चल रहा है तो उसके साथ वो बढ़ जाते हैं। तो ये दो चीजें अगर कम हुई तो निश्चित तौर पर ही ये बहुत ज्यादा गिरावट आएगी सड़क दुर्घटनाओं के अंदर। और जो कि हम फिफ्थ पिलर हैं ट्रॉमा सेंटर इससे पहले कई एजेंसी से जो काम करती है, जैसे कि हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपना काम कर रही है, आरटीओ अपना काम कर रही है, एम्बुलेंस सर्विसेज, अगर ये भी इनमें भी सुधार आएगा और एनजीओ मिलकर भी सारे सब सड़कों के काम करेंगे तो हमारी जो सड़क दुर्घटनाएं हैं फिफ्थ पिलर के अंदर वैसे भी कम आएंगी। और लोग हमारे साथ सहयोग करेंगे जो भी हमारे साथ आते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है दुर्घटना के साथ जो भी मरीज आता है उसके अंदर भी बहुत ज्यादा वो होती है कि मरीज को देख नहीं पाते कि दुर्घटना इस तरह से हुई है और डॉक्टर स्टाफ किसी और पर ज्यादा अपना ध्यान लगा रहे होते हैं वो अपने हिसाब से। तो ये भी है कि दोनों तरफ से समन्वय बना रहे, दोनों स्थिति को समझें और परस्पर में एक दूसरे का सहयोग करें, तभी इस तरह का वातावरण बनेगा और पीड़ित मानवता का सुखद उपचार होगा।
0: जी श्रोताओं, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक नागरिक को जीवन के अधिकार के अभिन्न हिस्से के रूप में ट्रॉमा केयर प्राप्त करने का अधिकार है, यानी गंभीर व अचानक लगी चोट पर तुरंत इलाज का अधिकार है। यदि आप हाईवे पर यात्रा करते समय किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को देखते हैं तो उसकी मदद अवश्य करें, इंसानियत का धर्म निभाएं तथा सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी ना करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोता

0: श्रोताओं को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुनी भेंट वार्ता। बीकानेर ट्रॉमा सेंटर में उपलब्ध सेवाएं सुविधाएं विषय पर डॉक्टर एल के कपिल से श्रीमती पुनीत बिश्नोई की बातचीत।

0: वहाँ के पहले और तीसरे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिएगा कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के भोला मधु चैनल की प्रस्तुति।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 7 करोड़ लोग बने 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: श्रोताओं, अभी आपने स्वास्थ्य से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी सुनी, और हम जानते हैं ज्ञान और जागरूकता ही समाज को आगे बढ़ाते हैं, और यही जागरूकता जब पूरे देश में फैलती है तो इतिहास बदल देती है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐसा ही ऐतिहासिक अध्याय है असहयोग आंदोलन। श्रोताओं, आज ही के दिन महात्मा गांधी के नेतृत्व में वर्ष 1920 में प्रारंभ हुआ यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला व्यापक जन आंदोलन माना जाता है। इसकी पृष्ठभूमि में रोलट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड तथा खिलाफत आंदोलन जैसी घटनाएं थी जिन्होंने पूरे देश को झकझोर दिया था। गांधी जी ने देशवासियों से आह्वान किया था कि वे ब्रिटिश शासन का हिंसा से नहीं बल्कि असहयोग के माध्यम से विरोध करें। लोगों ने सरकारी विद्यालयों, अदालतों, विदेशी वस्त्रों और सरकारी उपाधियों का बहिष्कार कर दिया। हजारों विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लिया और खादी आत्मनिर्भरता की स्वदेशी प्रतीक बन गई। तो आज भी असहयोग आंदोलन जो है हमें यह प्रेरणा देता है कि सत्य, अहिंसा, आत्मसम्मान और जनशक्ति किसी भी परिवर्तन की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। तो आजादी केवल इतिहास की एक घटना नहीं बल्कि लाखों त्याग, तपस्या और बलिदानों का ही परिणाम है। श्रोताओं, हमें अपने जीवन में इस विषय को, इस याद को हमेशा संजोए रखना चाहिए और हमेशा अपने देश प्रेम को अपने सर्वोपरि ही रखना चाहिए। श्रोताओं, आज एक और विशेष दिवस है और आज से एक सप्ताह तक यानी कि 1 अगस्त से 7 अगस्त तक हम विश्व स्तनपान सप्ताह मनाने जा रहे हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। एक नवजात शिशु को पहले घंटे में स्तनपान शुरू करवाना हम सबकी जिम्मेदारी है, और उसके साथ हम जानते हैं कि 2 साल तक हमें स्तनपान और कम से कम 6 माह तक सिर्फ स्तनपान करवाना होता है। तो ये सभी विषय हम अपने जहन में रखें, आगे बढ़ें और हमेशा हमारा दिन, हमारा हर सप्ताह, हर महीना, हर मास ऐसे ही महकता रहे, चहकता रहे और हम आगे बढ़ते रहें। इसी प्रकार इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

श्रोताओं अभी आपने सुना कार्यक्रम सुप्रभात। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्स और FM 101.6 मेगा हर्ट्स पर।

0: राधा के 7:31 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।
1: ए भाई बोल ना।
2: Ha ha ha!

राहुल शर्मा के स्वर में 1942 में लव स्टोरी से बेहतरीन गीत सुना आपने। राहुल देव बर्मन का संगीत और जावेद अख्तर के बोल से सजा था ये प्यारा सा गीत। बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं जब वी मेट से मोहित चौहान।

आप तमिल के लिखे और प्रीतम के संगीत से सजे इस गीत को सुना आपने। फिल्म का नाम था यारिया, आवाज थी अरिजीत सिंह की। और सुनते हैं अरिजीत सिंह के इस स्वर में एक और बेहतरीन नगमा, फिल्म तुम बिंटू से मनोज मुंतशिर ने इसे लिखा है और अंकित तिवारी के संगीत से सजा है।

0: हम आकाशवाणी बीकानेर के बोलावारो चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के बजने को है 8। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात। हमारे
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 1000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल 0 आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। दही मानस के निशुल्क नंबर 144116 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे ये सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनिकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं। वीडियो संदेश में कहा, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए युवाओं को दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर वे वहां कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता के खिलाफ जनता की कड़ी नाराजगी का प्रमाण। भारत ने ईरान से किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले

0: ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। जूडो में 2 ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीते। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यादगार दोहरा पोडियम स्थान हासिल किया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। ये विधेयक बृहस्पतिवार को संसद से पारित किया गया था। इसका उद्देश्य कठोर दंड का प्रावधान करने और फास्टैग अदालत बनाकर लोक परीक्षाओं में अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। यह अधिनियम विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा करते हुए एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करके परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा को सुदृढ़ करने का प्रयास करता है। अधिनियम में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति की जब्ती जैसे कठोर दंड शामिल हैं। मामलों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्टैग अदालत स्थापित करने की आवश्यकता है। इसमें यह भी अनिवार्य है कि प्राथमिकी दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर अपराधों की जांच पूरी की जाए, जबकि आरोप पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त किए जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनकी और उनकी दिवंगत माता के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि इस घटना को देश और दुनिया के लोगों ने देखा है और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश और निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है।
1: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों से चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े।
0: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सोशल मीडिया कंपनी मेटा के ग्लोबल टीम को तलब किया है। उनसे एल्गोरिदम में पूर्वाग्रह और सार्वजनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका से संबंधित मुद्दों पर पूछताछ की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी पहले आंध्र प्रदेश जाएंगे, जहां वे विजयनगरम जिले के भोगपुरम में करीब 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: इस नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को सार्वजनिक निजी भागीदारी द्वारा 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित किया गया है। प्रधानमंत्री विशाखापट्टनम में 460 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से विकसित की जा रही ASIP सेमीकंडक्टर परियोजना की आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी कुर्मावल 4 नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के एकीकरण के लिए 4.5 गीगावाट क्षमता वाले ट्रांसमिशन सिस्टम के प्रथम चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इससे पावर ग्रिड द्वारा एक विशेष प्रयोजन वाहन द्वारा लगभग 5,550 करोड़ रुपए के निवेश से कार्यान्वित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री लगभग 3,550 करोड़ रुपए की लागत से कार्यान्वित कुर्नूल पवन ऊर्जा क्षेत्र और सौर ऊर्जा क्षेत्र भाग ए और भाग बी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम का भी उद्घाटन करेंगे। वे अनंतपुरम में 2,500 मेगावाट और कुर्नूल में 1,000 मेगावाट के सौर ऊर्जा क्षेत्रों के लिए पावर ग्रिड द्वारा 800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के कार्यान्वित ट्रांसमिशन सिस्टम का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी 1,880 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। विजयवाड़ा से अनु मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूरू पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे।
3: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेका स्मारक स्वामी विवेकानंद के विचार और सिद्धांत के प्रचार कार्य

0: बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस स्मारक के साथ ओडी एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फी थिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम के ओर से यहाँ शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: पश्चिम बंगाल में आज से जनगणना शुरू हो रही है। ये प्रक्रिया दो चरणों में डिजिटल माध्यम से संपन्न की जाएगी। इस प्रक्रिया का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से अद्यतन जनसांख्यिकी आंकड़े एकत्र करना है। दो चरणों वाली ये प्रक्रिया राज्य में व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है।
2: पहले चरण में नागरिक 8 से 15 अगस्त तक आधिकारिक जनगणना पोर्टल se.census.gov.in पर अपनी जानकारी देकर सेल्फ इन्यूमरेशन करने की प्रक्रिया पूरी कर सकती है। इस चरण का दूसरा भाग 16 अगस्त से 14 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान जनगणना अधिकारी मकान सूचीकरण और शुरुआती गिनती के लिए घरों का दौरा करेंगे। आखिरी चरण अगले साल फरवरी में होगा, जब जनगणना करने वाले कर्मचारी वास्तविक जनसंख्या गणना के लिए प्रत्येक घर के हर सदस्य के नाम, उम्र, लिंग, जाति और धर्म के बारे में जानकारी एकत्र करेंगे। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नंदिनी पांडे।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों

0: भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में तथा कथित चुनाव के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता को नकारे जाने का प्रमाण है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पीओजेके में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों का पाकिस्तान लगातार दमन कर रहा है।
2: पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ लगातार निर्मम बल रूथलेस फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है और इस सख्त कार्रवाई में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और कई एक और लोग घायल हुए हैं। एक हिंसक शासन का सामना करते हुए वहां के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से गैर कानूनी हत्याओं की स्वतंत्र जांच की मांग की है। हम आग्रह करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की हरकतों की बारीकी से जांच करनी चाहिए और उसके अत्याचारों के लिए जवाबदेह जाना चाहिए।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल शाम ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची से फोन पर बात कर पश्चिम एशिया क्षेत्र में जारी तनाव पर चिंता व्यक्त की। डॉक्टर जयशंकर ने किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न होने देने को कहा। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी पक्ष द्वारा किए गए ऐसे किसी भी हमले की निंदा करता है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने कल जूडो में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण पदक जीते। भारत ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यादगार डबल पोडियम फिनिश हासिल की। जगथलॉन में पहला कांस्य पदक जीता और 10 मुक्केबाजों ने अपनी अपनी स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाई। एक रिपोर्ट।
3: अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में भारत के लिए पहले राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अस्मिता ने महिलाओं का 48 किलोग्राम वर्ग का खिताब जीता, जबकि हर्ष ने पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। यामिनी मौर्य ने महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। एथलेटिक्स में ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 85.83 मीटर के साथ रजत पदक जीता, जबकि यशवीर सिंह ने 85.41 मीटर के थ्रो के साथ कांस्य पदक जीता। तेजस्विन शंकर डेकाथलॉन में कांस्य पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। भारत के 10 मुक्केबाजों ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत अब कुल 23 पदक के साथ तालिका में 10वें स्थान पर है, जिसमें 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल है। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी

डेकाथलॉन स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर एथलीट तेजस सिंह शंकर को बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंध्रीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, केरल और माहे में मूसलाधार वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी आज बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है नवीन सक्सेना।

काफी परिजनों का वक्तव्य दिया है, वर्दी के पीछे भी एक परिवार होता है। दैनिक भास्कर ने परिजनों की पीड़ा का उल्लेख किया है, पिता को भीड़ी चीचा खून से सनी वर्दी में खटखटी। आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताकिर हुसैन सहित 5 को उम्र कैद की सजा की खबर भी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण लिखता है, अदालत ने कहा अंकित शर्मा की हत्या इतनी क्रूर और बर्बर कि समाज के अंतर आत्मा को चौचोर देती है। पत्र ने अपने संपादकीय में लिखा है, अदालत के फैसले से पीड़ित

0: फूट की खूबसूरत में नहीं देखा सकती। कुलगाम में आतंकी हमला, मजदूर की मौत, नवभारत टाइम्स की वो फ्रेश पर है। अमरीका ने लिखता है कश्मीर में आतंकियों के नाम पूछकर बरसाई गोलियां, प्रवासी की मौत, टीआरएफ ने ली जिम्मेदारी। ग्लास्को राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल को जूडो में पदक मिलने की अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स लिखता है जूडो में अस्मिता, हर्ष के स्वर्ण गाथा, जीते दो गोल्ड मेडल। अमर उजाला ने हर्ष सिंह और अस्मिता का चित्र देते हुए लिखा है 92 साल में पहली बार देश को जूडो में स्वर्ण, पहली बार जिंदा दिल लेकर दौड़ी वंदे भारत लोक सत्य में है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं। वीडियो संदेश में कहा राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए युवाओं को दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर। भारत ने कहा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता के खिलाफ जनता की कड़ी नाराजगी का प्रमाण। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम नरेश मागो। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi calls for compassion and guidance of misguided youth. Says hatred and abuse never solve anything. President gives assent to anti-paper leak bill, introducing stricter punishment and setting up of fast-track courts. Prime Minister to launch multiple development projects in Andhra Pradesh and Karnataka today. India raises concerns over ongoing hostilities in West Asia region, urges Iran to avoid attacks on commercial shipping and seafarers. Italy suspends free border travel with Spain over Ceuta migrant crisis. And at Commonwealth Games, India clinched 2 historic gold medals in judo, secured double podium finish in men's javelin throw, and win a first ever bronze in decathlon. Prime Minister Narendra Modi has said that abuse and hatred never solve anything. He appealed for compassion toward misguided youth who have gone astray, saying they should be guided onto the right path in the spirit of nation building and national interest rather than be punished. In a video message posted on his social media handles, the Prime Minister referred to the recent incident at Jantar Mantar in national capital, where abusive language was used against him and his late mother. He said the episode has been witnessed by people across the country and the world, adding that while the anger and disappointment in the society over such conduct were understandable,

और लोटा ही तो लेकर गए थे, धोती और लोटा ही तो लेकर गए थे, ना रुपए पैसे थे, ना डॉलर, ना पाउंड सेलिंग पर देखते ही देखते बन बैठे उद्योग और व्यापार के किंग। इस चमत्कार को देखकर यह कितनी उक्ति सही है कि ऐसी मिसाल दुनिया में तो कोई दूसरी नहीं है। सलाम आपकी कुवत को, सलाम उस लॉ को जो आपने लगाई, ओ प्रवासी राजस्थानी भाई, बहुत बहुत बधाई। माना माना कि आपकी यह सफलता लाजवाब है, माना कि आपकी यह सफलता लाजवाब है, पर यह मत बोलो कि आपकी इस सफलता के पीछे नारियों का भी त्याग है। बड़ी जवानी में वियोग को सहना, भरी जवानी में वियोग को सहना और फिर भी संयम के साथ शांत रहना, वारी मेहनत, वारी मेहनत, वारी समझदारी, गरीबी के थपेड़े सहकर भी उठाई परिवार की जिम्मेदारी। आप तो साल में एक आध बार ही आ पाते थे और कभी कभी तो कई कई साल लग जाते थे। कहाँ थे संचार के साधन, कहाँ थे संचार के साधन, प्रवासी की आवाज सुनने को कान तरस जाते थे। ऐसे में नारियों ने जो किया वह बेमिसाल है, उनका त्याग सचमुच कमाल है। सभी लोग करते हैं इसकी वाहवाही, जिस परंपरा को नारी ने निभाई, ओ प्रवासी राजस्थानी भाई, बहुत बहुत बधाई। सेंटमेंट में ये नहीं हुआ था काम, विकास अपने आप नहीं आया था, ये मधुमास दादा ने जो पेड़ लगाया था दूसरी पीढ़ी ने पनपाया था। यह एक ऐसा सिलसिला है कि फल खाने का सौभाग्य तीसरी पीढ़ी को मिला है। दादा ने जो पेड़ लगाया था दूसरी पीढ़ी ने पनपाया था। यह एक ऐसा सिलसिला है कि फल खाने का सौभाग्य तीसरी पीढ़ी को मिला है। कमाई तो सभी करते हैं, कमाई तो सभी करते हैं, पर आपका उदाहरण है महान। खुले हाथों करते कराते रहे दान, कर्म भूमि हो या जन्म भूमि प्रतिदान किया, कर्म भूमि हो या जन्म भूमि प्रतिदान किया, भरपूर निर्माण किया, कुएं बावड़ी स्कूल हॉस्टलें सड़कें बिजली अनाथालय हर जगह मिली वाह भाई, तभी तो कहलाए भामाशाह। यदि आगे की पीढ़ियां भी चल पाई जो आपने राह बताई, तभी होगी इस त्याग की भरपाई। ओ प्रवासी राजस्थानी भाई, बहुत बहुत बधाई, जहां भी रहे साख रखे सवाई, ओ प्रवासी राजस्थानी भाई। अच्छे बुरे पल सबकी जिंदगी में आते हैं, अच्छे बुरे पल किसी को नहीं मालूम होता कैसा होगा आपका आने वाला कल। इसलिए जो हो गया कोई नहीं रोक सकता उसको होने से, कोई फायदा नहीं रोने धोने से। होता नहीं असफल थोड़ा लेता संभल, पर सब्र कर यह सोच कर क्या पता इससे भी बुरा हो सकता था। जितना खोया है ना उससे भी ज्यादा खो सकता था, किंतु बहुत बच गया क्योंकि समय पर काम कर गई अकल। खैर जो हुआ सो हुआ, खैर जो हुआ सो हुआ, अब तो यही कर दुआ। सब कुछ बहुत अच्छा हो मंजिल तक पहुंचे तुम, चाहे रास्ता कितना भी उबड़ खाबड़ टेढ़ा मेढ़ा और कच्चा हो, बस हिम्मत और हौसला बरकरार रख, ये सफर भी लगातार रख। वक्त के हिसाब से ढलना सीख ले, कहाँ किस कदम किस तरह कदम रखना है चलना सीख ले। सबकी जिंदगी में आते हैं अच्छे बुरे पल, किसी को नहीं मालूम कैसा होगा आपका आने वाला कल। अगली कविता का शीर्षक है कर्मयोग। जिसने भी संघर्ष किया है और गरीबी भोगी है, जिसने भी संघर्ष किया है और गरीबी भोगी है, उसी का जीवन समाज के लिए उपयोगी है। आज तक साधारण से साधारण व्यक्ति ही असाधारण बन पाया है, लोगों ने उसी का यश गाया है। शून्य से शिखर को

छुआ है, जो चाहा वो हुआ है। कर्मयोग में डटने वाले ही जीवन का फल पाते हैं। अरे इतिहास पढ़ने वाले तो हजारों लाखों हैं, पर बिरले ही इतिहास बनाते हैं जिसने भी संघर्ष किया है। धन्यवाद। मेरी आगे कविता का शीर्षक है तकरार। आजकल लड़कियां भी पढ़ी लिखी है और लड़के भी।

मेरी अगली कविता का शीर्षक है तकरार। आजकल लड़कियां भी पढ़ी लिखी है और लड़के भी, हर जगह सत्ता का संघर्ष है। लड़की देखती है हुकूमत मेरी चले, पति झुकने को तैयार नहीं है। तो पति पत्नी में रोज होती थी तकरार, लेकिन झगड़ा इस बार इतना बड़ा कि पत्नी को दुखी होकर कहना पड़ा, अब तुम्हारे साथ रहना बहुत मुश्किल हो गया है। पति बोला, तू तो यहीं रह, मैं ही चला जाता हूँ, रोज रोज का झंझट मिटाता हूँ। इतना सुनते ही पत्नी घर के बाहर चल गई। पति ने भी उठाकर ताला दरवाजे पे डाला और हो गया गुम। इधर पति परेशान, उधर पत्नी गुमसुम, दोनों ही अधीर एक दूजे बिन। थोड़े दिनों बाद सताने लगी घर की याद। पति जैसे ही लौट कर घर आया, सामने बैठी पत्नी को पाया। उसने पूछा, कहाँ रही इतने दिन इतनी रात? वो तपाक से बोली आनंद के साथ। तुम्हारी कैसे कटी? वो बोला, खूब मस्ती में रहा, शांति के साथ। यह सुन दोनों आशंकित थे, दोनों के बीच सामान, अब इनको समझाए कौन कि शांति और आनंद केवल अनुभूति है, न कि कोई नाम है। पति पत्नी के बीच फैली भ्रांति से उपजी अशांति का दुष्परिणाम है। गुमसुम दोनों ही अधीर एक दूजे बिन। थोड़े दिनों बाद सताने लगी घर की याद। पति जैसे ही लौट कर घर आया, सामने बैठी पत्नी को पाया। उसने पूछा, कहाँ रही इतने दिन इतनी रात? वो तपाक से बोली आनंद के साथ। इन पंक्तियों पे आपका विशेष ध्यान चाहूँगा। कहाँ रही इतने दिन इतनी रात? वो तपाक से बोली आनंद के साथ। तुम्हारी कैसे कटी? वो बोला, खूब मस्ती में रहा, शांति के साथ। यह सुन दोनों आशंकित थे, दोनों के बीच सामान, अब इनको समझाए कौन कि शांति और आनंद केवल अनुभूति है, न कि कोई नाम है। पति पत्नी के बीच फैली भ्रांति से उपजी अशांति का दुष्परिणाम है। पति पत्नी के बीच फैली भ्रांति से उपजी अशांति का दुष्परिणाम है। मेरी दूसरी कविता है, आजकल विज्ञापन का युग है और आपने देखा होगा विज्ञापन, एक के साथ एक फ्री, तीन साबुन है उसके साथ में एक साबुन फ्री, टूथपेस्ट है उसके साथ में ब्रश फ्री। तो इस थीम को लेकर के मैंने कविता बनाई है, एक के साथ एक फ्री। होलसेल का माल बिक रहा था रिटेल में, बाजार में लगी साड़ियों की बम्पर सेल में। लिखा था प्रेमिका को साथ में लाओ, एक के बदले एक फ्री ले जाओ, छूट 60%, पति के साथ आओ मिलेगी 10%। छूट की मसरई थी लूट, ग्राहक पड़ रहे थे टूट। लोग आ रहे थे प्रेमिका को साथ ला रहे थे, कुछ लोग बीबी को ही प्रेमिका बता रहे थे, झूठ बोल के छूट का मजा उठा रहे थे। हुआ यूं, असली पति दुकानदार से बोला, प्रेमिका के लिए छूट 60% और पत्नी के लिए केवल 10%, भाई साहब ये कैसी नाइंसाफी है, ये बात हमें बहुत खलती है। दुकानदार बोला श्रीमान यह दुकान प्रेमियों से चलती है, तुम्हारे भरोसे थोड़े ही चल रही है। भला पति भी पत्नी के लिए कभी साड़ी लाता है? प्रेमी पट्टा तो प्रेमिका को एक के साथ चार साड़ी दिलाता है, एक के बदले चार साड़ी दिलाता है। अगली कविता का शीर्षक है वृद्ध जन। कैसा कलयुगी काल है, वृद्धों का यहाँ बुरा हाल है। घर के ये उपेक्षित बुजुर्ग कभी रहे थे मजे।

0: भूत दुर्गा। समय से पहले खंडर हो गए, एक पुराने कैलेंडर हो गए। कैसा कलयुगी काल है, वृद्धों का यहाँ बुरा हाल है। घर के ये उपेक्षित बुजुर्ग कभी रहे थे मजबूत दुर्ग। समय से पहले खंडर हो गए, एक पुराने कैलेंडर हो गए। शीश से पारिवारिक चारी दे के खून पसीना, आज खुद के बनाए उपवन में मुश्किल हो गया जीना। अब इनकी औलाद नहीं रखती है याद, माता पिता का त्याग उनकी तपस्या एक बहुत बड़ी समस्या। अब तो ये बूढ़े समझे जाते हैं घर के कूड़े। नए जमाने की नई पीढ़ी समझती है इनको एक बेकार सीढ़ी। जिन बच्चों ने सीखा था उंगली पकड़ के चलना, आज उन्हीं बच्चों को आ गया हर बात पे आंखें बदलना। नए जमाने की नई पीढ़ी समझती है इनको एक बेकार सीढ़ी। जिन बच्चों ने सीखा था उंगली पकड़ के चलना, आज उन्हीं बच्चों को आ गया हर बात पे आंखें बदलना। बच्चा पढ़े आगे बढ़े, इसलिए दिलाई थी अच्छी से अच्छी शिक्षा। बच्चा पढ़े आगे बढ़े, इसलिए दिलाई थी अच्छी से अच्छी शिक्षा। आज अपनी जरूरतों के लिए अपनी औलाद से मांगनी पड़ती है भिक्षा। अब आप ही बताएं ये बुजुर्ग जाएं तो कहाँ जाएं। इतनी बेइज्जती, इतना अपमान, इतना तिरस्कार। नई पीढ़ी ने पुरानी पीढ़ी को कैसा दिया है उपहार। और अगली कविता शीर्षक नव दंपति। नव दंपति कार में घूमने जा रहे थे, नोक झोंक में एक दूसरे को नीचा दिखा रहे थे। मजाक मजाक में बात बिगड़ गई और इस हद तक बढ़ गई कि भूल गए मर्यादा दाम्पत्य के धर्म की और एक दूसरे को देने लगे तलाक की धमकी। फिर दोनों ने मौन व्रत धारण कर लिया, मन ही मन पछता रहे थे कि हमने ऐसा क्यों किया। एक गधे को मैदान में चरता देख पति बोला, ये तुम्हारा रिश्तेदार है, यहाँ भी तैयार है। पत्नी भी कब चूकने वाली थी, उसने मोटा सा घूंघट निकाल लिया और बोली, हाँ रिश्तेदार तो है। लेकिन शादी के बाद हुआ है।
1: सारफ कार्यक्रम में अभी आपने सुना श्री गौरीशंकर मधुकर का काव्य पाठ। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में 8:45 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। शुरुआत करते हैं अलका याग्निक के स्वर में इस बेहतरीन गीत के साथ।

मोहब्बत पलकों पे कितने हसीन ख्वाब सजाती है, फूलों से महकते ख्वाब, सितारों से जगमगाते ख्वाब, शबनम से बरसते ख्वाब। फिर कभी यूं भी होता है कि पलकों की डालियों से ख्वाबों के सारे परिंदे उड़ जाते हैं और आँखें हैरान सी रह जाती हैं।

बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और अब सुनते हैं एक गजल नीना राजेंद्र मेहता और सुरेंद्र मलिक गुमनाम, इनके स्वर में सुनते हैं। संगीत है राजेन भूरे का।

शाहिद के स्वर में इस गीत के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भटके हुए युवाओं को दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाने की देशवासियों से अपील की। जयपुर में कॉमनवेल्थ पीस मीडिएशन सम्मेलन की शुरुआत मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने मध्यस्थता को विवाद समाधान का सशक्त माध्यम बताया और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज उदयपुर में राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। ये विधेयक गुरुवार को संसद द्वारा पारित किया गया था। इसका उद्देश्य कठोर दंडों का प्रावधान करने और फास्ट ट्रैक अदालत की स्थापना करके लोक परीक्षाओं में अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। ये विधेयक छात्रों के भविष्य की रक्षा करते हुए एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करके परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और निष्पक्षता को मजबूत करने का प्रयास करता है। अधिनियम में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति की जब्ती जैसे कठोर दंड शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही

0: दिखानी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किए गए एक वीडियो में उन्होंने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनके और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि इस घटना को देश और दुनिया के लोगों ने देखा है और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश और निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है।
1: बचपन में गलतियां होती है और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
0: राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में अवैध बजरी खनन करने वालों पर अब कठोर कार्रवाई की जाएगी। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कल जयपुर में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की पालना को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में ये बात कही। उन्होंने संबंधित जिला कलेक्टरों को, नोडल अधिकारी और पुलिस अधीक्षकों को अवैध खनन नेटवर्क ध्वस्त करने की जिम्मेदारी सौंपी। बैठक में AI आधारित ऑनलाइन डैशबोर्ड, ड्रोन सर्वे, सैटेलाइट इमेज और थर्मल कैमरों के जरिए निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने का निर्णय लिया गया। प्रदेश भर में आज से खरीफ डिजिटल क्रॉप सर्वे अभियान शुरू हो रहा है। राजस्व मंडल के रजिस्ट्रार महावीर प्रसाद ने बताया कि सर्वे राज्य के सभी जिलों की तहसीलों और राजस्व गांवों में ऑनलाइन किया जाएगा। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अभियान के तहत 4,62,00,000 से ज्यादा खसरों की नियमों के अनुसार गिरदावरी की जाएगी। 2,86,00,000 कृषि योग्य खसरों को सर्वे के लिए चिन्हित किया गया है। बाकी खसरों में सरकारी भूमि, गैर कृषि भूमि ई गिरदावरी की जाएगी। राज्य खसरा गिरदावरी मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन गिरदावरी की सुविधा दी गई है। गिरदावरी से प्राप्त आंकड़े, फसल उत्पादन के आकलन, नीति निर्माण, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्राकृतिक आपदा राहत सहित विभिन्न योजनाओं के लिए आधार बनेंगे। देश भर में आज से स्तनपान सप्ताह शुरू हो रहा है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की ओर से इस सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। सप्ताह का उद्देश्य स्वस्थ भारत के लिए परिवारों, समुदायों और स्वास्थ्य प्रदाताओं के बीच स्तनपान को लेकर जागरूकता फैलाना है। नवजात शिशु के स्वस्थ विकास के लिए स्तनपान सबसे प्रभावी उपायों में से एक है। इस मौके पर मंत्रालय ने स्वास्थ्य पेशेवरों, सामुदायिक कार्यकर्ताओं और नागरिकों से स्तनपान के लिए अनुकूल वातावरण बनाने का आह्वान किया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि मध्यस्थता, संवाद, सहमति और विश्वास पर आधारित विवाद समाधान की प्रभावी व्यवस्था है। साथ ही मीडिएशन न्याय तक आसान और तुरंत पहुंच सुनिश्चित करने का सशक्त माध्यम बन रहा है। ये बात उन्होंने जयपुर में कॉमनवेल्थ पीस, मीडिएशन एंड रूल ऑफ लॉ विषय पर आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कही। उन्होंने कहा कि कार्यस्थल, वाणिज्यिक और आधारभूत संरचना से जुड़े विवादों के समाधान में मध्यस्थता की भूमिका लगातार बढ़ रही है। उन्होंने ऑनलाइन मध्यस्थता में प्रशिक्षित विशेषज्ञों की आवश्यकता पर भी बल दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि वर्तमान समय में मध्यस्थता केवल एक विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता बन चुकी है। उन्होंने कहा कि संवाद और मध्यस्थता से वर्षों पुराने विवादों का स्थायी समाधान संभव होता है।
2: संवाद और मध्यस्थता की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि हार जीत से आगे बढ़कर समाधान की बात करती है। ये केवल एक कानूनी या प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है बल्कि हमारे समाज की वो सांस्कृतिक शक्ति है जो सदियों से हमें आपस में जोड़े हुए है। आज हमारी अदालतों पर मुकदमों का भारी बोझ, न्याय में देरी से आम आदमी का समय, पैसा और मानसिक शांति तीनों छिन जाते हैं। ऐसे

0: व्यवस्था एक वैकल्पिक मार्ग नहीं बल्कि समय की सबसे बड़ी मांग बन चुकी है।
1: सम्मेलन में भारत और विभिन्न कॉमनवेल्थ देशों के न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ता, विधि विशेषज्ञ, नीति निर्माता और मध्यस्थ भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज से दो दिन के उदयपुर और राजसमंद दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे पर्यावरण संरक्षण, ग्रामीण विकास और विभिन्न विकास परियोजनाओं से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेंगे। आज उदयपुर के दूध कलाई में राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ करने के साथ चंदन वन में पौधरोपण करेंगे। इसके बाद झाडोल क्षेत्र के बीड़ा गांव में 10वीं ग्राम विकास चौपाल में शामिल होकर ग्रामीणों से संवाद करेंगे। दौरे के दूसरे मुख्यमंत्री उदयपुर में नारी शक्ति रैली को हरी झंडी दिखाएंगे और नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़ेंगे। इसके बाद राजसमंद में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। अजमेर के महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की स्थापना के 39 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज समारोह आयोजित किया जा रहा है। समारोह में राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े शामिल होंगे। इस दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाएगा। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में राजस्थान की अरुंधति चौधरी ने महिला 70 किलोग्राम मुक्केबाजी स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में उन्होंने इंग्लैंड की रोजी रसल को 4-0 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। इससे पहले क्वार्टर फाइनल में अरुंधति ने न्यूजीलैंड की मॉर्गन हेंडरसन को 3-1 से पराजित किया था। आज रात भारतीय समय के अनुसार 9:30 बजे होने वाले फाइनल में उनका मुकाबला इंग्लैंड की चॉन्टिल रीड से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से भटके हुए युवाओं को दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाने की अपील की। जयपुर में कॉमनवेल्थ पीस मीडिएशन सम्मेलन की शुरुआत। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने मध्यस्थता को विवाद समाधान का सशक्त माध्यम बताया। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज उदयपुर में राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 9:10 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। शुरुआत करते हैं सीमा मिश्रा के सुरंगे स्वर के साथ। आयो रे सावन आयो।

0: एहतियात ध्यान दें। पता है जन विश्वास अधिनियम 2026 के द्वारा रेलवे अधिनियम 1989 की कई धाराओं में बदलाव किया गया है।
1: हाँ, अब ट्रेन में बिना टिकट या अनाधिकृत टिकट धूम्रपान जैसे अपराधों पर जुर्माना राशि बढ़ाई गई है।
0: अब रेल परिसर या ट्रेन में धूम्रपान करते पाए जाने पर नए अधिनियम में 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
1: जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर न्यायिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी जिसके द्वारा 2000 से 5000 रुपए तक का आर्थिक दंड दिया जा सकता है।
0: ये जन विश्वास अधिनियम ट्रेन में यात्रियों को सुरक्षित, संरक्षित और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने और रेल प्रशासन पर आपका भरोसा कायम रखने के लिए बनाया गया है।
1: उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: कलुनाथ एंड पार्टी के स्वर में आइए सुनते हैं कुर्जा।

0: क्या ध्यान दें। पता है जन विश्वास अधिनियम 2026 के द्वारा रेलवे अधिनियम 1989 की कई धाराओं में बदलाव किया गया है।
1: हाँ, अब ट्रेन में बिना टिकट या अनाधिकृत टिकट धूम्रपान जैसे अपराधों पर जुर्माना राशि बढ़ाई गई है।
0: अब रेल परिसर या ट्रेन में धूम्रपान करते पाए जाने पर नए अधिनियम में 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
1: जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर न्यायिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी जिसके द्वारा 2000 से 5000 रुपए तक का आर्थिक दंड दिया जा सकता है।
0: ये जन विश्वास अधिनियम ट्रेन में यात्रियों को सुरक्षित संरक्षित और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने और रेल प्रशासन पर आपका भरोसा कायम रखने के लिए बनाया गया है।
1: उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: लोक संगीत का कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारो चैनल से सुन रहे हैं। अब स्वाति शर्मा और गौरव जैन सुरंगे सावन से सुर मिलाएंगे।

स्वाति शर्मा और गौरव जैन के स्वर में इस लोकगीत के साथ लोकगीत का कार्यक्रम, लोक संगीत का कार्यक्रम यही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। दिन के 9:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उस्ताद अमीर खां का राग मियां की मल्हार में गाया ख्याल। विलंबित रचना के बोल हैं करीम नाम तेरो, द्रुत रचना के बोल होंगे बरसन लागी बदरा। तो सुनते हैं आमिर खान, उस्ताद आमिर खान का राग मियां की मल्हार में गाया ख्याल।

Bagamai

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हमने आपको सुनवाया उस्ताद अमीर खान का रागमिया की मल्हार में गाया ख्याल। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। पता के 10 बज चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम जय जवान।

जय जवान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत। श्रोताओं, जैसे हमारे देश के वीर, हमारे सेनाएं, हमारी भारतीय सेना अपने अदम्य साहस और शौर्य से हमारे पूरे देश का एक एक हमारी निधि का की रक्षा करते हैं और हमें वो अवसर देते हैं कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकें, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी आगे बढ़कर हमारे देश का रोशन करें और जहां जाए हमारा देश पहचाना जाए कि ये है इंडिया वाले जो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते।

जब देश का सैनिक सरहद पर होता है, अपने और अपनों से कहीं ना कहीं एक विक्षोभ महसूस करता है, और उस वक्त अगर एक खत आ जाए तो बाँछें ही खिल जाती है जैसे। पर उस खत में क्या लिखा होगा? पहला और आखिरी एक ही सवाल कि घर कब आओगे।

0: कहानियाँ सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: QR कोड स्कैन करो 5000 का कैशबैक पाओ। वाह दिल बन गया।
3: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए सतर्क रहे।
5: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
6: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
5: जी हाँ अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
6: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
5: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर।

0: कार्यालय में।
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी

श्रोताओं, हमारे जवान जहाँ भी तैनात हो, बर्फ से ऊंची ढकी पहाड़ियाँ, चोटियाँ, तपते रेगिस्तान हो या दुर्गम जंगल, उनका मन हमेशा अपने देश, अपने परिवार, अपने प्रियजनों से जुड़ा रहता है। दूरी चाहे कितनी भी हो, रिश्तों की गर्माहट और विश्वास कभी कम नहीं होता। इन्हीं भावना को स्वर दे रहे हैं कुमार शानू और अलका याग्निक। फिल्म का नाम है जीत, कि तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी, तेरी तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूँगा।

0: माह के पहले और तीसरे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिएगा कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के भोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

कार्यक्रम जय जवान आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं। श्रोताओं, भारतीय सैनिक की पहचान केवल उसका साहस शौर्य नहीं होता, बल्कि उसके वचन भी उसकी पहचान होता है। एक बार जो कह दिया तो उसके

तो वो किसी की नहीं सुनते हैं। हमारे जवान जब मातृभूमि की रक्षा की शपथ लेते हैं तो उससे जीवन का संकल्प बना लेते हैं। उसके लिए कसम केवल एक शब्द नहीं बल्कि कर्तव्य का दूसरा नाम होता है। यही कारण है कि वे हर परिस्थिति में अपने दायित्व का निर्वहन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करते हैं। तो जो कह दिया वो करते हैं, और जिसे चाहते हैं उसे जीवन भर चाहते हैं, उसी के साथ जीते हैं, उसी के साथ मरते हैं। तो सुनते हैं इसी भावना के साथ कुमाशानू और अनुराधा पौडवाल के स्वर में फिल्म जीना मरना तेरे संग का ये गीत दिलीप सेन समीर सेन के संगीत से सजा है। समीर ने इसे लिखा है।

0: को पहुंच रहे हैं हम।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मानव क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

घटना स्वयं ही घट पड़े भारतीय सेना की बात हम कर रहे थे, भारतीय सेना की क्या बात करें भाई साहब, सैनिक जिसके लिए दिया गया वचन ही उसका सम्मान होता है। भारतीय सेना का जवान अपने शब्द और अपने संकल्प का सच्चा प्रहरी भी होता है। एक बार जो उसने जिम्मेदारी स्वीकार कर ली, उसे हर परिस्थिति में निभाना उसका धर्म बन जाता है। और इसी विश्वास और समर्पण की भावना को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं फिल्म हम का ये मधुर गीत, कागज कलम दवातला लिख दूं दिल तेरे नाम करूं। मोहम्मद अजीज और शोभना जोशी ने स्वर दिए हैं, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और बोल है आनंद बख्शी के।

देश के जवानों की आकांक्षाओं, इच्छाओं, वचन, उनकी कसमों, उनके वादों, उनके इंतजार सभी को घोलकर आज हमने आपका जय जवान कार्यक्रम प्रस्तुत किया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जय जवान, यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ पर। आप हमें एफएम चैनल पर 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर भी सुन रहे हैं। आकाशवाणी सुनने वाले सभी श्रोताओं को श्याम नारायण लोंगा का प्यार भरा नमस्कार। दिन के 11 बजे हैं, अब आप सुनेंगे फोन इन पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो बीकानेर।

0: कार्यक्रम हेलो बीकानेर सुनने वाले सभी श्रोताओं का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। हमेशा की तरह आज भी अपने निर्धारित समय पर हाजिर हो चुके हैं लेकर प्रोग्राम हेलो बीकानेर। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत इस बात से की सीखा है बांसुरी से एक ही सबक, लाख जख्म हो सीने में फिर भी गुनगुनाते और मुस्कुराते रहिए। जी बिल्कुल श्रोताओं, हमारी जिंदगी में लाख समस्याएं हमारे समक्ष आती हैं और चली जाती हैं, और वो तभी संभव हो पाता है जब हम उन समस्याओं के सॉल्यूशन पर ध्यान देते हैं, ना कि उस समस्या पर ही फोकस होकर रह जाते हैं। श्रोताओं, बात भले ही बहुत छोटी है लेकिन बहुत ही काम की है। कैसी भी परिस्थितियां हमारे समक्ष आए, हमें हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए और हमेशा एक स्थिर मन मस्तिष्क से अपने काम को करते रहना चाहिए, क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव आना निश्चित है। जैसे श्रोताओं, हम भी कार्यक्रम हेलो बीकानेर लेकर हाजिर हैं कि कुछ पल जिंदगी के हम आपस में अपनी बातों को साझा करके व्यतीत कर लें, आपकी पसंद के गीत हम आपको सुनवाएं और उन गीतों के जरिए कुछ समय के लिए ही सही गुनगुनाते हुए उन गीतों को आप अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ इस कार्यक्रम को सुने। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में संयोजन है श्री अमित सिंह का और प्रस्तुति है श्रीमती बरखा थानवी व्यास की, और आज का ये कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो साथी कोमल तनेजा। करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत हमारे आज के पहले श्रोता से। हेलो,
1: हरिओम सर, नमस्कार।
0: हरिओम, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो बीकानेर में।
1: हाँ जी
0: जी, बताइए कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: कमला कॉलोनी से सुभाष करते एडवोकेट बोल रहा हूँ।
0: तो बताइए सुभाष जी, कैसे हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ। मैं ये कह रहा था आज का, हर आदमी को अपना गुरु बनाना चाहिए।
0: जी बिल्कुल,
1: गुरु जो है भगवान का रूप होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीन बताए गए हैं ना। भगवान श्री कृष्ण ने भी गुरुकुल में जाके शिक्षा ग्रहण की थी। तो गुरु एक तरह से अपने को शिक्षा देने वाला है, गाइड देने वाला है, और जितने भी अपने शिक्षा ग्रहण करते हैं, अचार विचार व्यवहार वगैरह सब गुरु से ही मिलते हैं।
0: जी बिल्कुल,
1: गुरु को प्रणाम करना, गुरु की सेवा करना,

0: जो गुरु नहीं करता 3.5 करोड़ तक नरक में भोगता है, और जो गुरु करता है उसे आश्रम में यज्ञ का फल मिलता है।
1: जी जी,
0: गुरु की सेवा भगवान की सेवा मानी गई है। भगवान भी कहते हैं पहले गुरु की सेवा करो, जिसने गुरु की सेवा कर ली मेरी सेवा कर ली।
1: जी बिल्कुल सुभाष जी, आपने सही कहा कि भी हमारे जीवन में गुरु जरूर होना चाहिए, और फिर चाहे वो हमारे शिक्षा से रिलेटेड गुरु हो, वो हमारे आध्यात्मिक गुरु हो, वही हमें जो जिंदगी का मूल सच है हमें समझाते हैं, और कैसे हमें अपनी जिंदगी को जीना चाहिए, सांसारिक जीवन जीते हुए कैसे हमें अपने नियम या अपनी मर्यादा कैसे बना के रखनी चाहिए, वो सब हमें गुरु ही सिखाता है।
0: बना के ही आगे बढ़े हैं। बिल्कुल, गुरु गोविंद दोनों सुने किने किसके लागू पाए, बलियारी गुरु आपने बता दिया गोविंद देवता।
1: जी बिल्कुल, और गुरु बिल्कुल सही कहा आपने सुभाष जी। तो बताइए सुभाष जी, आज आप गीत कौन सा सुनेंगे?
0: पुरानी फिल्म सजा का है, देवानंद की बेहतरीन फिल्म थी, लता की आवाज में है, जाने कहां को बेहतरीन गाना है ये, बहुत ही मीठा और मधुर।
1: जी सुभाष जी, आपने फिल्म सजा का गीत पसंद किया है, तो अब हम आपकी फरमाइश को पूरा करते हैं, आपने हमें कॉल किया, शुक्रिया,
0: धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो बीकानेर में।
1: धन्यवाद जी। मैं जय नारायण व्यास कॉलोनी बीकानेर राजस्थान से डॉक्टर अशोक कुमार शाही।
0: जी अशोक जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया है।
0: बताइए क्या संदेश लेकर आए हैं आज?
1: संदेश यही है कि देखिए, अब बारिश कुछ राजस्थान के ईस्टर्न भाग में हो रही है, वेस्टर्न में थोड़ी कम हो रही है, तो धीरे धीरे ये सब यूनिफॉर्म रेनफॉल हो जाएगा। उसे हमारे दोरों पर पर पाए जाने वाले औषधीय सुगंधित पौधों के लिए वरदान सिद्ध होगी। जो नेचुरल पाए जाते हैं, नेचुरल में जैसे सुगंधा है, फूल घास है, और भी बहुत सारी घासें हैं, पौधे हैं, उनके लिए ये वरदान सिद्ध होगी। औषधीय गुण तो रखते ही हैं, सुगंधित गुण भी रखते हैं, इसके अलावा बच्चों के पीएचडी डीएससी करने के लिए भी एक वरदान बने हुए हैं, क्योंकि उनके ऊपर बहुत कम काम हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर मरुभूमि के ऊपर बहुत ऐसे पौधे हैं जिनके ऊपर कोई ज्यादा काम नहीं हुआ है।
0: जी बिल्कुल अशोक जी, आपने सही कहा। और सावन का महीना लग चुका है और बारिश

0: की जो फुहारें हैं वो हमारे बीकानेर शहर में भी हल्की फुल्की ही सही पर आ रही हैं।
1: आ तो रही हैं।
0: और आपने जो बताया है कि इतनी अच्छी आपने जानकारी साझा करी है कि हमारे जो धोरों पर भी कई तरह की जड़ी बूटियां पनपती हैं, कई तरह की घास पनपती हैं जो हमारे लिए बहुत लाभकारी होती हैं, और रिसर्च कर रहे बच्चों के लिए भी एक नया विषय उनको दे सकती हैं कि वो उन पर रिसर्च करें।
1: शोध कार्य करने के लिए भी बहुत लाभदायक है। ऐसे ऐसे केमिकल कंपाउंड मिलते हैं जो कि कैंसर के लिए भी रोकने के लिए, रोकथाम के लिए है। वो तो उसमें एक घास है, बूर घास थी, वो मैंने यहाँ से प्राप्त की थी, जिसके अंदर कैंसर के को प्रतिरोध करते हैं। तो उसके ऊपर हमने अमेरिका से पेपर भी पब्लिश किया हुआ है।
0: जी बिल्कुल अशोक जी, कई जड़ी बूटियां आयुर्वेद ने हमें दी हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत बहुत लाभकारी होती हैं, और भयंकर से भयंकर बीमारी में भी आराम देने का, उसे उस बीमारी से हमें निजात दिलाने का काम करती हैं। लेकिन बस कोई भी दवा अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो पूरी चिकित्सक की सलाह से करें, और पूरी जो परहेज उसके अकॉर्डिंग हमें बताई जाती है वो भी हम पूरी तरह से करें, तो हम निश्चित रूप से कई बीमारियों से अपने आप को निजात ला सकते हैं।
1: बिल्कुल जी।
0: तो बताइए अशोक जी, आज आप पसंद आपकी बात कर लें कि आज आप गीत कौन सा सुनेंगे?
1: ये गाना हमारे मित्र भी सुनना चाहते हैं।
0: जी मित्र भी आज आपके पास बैठे हैं, क्या बात है,
1: मित्र भी आ जाते हैं।
0: तो बताइए भी आपके मित्रों का नाम लीजिए, उन्हें भी बोलिए हमें यहाँ पर कॉल करें, अपनी पसंद का गीत सुने।
1: उनको कहा कभी तो कॉल लगा लिया करो, हमारे रिप्रेजेंटेटिव की आप ही है, बात कर लिया।
0: बहुत खूब, बहुत चलो खैर, और सुनते तो है हमारे कार्यक्रम, हमारे श्रोता है,
1: ही लिखवाते हैं, खुद भी लिखते हैं, वो पोस्ट ऑफिस में पहले लाता हूँ, लिखता हूँ डाल के आता
0: हूँ। जी बिल्कुल,
1: फिल्म है ठाकुर जमनाल सिंह, एक फिल्म आई थी, उसका एक गाना है, आशा जी ने गाया, बहुत अच्छा गाना, हम तेरे बिन जी ना सकेंगे सनम।
0: जी जी बिल्कुल, हम आपकी फरमाइश को जरूर पूरा करेंगे अशोक जी। तो अपने आप मित्रों के नाम ले लीजिए।
1: मित्रों में हमारे हैं, देखिए जी, काशीराम जी हैं, एक इधर पास में गिरधारी लाल है, और इस तरह से ये दो तीन मित्र है जो संगीत में रुचि रखते हैं, तो वो सुन लेते हैं,
0: तो वो हमारे रेडियो के कार्यक्रम सुनते हैं।
1: हाँ वो सुनते हैं जी,
0: और लीजिए सुनिए आपकी पसंद का ये गीत, आपने हमें कॉल किया, शुक्रिया,
1: धन्यवाद।

0: हेलो
1: कोमल जी, नमस्ते
0: जी। नमस्ते, स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो बीकानेर में।
1: गांव खोखरा मली से विनोद बरक से बोल रहा हूँ।
0: जी विनोद जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत ही बढ़िया है, आपके प्रोग्राम सुनते रहते हैं।
0: हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं, शुक्रिया आपका बहुत बहुत।
1: बहुत शानदार स्तुति होती है आपकी, प्रोग्राम जी गान गाकर आप पेश करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है।
0: जी बिल्कुल, बस यही आपकी प्रतिक्रिया हमें और मोटिवेट करती है कि कार्यक्रम को हम और भी बेहतर बनाते चले जाएं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो बताइए,
1: बरसात हुई नहीं अभी हमारे यहाँ?
0: बरसात नहीं हुई, कोई बात नहीं, सावन का महीना लग चुका है
1: और लग चुका है,
0: भोले बाबा की कृपा हुई तो हम चाहते हैं कि इस बार अच्छी बरसात हो, किसानों के लिए अच्छी रहे, सब खेतीबाड़ी आपकी जो है वो अच्छे से पनपे।
1: हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, खेतीबाड़ी तो बहुत अच्छी है, पर बरसात नहीं अभी तक, इंतजार है बरसात का। आपसे भी हम कह रहे हैं कि बीकानेर में अगर बरसात हो तो हमारी तरफ भेजो।
0: जी हमारे यहाँ पर बहुत हल्की फुल्की बरसात है, ज्यादा मात्रा में होती तो फिर भी भेज देते हैं हम। बहुत हल्की फुल्की बरसात है हमारे यहाँ पर भी, बादल तो बहुत अच्छे आते हैं लेकिन बरसते इतना नहीं है जितनी हम उम्मीद करते हैं।
1: चलो एक गीत सुनेंगे, क्या पता इंद्रदेव हमारी सुन भी ले।
0: तो ये कहते हैं संगीत में बहुत ताकत होती है और अगर हम शिद्दत से किसी चीज को चाहें तो वो हमारी पूरी भी होती है, तो हम भी यही कामना करते हैं कि आप बारिश को चाह रहे हैं, मतलब कि कह रहे हैं कि बारिश हमारे शहर में हो, अच्छे से हो, आप हमसे उधार मांग रहे हैं बारिश, तो भाई तो हम तो सिर्फ आपको कामना ही कर सकते हैं कि आपके वहाँ पर बहुत अच्छी बारिश हो।
1: हम भी करें,
0: प्रार्थना करते हैं हम सब मिलकर उस ईश्वर से, और अगर बारिश होती है तो हम सबके लिए बहुत अच्छा है।
1: कि पसंद तो नवासी में एकदम आई थी मजबूर, और गीत के बोले रिम जिम बरसता बाहर ये पानी,
0: बिल्कुल
1: मोहम्मद अजीज और उन्होंने पुराल की बात में।
0: जी बेहद ही खूबसूरत गीत है और फिल्म मजबूर का गीत आपने पसंद किया है।
1: बिल्कुल, सुनने वालों के नाम थोड़े से बोल दूं मैं?
0: जी बिल्कुल, लीजिए आप अपने संगी साथियों के नाम।
1: हाँ जी, विशाल बारासा, विकास बारासा, रोशनी बारासा, स्टेफन बारासा।
0: बेहद ही खूबसूरत गीत, आप सब और आपके संगी साथी मिलकर सुनिए इस गीत को, आपने हमें कॉल किया, शुक्रिया।
1: ओके।

0: हेलो
1: जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो बीकानेर में।
0: हाँ मैडम जी नमस्कार, मैं आपके बीकानेर के जो भी कार्यक्रम प्रस्तुत होते हैं रेडियो के माध्यम से सुनता हूँ और आपकी जो प्रस्तुत होती है बहुत सराहनीय है मैडम जी।
1: जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो पहले बताइए आपका परिचय, आप कहाँ से बोल रही हैं?
0: मैं जिला जबलपुर से, ग्राम बगरई चरगवा रोड से, ग्राम बगरई गांव से श्याम शंकर राय बोल रहा हूँ मैडम जी।
1: जी श्याम शंकर जी, कैसे हैं आप?
0: बिल्कुल फर्स्ट क्लास है मैडम जी, आप लोगों का आशीर्वाद है
1: जी। आज आपका कॉल पहली बार लगा है?
0: पहली बार लगा है मैडम जी। जी
1: जी, तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम हेलो बीकानेर में।
0: आप एक और बात कहना चाहता हूँ मैडम जी, जो आपका जो प्रस्तुति होती है मैडम जी जो भी कार्यक्रम में, तो बहुत ही लाजवाब तरीके से आपकी जो आवाज है और आपकी प्रस्तुति हमको बेहद पसंद आती है।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे कार्यक्रम सुनते हैं और उन्हें पसंद भी करते हैं, और आपकी यही प्रतिक्रिया हमें कार्यक्रम को और बेहतर बनाने की और उत्साहित करती है।
0: जी मैम
1: जी, तो बताइए आज आप क्या संदेश देंगे?
0: मैम संदेश तो अभी ये है कि बरसात का मौसम लगा हुआ है और हम सभी को ये जानते हैं कि गर्मियों के मौसम में पानी की बहुत ही ज्यादा किल्लत आती है दो तीन महीने। तो मेरा ये निवेदन है सभी जो श्रोता मेरी आवाज सुन रहे हैं कि हमको पानी गड्ढा करके तालाब बना के पानी को स्टॉक करना है, उसको फालतू बहने नहीं देना है, ताकि हमको आने वाली फसलों में सिंचाई के काम में आए और जो ट्यूबवेल वगैरह जो पानी की कमी आती गर्मियों में इसकी किल्लत ना हो।
1: जी बिल्कुल सही कहा।
0: वृक्षारोपण अनिवार्य है, वृक्षारोपण लगाएंगे अपन तो प्रकृति हरी भरी रहेगी, तो प्रकृति हरी भरी रहेगी तो हमारा सबका जीवन सुखी व बीतेगा।
1: जी जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने जानकारी हमें दी, क्योंकि बारिश का मौसम अभी स्टार्ट हो चुका है और बारिश का जो पानी होता है बहुत शुद्ध होता है और उसकी बचत हमें करनी चाहिए। और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अगर हम अपने घर में लगा सकते हैं तो हम वो घर पर लगा के उसकी बचत कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: नहीं तो हमारे पारंपरिक जो तरीके हुआ करते थे उन्हें भी हम अपना के पानी की बचत कर सकते हैं।
0: क्योंकि मैम गर्मी में बहुत ही विनाश काली जो समस्याएं आती है पानी की, और लोगों को कम से कम एक डेढ़ दो दो किलोमीटर दूर पानी भरने जाना पड़ता, तो कम से कम हम प्रकृति को बचा रहे हैं क्योंकि पेड़ पौधे लगाएंगे, पानी का स्टॉक करेंगे, तो ये जो छोटी छोटी समस्याएं हमको झेलनी नहीं पड़ेंगी।
1: जी जी बिल्कुल, और बचत तो हमेशा हमारे काम आती है, फिर चाहे वो धन की बचत हो, पानी की हो, बिजली की हो, किसी भी ऊर्जा की बचत हम करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे लिए फायदेमंद रहती ही रहती है।
0: एक और छोटी सी रेडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो भी अपना हैप्पी बर्थडे मनाते हैं लोग, ये जरूर इस मौसम में ध्यान दें कि हैप्पी बर्थडे के मनाने के साथ साथ कम से कम दो चार वृक्षारोपण जरूर करें,
1: वृक्षारोपण जरूर करें, साथ ही उनका ख्याल भी रखें।
0: जी ख्याल
1: पूरा जितना
0: जी,
1: चाहे हम एक पेड़ भी लगा रहे हैं तो उसका जो ख्याल है,
0: अगर हम उसको बड़ा कर लिया तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि का दर्शा है।
1: जी बिल्कुल, और बारिश के मौसम में तो बहुत जल्दी पेड़ पौधे पनपते हैं
0: जी,
1: और हम उसको थोड़ा सा भी ख्याल रख के हम उस पे काफी प्रकृति को अपनी हरा भरा कर सकते हैं।
0: मैम जी बिल्कुल बिल्कुल
1: जी, तो आप बताइए आज आप गीत कौन सा सुनेंगे?
0: मैडम जी साजन फिल्म का सॉन्ग है और तू शायर है मेरी शायरी का सॉन्ग हो तो आप सुना दीजिए।
1: जी जी बिल्कुल, ये गीत हमारे कंप्यूटर जी ने सर्च कर लिया है।

0: हेलो
1: जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो बीकानेर में।
0: जी धन्यवाद। मैं वृंदावन कॉलोनी से राजेंद्र बिडवालकर बोल रहा हूँ।
1: जी राजेंद्र जी, कैसे हैं आप?
0: मैं ठीक हूँ। मैडम आप कैसे हैं?
1: जी हम भी अच्छे से हैं। बताइए क्या आज संदेश लेकर आए हैं?
0: संदेश मेरा आज ये ध्यान में आ रहा है कि प्लास्टिक जो है ना, थैलियाँ वगैरह, ये इसका उपयोग करते हैं तो इसका उपयोग बंद करना चाहिए। और ये क्योंकि नालियों में फंस जाती है, पशु खा लेते हैं उनको, उनको बड़ा नुकसान होता है, बहुत हार्मफुल है ये चीजें, पर्यावरण को भी इसका नुकसान होता है इसका।
1: बिल्कुल सही कहा आपने राजेंद्र जी। प्लास्टिक की थैली पर एक रिसर्च हुई है कि उसे जमीन पर जब गाड़ा गया और कई सालों बाद अगर उसे हम वापस निकालते हैं तो वो एज इट इज वैसी की वैसी ही उसी फॉर्म में हमें वापस मिलती है। तो वो प्लास्टिक जो है वो ऐसा है कि वो ना तो गलता है, ना सड़ता है और ना ही वो किसी और फॉर्म में तब्दील होता है। तो थोड़ा सा हमें ख्याल रखना है कि भाई अगर हम सब्जी लेने जा रहे हैं तो हम घर के बने हुए थैले जी, पहले हम घर पे बनाया करते थे थैले और उनका उपयोग किया करते थे, वही उपयोग हमें वापिस स्टार्ट करना है। जो पुरानी चीजें हम छूटते चले जा रहे हैं और आगे तो हम बढ़ रहे हैं, विकास की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ कई हार्मफुल जो चीजें हैं उनका उपयोग हम करना सीख रहे हैं, जिसमें सबसे खतरनाक प्लास्टिक को माना गया है।
0: सबसे खतरनाक है मैडम, ये तो बहुत खतरनाक है,
1: क्योंकि इसका सेवन भी हमारे स्वास्थ्य के लिए दुष्कर है। अगर हम प्लास्टिक के बर्तनों में या प्लास्टिक की बॉटल का भी अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे शरीर में कई ऐसी बीमारियों को जनरेट कर देता है कि हमें पता ही नहीं चलता।
0: इससे कैंसर का खतरा भी बढ़ता जा रहा है इस चीज से।
1: कैंसर तो विशेष रूप से है ही, और उसके अलावा हमारी इम्यूनिटी सिस्टम डाउन करता है और हमारे कई न्यूरॉन्स संबंधी प्रॉब्लम्स भी ये प्लास्टिक के इस्तेमाल से हमारे शरीर में आती है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं।
1: तो हमारे जो पारंपरिक जो तरीके होते थे भोजन बनाने के, भोजन खाने के, और बर्तनों का इस्तेमाल जो हमारे यहाँ पर हुआ करता था पहले, चांदी सोना चलो अब हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन हम स्टील या कोई भी मेटल का जो भी हम इस्तेमाल है वो हम कर सकते हैं। तो बताइए आप राजेंद्र जी, आज आप गीत कौन सा सुनेंगे?
0: मधुबन में राधिका नाचे रे कोहिनूर पिक्चर का है मैडम।
1: बेहद ही खूबसूरत गीत है ये,
0: तो अच्छा लगता है
1: जी। क्लासिकल गीत आपको बहुत पसंद है और हम भी आपकी फरमाइश को पूरा करते हैं। आपने हमें कॉल किया, शुक्रिया। लीजिए सुनिए ये गीत।
0: धन्यवाद मैडम।

राधिका नाचे रे सा सा सा नी दा पा मा पा दा पा गा मा रे सा नी रे सा।

0: हेलो
1: जी, नमस्ते मैम।
0: जी नमस्ते, स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो बीकानेर में।
1: जी, कहते हैं वाणी से ही विष झरे, वाणी से ही रसधार, मीठा वाणी बोलिए, जीवन के इस जीवन का इसी में छुपा है सार। इन्हीं चंद अल्फाजों के साथ आदिवासी बहुल क्षेत्र उमरिया मध्य प्रदेश से मैं संतोष कुमार राव आपको स्नेहिल अभिवादन प्रणाम करता हूँ मैडम।
0: जी, आपका अभिवादन भी हमने सब प्रेम स्वीकार किया। संतोष जी, बहुत अच्छी आपने बात कही, जितनी अच्छी आपने बात कही उतनी ही अच्छी आपकी वाणी भी है।
1: जी मैम, और ये सब कुछ सीखते हैं आपसे, क्योंकि रेडियो जो एंकर होते हैं इतनी मीठी और इतना शुद्ध हिंदी का उच्चारण करवाते हैं, जिसे हमारे अंदर छुपी हुई भावनाएं सीधे सीधे निकल के आती है रेडियो पर।
0: जी बिल्कुल, आपने अभी जो चंद शब्द, जो चंद पंक्तियां आपने बोली ना, उसी से हम समझ गए कि भाई आप तो रेडियो के अच्छे खासे फैन है।
1: जी बिल्कुल
0: जी, और आप हमारे नियमित कार्यक्रम सुनते हैं और उन्हें पसंद भी करते हैं, तो हमें अच्छा लगता है।
1: बिल्कुल मैम, आज का दौर जो खास करके युवा वर्ग है सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव रहते हैं, और ऐसे में रेडियो हमारा सबसे अच्छा साथी भी होता है।
0: बिल्कुल, अगर हम अकेले घर पर हैं और घर का काम कर रहे हैं, उस दौरान यदि हम रेडियो चला देते हैं तो बिल्कुल भी अकेलापन हमें महसूस नहीं होता है।
1: बिल्कुल मैम, और खास करके जो कृषि कार्य से जुड़े होते हैं हमारे किसान भाई, हम भी एक कृषक के रूप में है, यदि खेती करते हैं कभी तो रेडियो की स्पीड थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं, तो उसमें जो गाने बजते हैं और संगीत का जो कार्यक्रम होता है उसमें से हमारा पूरा काम बढ़ जाता है और हमें परेशानी भी नहीं होती और हमारा काम भी आनंददायक हो जाता है,
0: और पता भी नहीं चलता ना कब काम कैसे निपट गया,
1: है ना? समय का पता ही नहीं चलता,
0: समय का बिल्कुल पता नहीं चलता है। बस यही तो खास बात है हमारे रेडियो की, कि हमारा रेडियो संचार के साथ साथ हमारे पूरे मन मस्तिष्क में भी एक ऐसा संचार घोल देता है कि निश्चित रूप से हम अपने काम को अच्छा आगाज, अच्छा अंजाम तो दे ही देते हैं, साथ ही साथ एक जो हमारे मन मस्तिष्क में जो तनाव को पनपाता है वो भी काफी हद तक रेडियो से हमारे दूर हो जाता है।
1: जी, और अच्छी बातों को भी हम लोग ग्रहण करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रमों का प्रसार होता है ना आकाशवाणी के बीकानेर केंद्र पर, तो बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छी अच्छी वाणियों का उपयोग हमें करना ही चाहिए, और अच्छी वाणियों का उपयोग करेंगे तो जो दूसरे को ही सुनता है हमें।

0: समझ सकता है कि व्यक्ति कैसा है, उसकी बातें कैसी हैं।
1: बस यही प्रेम प्यार आपका हमारे रेडियो के प्रति बना रहे और आप ऐसे ही हमारे रेडियो को फॉलो करते रहें, उनके कार्यक्रमों को सुनते रहें और अपने जीवन को भी एक अच्छा, बिल्कुल आसानदायक, बिल्कुल सुलभ अपनी जिंदगी को आप व्यतीत करें। तो बताइए आज आप गीत कौन सा सुनेंगे?
0: मूवी का नाम है मैडम त्रिदेव, बहुत ही प्यारा सा गाना है, तिरछी टोपी वाली।
1: बेहद ही खूबसूरत गीत है ये और अब हम आपकी फरमाइश को पूरा करते हैं, आपने हमें कॉल किया, शुक्रिया।

0: डिजिटल साइबर जो क्राइम है वो भी बढ़ता चला जा रहा है, तो आपके मोबाइल नंबर या आपकी कोई भी किसी भी तरह की कोई डिटेल आपसे साझा करने के लिए बोलता है तो आप बिल्कुल भी ना करें।
1: पीपी नंबर मांगता है तो कोई भी नंबर अनजान व्यक्ति को देना नहीं चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहा, और यही है साइबर सिक्योरिटी का मतलब जो मूल मंत्र है वो भी यही है कि हम खुद अवेयर रहें। अगर हम खुद अवेयर हैं, जागरूक हैं इन चीजों को लेके, और वो तभी हो पाएगा जब हम इसकी प्रॉपर जानकारी अपने पास रखेंगे।
1: हाँ जी मैडम।
0: तो आप अपनी प्रॉपर जानकारी जो भी है आपके बैंक अकाउंट से आपको कैसे यूज में लेना है, ऑनलाइन अगर आप कर रहे हैं कोई भी काम तो उसमें आप पहले अवेयर रहें और आपको क्या चीज साझा करनी है क्या चीज साझा नहीं करनी है उसकी पूरी जानकारी पूरी डिटेल पढ़ें अच्छे से, और उसके बाद ही उस चीज को करने की आप प्रयास करें।
1: हाँ जी मैडम।
0: तो बताइए जब गीत कौन सा सुनेंगे?
1: मैडम गीत है दोस्त फिल्म का गीत है, गाड़ी बुला रही है सीटी बजा रही है।
0: बेहद ही खूबसूरत गीत है, और कहीं जाने का प्रोग्राम बन रहा है क्या? मौसम तो सुहाना हो चला है।
1: अभी तो मौसम तो सुहाना तो हो गया मैडम, बरसातें अभी हो रही है, अब गर्मी फिर दोबारा होगी वापस।
0: वो तो अब गर्मी का थोड़ा मौसम तो रहेगा ही, वैसे सावन का महीना लग चुका है, और आपने गाना ऐसा पसंद किया है कि बस आपकी इच्छा हो रही है कि कोई गाड़ी पे हम बैठे और कोई अच्छी सी यात्रा करने के लिए निकल चलें।
1: जी आपकी मेहरबानी हो तो मैडम चले जाएंगे। जी
0: बिल्कुल, हम कामना करते हैं कि आपका भी ऐसा कोई प्रोग्राम बने, आप जरूर प्रकृति का आनंद लें और गाड़ी को बुला ही रहे हैं तो गाड़ी भी आपके लिए तैयार रहे। फिल्म दोस्त का गीत पसंद किया है और जो बेहद ही खूबसूरत गीत है, और अब हम आपकी को पूरा करते हैं। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। आपने हमें कॉल किया, शुक्रिया।
1: थैंक यू मैडम।

0: कार्यक्रम हेलो बीकानेर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। और अब ये बात करते हैं हमारे अगले श्रोता से। हेलो,
1: नमस्ते मैडम
0: जी। नमस्ते, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: थैंक यू मैडम
0: जी। बताइए कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं राधेश्याम कटारिया, श्री कर्णपुर जिला गंगानगर से बोल रहा हूँ।
0: जी राधेश्याम जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया मैडम जी, आपको सुनाओ।
0: जी हम भी बढ़िया से हैं। बताइए आज आप क्या संदेश लेकर आए हैं?
1: आज हम संदेश ये लेकर आए मैडम, बस में यात्रा करो या ट्रेन में यात्रा करो, अपने सामान की पूरी तरह हिफाजत करो और किसी भी यात्री से जो अनजान है उससे अपने मोबाइल शेयर मत करें, जिससे बहुत बड़ा धोखा हो सकता है, उसका खाम पियाना भी भुगतना पड़ सकता है।
0: जी जी बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम अवेयर रहेंगे तो निश्चित रूप से हम सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि आजकल

0: हेलो
1: हेलो जी नमस्कार
0: जी नमस्कार स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो बीकानेर में।
1: स्वागत के लिए आकाशवाणी बीकानेर तकनीकी टीम का और सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बताइए मंसूर जी कैसे हैं आप?
1: हम सब अच्छे और उम्मीद करता हूँ मस्त होगी।
0: जी बिल्कुल आपने सही उम्मीद करी है, हमारा पूरा आकाशवाणी परिवार स्वस्थ है मस्त है और अपने काम में व्यस्त है। बताइए आज आप क्या संदेश देंगे?
1: संदेश ये देखिए मौसम परिवर्तन चल रहा है, बारिश मतलब कभी धूप अचानक मौसम परिवर्तन है, उसमें हमें मतलब पानी का पीने में स्वच्छता रखनी चाहिए और खाने पीने में

0: उनको ढक्कर रखें, मक्खी मच्छर वगैरह ज्यादा हो जाते हैं इस मौसम में, उनका भी हमें ख्याल रखना चाहिए, हम स्वस्थ रहेंगे और बुजुर्गों का और बच्चों का खास ख्याल रखें इस मौसम में।
1: जी जी जी जी बिल्कुल, सावन का महीना लग चुका है और प्रकृति के अकॉर्डिंग हमें अपना खान पान करना चाहिए। विशेष रूप से ताजा खाना बना हुआ ही हम इस समय इस्तेमाल करें, क्योंकि मौसम में नमी रहती है, इसके कारण हमारा जो खाना है या हमारे आसपास का वातावरण है थोड़ा सा प्रदूषित होने में ज्यादा समय नहीं लेता, बहुत जल्दी प्रदूषित होता है, जिसमें खान पान जो होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है, और खाने पीने की सामग्री हम हमेशा ताजी बनाएं और ताजी खाएं। तो बताइए मंसूर जी, आज आप गीत कौन सा सुनेंगे?
0: मतलब सावन आया तो सावन के मौके पर गीत सुन लेते हैं, आया सावन जिनके फिल्म से टाइटल सॉन्ग है आया सावन झूम के, इसको लिखा है आनंद भक्ति ने, संगीतकार है लक्ष्मीकांत चैरलाल, गाया है मोहम्मद की और लता मंगेशकर।
1: जी बेहद ही खूबसूरत गीत आपने चुना है मंसूर जी,
0: मित्रों नाम ले लो।
1: जी बिल्कुल लीजिए आप अपने संगीत साथियों के नाम।
0: फरियाद अली, काड़ुभाई, हसभाई, गोपाल भाई, पुरुषोत्तम पंचायत गंगा।
1: जी तो आप सब मिलकर सुनिए फिल्म आया सावन झूम के का ये गीत, आपने हमें कॉल किया शुक्रिया।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो बीकानेर में।
1: भाई जी बीकानेर में मेरा आज पहली बार फोन लगाया, मुझे बहुत खुशी हो रही है।
0: जी आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में कि आज आपका कॉल लग गया और आपकी और हमारी बातचीत हो रही है।
1: जी
0: बताइए कहाँ से बोल रहे हैं और कौन बोल रहे हैं?
1: मैं महाराष्ट्र ग्राम कराड़ जिला सातारा से तुकाराम जाधव बोल रहा हूँ।
0: जी तुकाराम जी, बहुत दूर से आपने हमें कॉल किया है।
1: जी
0: तो हमारे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं?
1: कार्यक्रम सुनते ही तो
0: करते क्या है?
1: मेरा वर्कशॉप है, वेल्डिंग काम करते हैं, घर के दरवाजे ग्रिल सिलिया बनाते हैं।
0: जी जी, तो बहुत अच्छा काम करते हैं आप, तो घर को सजाते हैं।
1: जी
0: इन्हीं से हमारे घर की शो

0: वह जो है वो बढ़ती है
1: और सुरक्षा भी होती है ना।
0: सुरक्षा तो है ही और साथ ही शोभा भी है। हाँ जी बिल्कुल, इनके बिना सुरक्षा भी नहीं है तो इनके बिना हमारे घर की जो एक खूबसूरती निकल के जो निखर के बाहर आती है वो इनकी बदौलत ही आती है। तो बहुत अच्छा आप काम करते हैं, तो बताइए क्या संदेश देंगे।
1: बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में लोगों ने पानी में बरसात में भीगना नहीं चाहिए। अगर बरसात में जाना है तो साथ में छाता लेना चाहिए।
0: तो भीगना क्यों नहीं चाहिए, बरसात में तो भीगने का आनंद अलग ही है। बच्चे भीगते हैं तो हमारा भी है अधिकार हक कि हम भी बारिश में आए तब हम थोड़ा अपने आप को भिगोए, बारिश की बूंदे अपने ऊपर पड़ने दे।
1: जी बिल्कुल सही
0: जी, थोड़ा बहुत तो हमें बारिश का आनंद लेना भी चाहिए। हम बड़े हो गए हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम बारिश में नहा नहीं सकते या बारिश में हम बारिश का हम आनंद नहीं ले सकते।
1: सभी ऋतु का आनंद लेना चाहिए, बारिश का भी लेना चाहिए।
0: जी हम तो यही कहेंगे कि अगर बारिश आपके वहाँ पर बारिश हो रही है अच्छी,
1: बारिश हो रही
0: है तो आप तो आनंद लीजिए बारिश का। और साथ ही बताइए आज आप गीत कौन सा सुनेंगे।
1: फिल्म का नाम है राजा और अंकल।
0: कौन सा गीत?
1: अंग बसंती छा गया मस्ताना मौसम आ गया।
0: तो हम भी यही कामना करते हैं कि आपके वहाँ जैसे मस्ताना मौसम बना हुआ है वैसे ही हमारे राजस्थान बीकानेर में भी मौसम का आगाज हो।
1: कुछ मित्रों का नाम लेना चाहता हूँ।
0: जी बिल्कुल लीजिए आप अपने संगी साथियों के नाम।
1: सबसे पहले मैं आपको डेडिकेट करना चाहता हूँ।
0: शुक्रिया।
1: हमारे मित्र PSI राजू शेड़के जी, आर्यन पाटिल जी, विठल पवार जी, गौतम कोकाटे जी, विकास शेड़के जी, श्रीकांत भंडारे जी, विजय पाटिल सारुकर जी, धनंजय पटेल जी, रमेश जाधव जी और उदय काले जी, हम सभी गीत सुनना चाहते हैं।
0: जी तो आप सब मिलकर सुनिए आपकी पसंद का ये गीत फिल्म राजा और रंक से। तो शुक्रिया आपका, आपने हमें कॉल किया। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: संग बसंती अंग बसंती।

ये था हमारा आज का कार्यक्रम हेलो बीकानेर। श्रोताओं, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। यदि आप भी अपनी पसंद का कोई गीत हमारे कार्यक्रम हेलो बीकानेर के अंतर्गत सुनना चाहते हैं, तो आप अपना फोन कॉल रिकॉर्ड करवा सकते हैं बुधवार समय दिन में 11 से 12 बजे तक। हमारा फोन नंबर है

0: 01512804012 01512804012 हमें आपकी फोन कॉल का इंतजार रहेगा। कार्यक्रम हेलो बीकानेर का प्रसारण हम शनिवार दिन में 11 से 12 बजे तक करते हैं। इस कार्यक्रम में संयोजन था श्री अमित सिंह का और प्रस्तुति थी श्रीमती बरखा थानवी व्यास की। और अब आपकी रेडियो साथी कोमल तनेजा को दें अनुमति। नमस्कार,
1: आप सुन रहे थे हेलो।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो बीकानेर। यह आकाशवाणी बीकानेर का ढूला मारू चैनल है। दिन के 12 बजे हैं, श्रोता सुनेंगे हिंदी में समाचार। ये समाचार आकाशवाणी के
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आंध्र प्रदेश में विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इसे 5640 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने प्रधानमंत्री को हवाई अड्डे की प्रमुख विशेषताओं की जानकारी दी। श्री मोदी आज राज्य में लगभग 18,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक के मैसूरू पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे।
3: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेका स्मारक स्वामी विवेकानंद के विचार और सिद्धांत के प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस स्मारक के साथ बॉडी एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फीथिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम की ओर से यहाँ शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य कठोर दंडों का प्रावधान करने और फास्ट ट्रैक अदालत बनाकर लोक परीक्षाओं में अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। अधिनियम में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति की जब्ती जैसे कठोर दंड शामिल हैं। इसमें यह भी अनिवार्य है कि प्राथमिकी दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर अपराधों की जांच पूरी की जाए, जबकि आरोप पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त किए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाई जानी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया। मध्य प्रदेश पुलिस के नशा मुक्त अभियान नशे से दूरी है जरूरी के दूसरे चरण ने 5 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। लंदन स्थित वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने सभी 5 उपलब्धियों को मान्यता दी है। इस अभियान ने कई विश्व रिकॉर्ड भी बनाए। इंदौर पुलिस आयुक्त कार्यालय ने 17 लाख से अधिक लोगों को नशा विरोधी ई शपथ दिलाई और 8534 प्रतिभागियों की मानव श्रृंखला बनाई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल शाम ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से फोन पर बातचीत की और पश्चिम एशिया क्षेत्र में जारी तनाव पर चिंता व्यक्त की। श्री जयशंकर ने किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी पक्ष द्वारा किए गए ऐसे किसी भी हमले की निंदा करता है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित चुनाव के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता को नकारे जाने का प्रमाण है। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों का पाकिस्तान लगातार दमन कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राष्ट्रीय पुरुषोत्तम दास टंडन की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने कहा कि देश सेवा के प्रति उनका समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने जूडो में पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में स्वर्ण पदक जीते। वहीं मुक्केबाजी में 10 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बना ली है। एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक में रजत, जबकि यशवीर सिंह ने कांस्य पदक जीता। तेजस्वी शंकर ने डेकाथलॉन में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत ने अब तक

0: 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक सहित 23 पदक जीत लिए हैं। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी आज बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, कोंकण, गोवा, केरलम और माही में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार। ये समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जा रहे थे। यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। दिन के 12:05 हुए, श्रोता सुनेंगे हमारे आज शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

दिन में 12:10 पर श्रोता सुनेंगे सुगम संगीत। हमारी इस सभा में फिल्म संगीत आप सुन सकेंगे दिन में 12:40 पर और दोपहर 2:30 पर।

महिला जगत कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा दोपहर 1:05 पर। इसमें आज आप प्रकृति बचाओ, जंगल बचाओ और जीवन बचाओ विषय पर चर्चा सुनेंगे। साथ ही लोकमान्य तिलक पुण्यतिथि पुरुषोत्तम दास टंडन जयंती पर विशेष बातचीत की जाएगी।

शाम 5:05 पर श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम युवाणी। इसमें आज आप भारतीय संस्कृति और युवा पीढ़ी विषय पर आज की बात सुनेंगे। साथ ही अनुच्छेद 76 और खीचन वेटलैंड विषय पर भी बातचीत की जाएगी।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी आप सुन सकेंगे शाम 7 बजे। शाम 7:30 पर श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम गुंजे गांव ग्वाड ग्रामीण जगत। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे बीकानेर की सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों का साप्ताहिक कार्यक्रम बीकानेर दर्पण। रात्रि 9:30 पर श्रोता सुन सकेंगे कार्यक्रम साहित्य भारती। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम श्रोता सुनेंगे रात्रि 10 बजे। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित होगा।

रात्रि 8:30 पर श्रोता सुनेंगे लोक संगीत। जिले की चिट्ठी प्रसारित की जाएगी 6:40 पर। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित होगा। फिल्म संगीत हमारे श्रोता सुन सकेंगे 6:05 पर और रात्रि 9

आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज पर। आप हमें एफएम चैनल पर 101.6 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। दिन के 12:10 हुए हैं। श्रोता सुनेंगे सुगम संगीत।

अभी आपने अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में गीत सुना। गीत के बोल संतोष आनंद ने लिखे थे। लीजिए सुनिए पंकज उदास की आवाज़ में ये गीत।

आईना देख के बोले ये संवरने वाले अब तो बेमौत मरेंगे मेरे मरने वाले।

0: आपने दोस्ती फिल्म का गीत सुना, स्वर फिल्म रफी का। गीत के बोल मजरू सुल्तानपुरी ने लिखे थे, संगीत लक्ष्मीकांत पेरुमल का था।
1: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
2: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
1: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
2: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
1: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
2: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
1: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
2: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
1: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
2: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
3: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है बॉस। रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉन्ग इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो, क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
0: फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं। नीचे सुनिए एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म का गीत, स्वर मोहम्मद रफी का है, गीत के बोल हसरत जयपुरी के हैं, संगीत शंकर जयकिशन का।

करता सपना किसने देखा, इन राहों से आज गुजर लो, अपने दिल का दामन भर लो, मर जाओगे प्यार कर लो।

0: रानी रूपमती फिल्म में मुकेश के गाए और पंडित भरत व्यास के लिखे इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का हमारा आज का यह कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। ये समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि भारत में मध्यस्थता की परंपरा सदियों पुरानी है और यही हमारी संस्कृति तथा इतिहास का अभिन्न हिस्सा रही है। ये बात उन्होंने आज जयपुर में कॉमनवेल्थ पीस मीडिएशन एंड रूल ऑफ लॉ विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे दिन मुख्य व्याख्यान में कही। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कौटिल्य के अर्थशास्त्र का उल्लेख करते हुए कहा कि उसमें शासन के चार सिद्धांत साम, दाम, दंड और भेद बताए गए हैं, जिनमें साम यानी संवाद और समझाइश को पहली प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि यही सिद्धांत आज की मध्यस्थता व्यवहार का आधार है और विधि के शासन को प्रभावी बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा है कि विश्वविद्यालयों का दायित्व केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना ही नहीं बल्कि विद्यार्थियों को बौद्धिक रूप से सशक्त बनाना है। ये बात उन्होंने आज बीकानेर में स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के 40वें स्थापना दिवस समारोह और डॉ के एन नाग स्मृति व्याख्यान माला को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने विद्यार्थियों से यूपीएससी और आरपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने का आह्वान किया। इस अवसर पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि विश्वविद्यालय में इंडिया एआई मिशन के तहत 20 करोड़ रुपए की लागत से कृषि आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। समारोह में राज्यपाल ने श्री मेघवाल को विश्वविद्यालय की सर्वोच्च उपाधि डॉक्टर ऑफ साइंस प्रदान की। शिशुओं के बेहतर स्वास्थ्य, पोषण और समुचित विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज विश्व स्तनपान सप्ताह की शुरुआत हुई। इस वर्ष सप्ताह की थीम जीवन की सतत और स्वस्थ शुरुआत के लिए स्तनपान जो प्रभावी भी है और उसे सशक्त बनाए रखी गई है। विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए लोगों को नवजात शिशु के स्वस्थ विकास के लिए स्तनपान के महत्व के बारे में बताया जा रहा है। नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वैभव उपाध्याय ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बताया कि पहले 6 महीने तक माँ का दूध बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उपयोगी होता है। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि ज्ञान भारतम मिशन के तहत पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण में राजस्थान ने देश में पहला स्थान हासिल किया है। उन्होंने कहा कि भारत की प्राचीन ज्ञान संपदा के संरक्षण के राष्ट्रीय अभियान में राजस्थान का योगदान सबसे अधिक है। उपमुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि का श्रेय जनभागीदारी, संस्थागत सहयोग और समर्पित प्रयासों को दिया। उन्होंने संस्कृति मंत्रालय और ज्ञान भारतम मिशन की टीम के प्रति आभार व्यक्त किया। साथ ही पांडुलिपि संरक्षकों, मंदिरों, मठों, पुस्तकालयों, शोध संस्थानों और स्वयं सेवकों के सहयोग की सराहना की। तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें आज कम कर दी हैं। कटौती के बाद दिल्ली में वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमत 2738 रुपए हो गई है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अनुसार वाणिज्यिक सिलेंडर की नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। इस फैसले से रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल और खाने पीने के कारोबार से जुड़े लोगों को राहत मिलेगी। प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से कहीं कहीं तेज तो कहीं कहीं हल्की बरसात का सिलसिला बना हुआ है। राजधानी जयपुर में आज कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बरसात हुई। पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। वहीं राज्य के पश्चिमी हिस्सों में गरज और झोंकेदार हवाओं के साथ बरसात हुई। सबसे अधिक 60 मिलीमीटर बरसात डूंगरपुर के वेजा में दर्ज हुई। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल मॉनसून दक्षिणी राजस्थान के भागों से होकर गुजर रहा है। इसके असर से आज और कल उदयपुर और जोधपुर संभाग के कुछ हिस्सों में तेज तो कहीं कहीं बहुत तेज बारिश होने की

0: संभावना है। वहीं जयपुर, अजमेर और बीकानेर संभाग में भी बरसात के आसार हैं। आज सिरोही और जालौर में बारिश का येलो अलर्ट है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 15 अगस्त कर दी गई है। पीएमआरबीपी के लिए 1 अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। ये समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित किए जा रहे थे। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। दिन के 1:05 में श्रोता सुनेंगे मिला जगत। प्रस्तुत करता है डॉक्टर शर्मिला और संतोष चारण।

0: की तरंगों पर हर दिन अपनेपन की आहट सुनने वाली और अपने ही कार्यक्रम महिला जगत का बेसब्री से इंतजार करने वाली हमारी सभी प्यारी श्रोता बहनों को मैं संतोष चारण का
1: और मैं आपकी सखी डॉक्टर शर्मिला का स्वीकार कीजिए स्नेह व नमस्कार। सखियों, आपका अपना कार्यक्रम महिला जगत एक बार फिर लेकर आए हैं कुछ मीठी बातें, कुछ नई जानकारियाँ, कुछ सुरीले नगमे और ढेर सारी अपनत्व भरी मुलाकातें जो हर रोज रेडियो की आवाज में अपनेपन की महक तलाशती हैं, जो घर के कामों के बीच भी हमारा इंतजार करती हैं, उन बहनों का हम फिर से अभिनंदन करते हैं।
0: और आपका रेडियो सुनना, हमें सुनना, कार्यक्रम में चर्चाओं के साथ साथ सुर तार की दुनिया में खो जाना, ये हम बखूबी जानते हैं। और अब जो 4 महीने तो प्रकृति भी देखिए शर्मिला कि हमारा साथ देगी,
1: बिल्कुल देगी,
0: क्योंकि हम जानते हैं कि चौमासे का मौसम, विशेष कि ये जो सावन का मौसम है, ये सबसे सुहाना होता है,
1: बहुत ही प्यारा
0: है। और बहनों, ये सिर्फ एक महीना ही नहीं बल्कि भावनाओं का वह मौसम है जिसका इंतजार धरती भी करती है और हम सब भी।
1: हाँ, और जब काले बादल, पता है संतोष, आसमान पर डेरा डालते हैं तो मिट्टी की सोंधी खुशबू हवाओं में ऐसे लगता है जैसे घुल गई है ना। और पेड़ों की डालियों पर झूले तो ऐसे सस्ते हैं, मैं तो झूले शब्द ही मुझे इतना अच्छा लगता है, देख के मतलब झूलने का ही मन करता है ना, तो लगता है ऐसा जैसे प्रकृति ने हरे रंग की चुनरिया ओढ़ ली हो। ये सुहावना मौसम किसे अच्छा नहीं लगेगा। सावन की बारिश केवल धरती ही नहीं भिगोती बल्कि रिश्तों की धूल को भी धो देती है।
0: बिल्कुल सखियों, और सावन की रिमझिम फुहारें किसी के लिए खुशियों का पैगाम लेकर आती है तो किसी के मन में अपनों की याद दस्तक दे जाती है। कहीं मायके जाने की तैयारी होती है तो कहीं किसी की आंखें किसी अपने की लौट आने की राह देखती है। सावन का नाम आते ही एक उमंग मन में दौड़ जाती है, तब हर कोई का साथ हमें अच्छा लगने लगता है। इस मौसम में तो हर चीज प्यारी लगने लगती है और हर बात सच्ची लगने लगती है, क्योंकि ये मौसम का ही जादू है।

5, 4, 3, 2, 1, let's start the

0: वहाँ के पहले और तीसरे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिएगा कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के भोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: एक जमाने से कहा

0: फ्री स्टाइल गया है जो कहानियां सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री
2: शर्मिला जैसे हमने अभी सावन की बात की हाँ। मौसम की बात की लेकिन फिर भी देखो ना कि आजकल जो मौसम है वो कितना अजीब अजीब सा लग रहा है जैसे कि हम जानते हैं कि सावन का महीना तो चल रहा है कहीं बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तो कहीं कहीं तो बारिश की एक बूंद भी नहीं पड़ रही
3: है सूखा पड़ा हुआ है
2: बिल्कुल और लोग तरस रहे हैं ये इस तरह का मौसम वास्तव में सोचने को मजबूर कर देता है और वैसे भी इस बार तो अधिक मास भी था तो ये बरसात का जो अनियमितीकरण है ये जो चक्र है ये क्यों चल रहा है
3: बिल्कुल संतोष वैसे तो पता है क्या बारिश का कम या ज्यादा होने के पीछे कई प्राकृतिक कारण होते हैं लेकिन आजकल जिस तरह से मौसम का जो ये मिजाज हमें बदलता हुआ दिख रहा है ना उसके पीछे मुझे जो कारण लग रहा है ना सबसे बड़ा वो पता है क्या लग रहा है जंगलों की कटाई कितना मतलब हम ना पेड़ों को चाहे वो विकास के नाम पे कह लो चाहे फैक्ट्रियां की हम लोगों को रोजगार दे कुछ भी कह लो लेकिन ये सब कुछ बहुत ज्यादा हो रहा है क्योंकि जब जंगल अगर कम हो जाएंगे ना तो प्रकृति का पूरी तरह से संतुलन ही खराब हो जाएगा
2: बिल्कुल और इसके साथ ही देखो कि जो बढ़ता वायु प्रदूषण है और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन है वो भी जलवायु परिवर्तन में बहुत बड़े योगदान देता है
3: हाँ।
2: और देखिए कि हमारे शहरों का तेजी से फैलना वाहनों और उद्योगों से निकलने वाला जो धुआं है ये सब मिलकर हमारी धरती के तापमान को प्रभावित करते हैं यानी हमारी विकास की दौड़ भी कहीं न कहीं प्रकृति पर भारी पड़ रही है
3: बिल्कुल
2: तो इसके लिए हमें अभी से सतर्क हो जाना चाहिए क्यों शर्मिला
3: बिल्कुल सतर्क हो जाने का मतलब है पेड़ बचाना है इसी बात ही ये सब कुछ जुड़ा हुआ है पेड़ों से और पता है संतोष अगर हम इसी तरह की लापरवाही करते रहे या हम बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं अगर हम पालते रहे ना तो इतना बड़ा संकट हमारी इस धरती को झेलना पड़ेगा और झेल भी रहे पर्यावरण के माध्यम से हम झेल भी रहे और ऐसे ही हालात रहे तो आने वाली पीढ़ियों का शुद्ध सांस लेना भी दुर्लभ हो जाएगा इसीलिए सखियों हमें जागरूक होना है पर्यावरण को प्रदूषित करने से बचाना है पानी की बचत प्लास्टिक का उचित उपयोग ये सब हमें ध्यान रखना है और बहनों अगर हम कचरा भी उसको है अलग से कचरा पात्र में डालना है क्योंकि ये जो प्लास्टिक वगैरह होता है ये भी कहीं ना कहीं पर्यावरण को प्रभावित करता है तो सबसे बड़ी बात है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने
2: बिल्कुल और इसके साथ ही बहनों हमें हमारे बच्चों को भी पेड़ पौधों का महत्व बताना चाहिए उनकी देखभाल करना सिखाना चाहिए तभी तो हमारे बच्चे बड़े होकर प्रकृति के बेहतर प्रहरी बन पाएंगे और याद रखिए ये प्रकृति ये धरती हमारे पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली है बल्कि इसके लिए हाँ हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं इसकी ये अमानत और आवश्यकता जरूर बन सकती है अतः हमें इसे सुरक्षित रखना चाहिए इसका संरक्षण करना चाहिए
3: बिल्कुल और पता है संतोष तुम्हारी इस बात से बच्चों को सिखाने वाली बात से मुझे एक बात याद आ गई कि जैसे आजकल हम अपने बर्थडे मनाते हैं बहुत ज्यादा खर्चा होटल में चले गए आज बाहर खाने चले गए एक तो उससे नुकसान भी होता है मुझे ऐसा लगता है कि क्यों ना हर बर्थडे पे कि आज वो इतने साल का हो गया था इतने पेड़ लगा ले है ना और सिर्फ लगाए ही नहीं क्योंकि पेड़ लगाना तो बहुत आसान है लेकिन उसको आगे बढ़ाना ये बहुत मुश्किल है तो देखभाल करना है ना तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है ना पेड़ कटेंगे और ना ही हम इन्हें मरने देंगे ये हमें रखना है अपने पानी व्यर्थ नहीं बहाएंगे और आसपास प्रकृति को भी साफ सुथरा और हरा भरा रखने में अपना हम योगदान देंगे अगर जंगल रहेंगे तो बादल आएंगे तो पानी बरसेगा और पानी रहेगा तो जीवन रहेगा याद रखिए जीवन रहेगा तो ही हमारा भविष्य रहेगा
2: और इसी खूबसूरत संदेश को अपने जीवन में और जहन में हमें उतारना चाहिए पेड़ बचाना है प्रकृति को बचाना है और सखियों सावन तो वैसे भी प्रकृति के श्रृंगार का महीना है काले काले बादल रिमझिम रिमझिम फुहारे और मिट्टी की सौंधी खुशबू और चारों तरफ हरियाली और सावन के आते ही धरती झूम उठती है बस यही हरियाली बनी रहे खुशहाली बनी रहे तो आइए सुनते हैं अब एक खूबसूरत गीत

0: हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।

0: बहनों, अच्छा स्वास्थ्य ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। स्वस्थ शरीर है तो सब कुछ अच्छा लगता है। इसके लिए जीवन में नियमित योग करने की क्या भूमिका है, योग क्या योगदान देता है हमारे स्वस्थ शरीर के लिए, तो इस कड़ी में अब हम सुनेंगे एक वार्ता, योग स्वास्थ्य की चाबी, संतुलित जीवन की राह, और वार्ताकार हैं सविता अग्रवाल। तो आइए सुनते हैं अब ये वार्ता।
1: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सभी किसी न किसी प्रकार के तनाव, चिंता और शारीरिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। तनाव और चिंता का असर पूरे शरीर पर पड़ता है। कहा जाता है कि चिंता चिता समान है। वैसे तो चिता में व्यक्ति मरणोपरांत एक बार ही नष्ट होता है, लेकिन चिंता जीवन भर उसे दीमक की तरह खाती रहती है। दिन प्रतिदिन हर पल हर क्षण चिंताग्रस्त रहना अनेक प्रकार की बीमारियों का आमंत्रण है। तनाव और अवसाद आज इस प्रकार अपनी जड़ें जमा चुके हैं कि बच्चे से लेकर बुजुर्ग सभी आज तनावग्रस्त हैं। बच्चों को अपनी कक्षा में फर्स्ट आने की चिंता है तो अभिभावकों को उन्हें फर्स्ट स्थान पर लाने की, किसी को प्रतियोगी परीक्षाओं में पास होने की चिंता है तो किसी को प्लेसमेंट की, किसी को ये चिंता है कि उसका विवाह नहीं हो रहा तो किसी को अपने उन विवाह संबंधों में आई दूरियों के कारण उन संबंधों को बनाए रखने की चिंता है, कहीं प्रमोशन तो कहीं पारिवारिक रिलेशन की, और कहीं कहीं पर अस्तित्व और पद प्रतिष्ठा को बरकरार रखने की चिंता है। चिंताओं का कोई अंत नहीं है, लेकिन ये कभी खाली हाथ नहीं आती, अपने साथ असंख्य शारीरिक और मानसिक व्याधियां मुफ्त में ले आती हैं। उसके बाद जीवनचर्या में आरंभ होता है दवाइयों, चिकित्सकों, जांचों और परहेज का दौर। लेकिन दवाइयां केवल लक्षणों को दबाती हैं, परंतु रोगों की जड़ तक पहुंचने और जीवन को संपूर्ण रूप से संतुलित करने का यदि कोई उपाय अथवा मार्ग है तो वो एकमात्र मार्ग है योग। योग क्या है? अगर सरल शब्दों में बात करें तो योग एक ऐसा अभ्यास है जो हमारे शरीर, मन और आत्मा को आपस में जोड़ता है। ये हमें स्वस्थ रहने, शांत रहने और संतुलित जीवन जीने में मदद करता है। योग का साधारण अभिप्राय है जुड़ना या एक होना, और ये जुड़ाव होता है हमारे शरीर और श्वास का, विचारों और भावनाओं का। कुछ लोग योग का अर्थ मात्र व्यायाम या साधारण आसन के रूप में समझ लेते हैं, जबकि योग केवल व्यायाम या आसन नहीं अपितु योग तो जीवन जीने की एक कला है जिसमें अनुशासन, ध्यान, संतुलन और आत्मचिंतन शामिल है। योगः कर्मसु कौशलम्। श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के 50वें श्लोक में योग का मतलब बताया गया है कर्म में कौशल, अर्थात जब हम अपने हर कार्य को पूर्ण एकाग्रता, सजगता और समर्पण भाव से करते हैं तो वही योग

है। योग जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और कुशलता लाता है। इस प्रकार योग कोई नया विषय नहीं है, ये भारतवर्ष की प्राचीनतम देन है जिसकी जड़ें हजारों वर्षों पुरानी हैं। और यही वजह है कि भारत की इस अनुपम देन को आज संपूर्ण विश्व ने स्वीकार किया है, इसका लोहा माना है और उसी के रूप में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हुए योग को जीवन में अपनाने और नियमित रूप से स्थान देने के क्रम में इस दिवस को खास दिवस के रूप में स्वीकार किया गया है। योग का तो अर्थ ही है जोड़। ये जोड़ है शरीर मन और आत्मा का, ये संतुलन है व्यक्ति और प्रकृति के बीच। वर्तमान युग विज्ञान तकनीक और विकास का युग है, लेकिन इसके साथ ही ये तनाव प्रतिस्पर्धा रोगों और मानसिक असंतुलन का युग भी बन गया है। दिन प्रतिदिन भागदौड़ असंतुलित दिनचर्या और अनियमित खान पान के कारण व्यक्ति शारीरिक मानसिक और भावनात्मक रूप से असंतुलित होता जा रहा है। ऐसे समय में योग न केवल रोगों से बचाने वाला एक प्रभावशाली उपाय है, बल्कि ये एक समग्र जीवन शैली है जो व्यक्ति को संतुलित सशक्त और सुखी बनाती है। आज के जीवन में वर्तमान समय में हम बहुत सारी समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं। कुछ इस प्रकार हैं: तनाव और चिंता। तनाव किसको नहीं है, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी तनावग्रस्त हैं। ऑफिस या कार्यक्षेत्र के दिन प्रतिदिन बढ़ते टारगेट्स, प्रेशर, तनाव पारिवारिक मन मुटाव और कलह के कारण भी हो जाता है। तो वहीं यदि हम बात करें जीवन शैली की, तो आज अस्त व्यस्त जीवन शैली हमारी प्रायः हो चुकी है। देर रात तक जागना, देर सुबह सूरज आसमान तक आ जाने पर उठना, तला भुना तेज मिर्च मसाले वाला आहार, फास्ट फूड का बढ़ता प्रयोग, अल्कोहल का प्रयोग और इन सब कारणों से डायबिटीज, मोटापा, उच्च रक्तचाप, सर्वाइकल, पीठ दर्द, ये सारी बीमारियां आम हो चली हैं, जिन्हें यदि हम कहें तो बेसिकली ये जीवन शैली आधारित बीमारियां हैं। वहीं मानसिक स्थिति की बात करें तो आज मानसिक असंतुलन प्रायः देखने को आता है। इन विपरीत परिस्थितियों के कारण चिड़चिड़ापन, अवसाद और कई बार तो ये अवसाद की स्थिति इतनी अधिक बढ़ जाती है कि व्यक्ति अपनी जीवन लीला तक समाप्त करने की राह में कदम उठा लेता है। प्रकृति से दूरी एक बहुत बड़ी मौन त्रासदी बन गई है। अशुद्ध वायु के स्थान पर एयर प्योरिफायर पर बढ़ती निर्भरता, अधिकाधिक एसी का प्रयोग, सूर्य की रोशनी के स्थान पर हर समय मोबाइल लैपटॉप के स्क्रीन का सानिध्य तनाव, प्रदूषण, बीमारियों और मानसिक अशांति को जन्म दे रहा है। आज की स्थिति ये है कि समाज और परिवार से दूर होते होते शायद हम स्वयं अपने आप से भी दूर होते जा रहे हैं। इन सभी समस्याओं का समाधान कहीं न कहीं योग में ही छिपा हुआ है। क्यों है आखिर योग की आवश्यकता, क्यों जरूरी है योग? बहुत जरूरी है, क्योंकि योग कोई साधारण व्यायाम नहीं है, ये तो जीवन जीने की कला है, जीवन जीने की एक शैली है। योग हमारे शरीर को सुदृढ़ बनाता है, हमारी श्वासों को नियंत्रित करते हुए मन को एकाग्र करता है। हम दिन प्रतिदिन नित नई समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनका समाधान योग से रोग मुक्ति एक बेहतरीन मार्ग है। आजकल अधिकतर लोग मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, थायराइड, पीठ दर्द, सर्वाइकल, माइग्रेन, अनिद्रा, कुछ इस प्रकार की जीवन शैली जनित बीमारियों से पीड़ित हैं। इनका प्रमुख कारण अनियमित दिनचर्या, खान पान और तनाव है। लेकिन यदि योग का नियमित अभ्यास हम करें तो शरीर में न केवल इन बीमारियों से मुक्ति पाई जा सकती है, वरन शरीर में लचीलापन आता है, आंतरिक अंग सक्रिय होते हैं और रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, पर्वतासन, मंडूकासन, वज्रासन, भुजंगासन, धनुरासन, तिर्यक भुजंगासन, त्रिकोणासन, वीरभद्रासन, सूर्य नमस्कार, कुछ इस प्रकार के योगासन और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में नियमित रूप से स्थान देते हुए शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह किया जा सकता है। वहीं शारीरिक समस्याओं से भी बड़ी जो दूसरी समस्या है, मानसिक समस्या, उनका समाधान करने में योग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। योग से मानसिक शांति को प्राप्त किया जा सकता है। वर्तमान समय में तनाव, चिंता, अवसाद और चिड़चिड़ापन सामान्य हो चला है। छात्रों में परीक्षा का दबाव, युवाओं में करियर की चिंता,

नौकरी पेशा लोगों में कार्यस्थल का तनाव, परिवार में बढ़ती कलह और टूटते परिवार मानसिक असंतुलन और अशांति को जन्म दे रहे हैं। इस प्रकार की स्थितियों में योग निद्रा, ध्यान, ओम की चैंटिंग, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, भ्रामरी प्राणायाम, चक्र मेडिटेशन के नियमित अभ्यास से राहत मिल सकती है। साथ ही यदि प्रातःकालीन भ्रमण के साथ हल्के फुल्के आसन भी किए जाएं, तो ये अभ्यास न केवल मन को शांत करते हैं अपितु आत्मबल, स्मरण शक्ति और एकाग्रता को भी बढ़ाते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और हम जब परिवार में रहते हैं और किसी प्रकार के परिवार में या सामाजिक समस्याओं से रूबरू होते हैं तो निश्चित रूप से बहुत एकाकीपन टूटन महसूस करते हैं और इस प्रकार की समस्याओं के समाधान में योग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कई बार पारिवारिक रिश्तों में तनाव, असहमति और दूरी आ जाती है। अहंकार, अधीरता और असहनशीलता इनका मूल कारण होता है, लेकिन योग व्यक्ति को सहनशील, शांतचित और विनम्र बनाता है। जब मन शांत होता है तो संबंधों में मधुरता आ जाती है। महर्षि पतंजलि के जो यम नियम है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पालन व्यक्ति को नैतिकता और सद्भावना की ओर प्रेरित करते हैं। अगर आर्थिक और करियर से जुड़ी समस्याओं की बात करें तो निश्चित रूप से योग यहाँ भी सहायता करता है। जीवन में असफलता, नौकरी का तनाव, आर्थिक तंगी व्यक्ति को आत्मविश्वासहीन बना देती है, लेकिन नियमित रूप से योग और प्राणायाम का अभ्यास विचारों में स्पष्टता लाता है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, शारीरिक और मानसिक संबल बढ़ने से चुनौतियों का सामना करने की शक्ति प्राप्त होती है। और वहीं आज के आर्थिक युग की बात करें तो कुशल योग प्रशिक्षक बनने के बाद आप इसे रोजगार के माध्यम से एक आर्थिक स्रोत भी बना सकते हैं और लोगों को स्वस्थ जीवन शैली प्रदान कर सहयोग देकर मानसिक और आध्यात्मिक संतुष्टि भी प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान समय में व्यक्ति बाहरी चकाचौंध में उलझकर अपने भीतर की शांति और आत्मा से कट चुका है। योग हमें स्वयं की ओर लौटाने का मार्ग दिखाता है। आत्मनिरीक्षण, आत्मसंवाद और अंततः आत्म साक्षात्कार की ओर हम बढ़ चलते हैं। ध्यान और समाधि रूपी योग के अंग आत्मिक उन्नति के साधन हैं। बात करते हैं योग की उपयोगिता की। जीवन की विभिन्न और विशेष परिस्थितियों में भी योग का महत्व अद्वितीय है। योग तनावपूर्ण जीवन स्थिति में मन को शांत कर चिंता और अवसाद को दूर करता है। बीमारी और शारीरिक कमजोरी की स्थिति में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और पुनः स्वस्थ होने की गति को तेज करता है। परीक्षा एवं प्रतियोगिता की तैयारी की स्थिति में योग और ध्यान का नियमित अभ्यास एकाग्रता, स्मरण शक्ति और आत्मविश्वास में वृद्धि लाता है। विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से सूर्य नमस्कार, पर्वतासन, भुजंगासन का प्रयोग उनकी मानसिक योग्यता के लिए, उनकी शारीरिक वृद्धि के लिए बेहद लाभदायक है। जीवन की एक महत्वपूर्ण अवस्था होती है गर्भावस्था। इस स्थिति में विशेष योगासन और प्राणायाम गर्भवती स्त्री को मानसिक शांति और सुदृढ़ता प्रदान करते हैं। लेकिन ध्यान रखने की बात विशेष रूप से यह है कि यदि आप योग में पारंगत नहीं हैं, तो कुशल योगाचार्य के सानिध्य में ही आप योग करना आरंभ करें। जीवन की एक बहुत ही सम्मानजनक अवस्था वृद्धावस्था, जहां व्यक्ति पूरे जीवन लीला को जीते हुए जब अंतिम पड़ाव में आता है, कई बार वो मन से टूटा हुआ होता है तो कई बार वो शारीरिक अक्षमता के कारण कुछ निष्क्रियता महसूस करता है। ऐसी स्थिति में योग शरीर को लचीला, सक्रिय और मन को प्रसन्न बनाए रखने का एक सशक्त माध्यम है। वहीं अत्यधिक व्यस्त जीवन शैली में कुछ मिनट का योग पूरे दिन की थकान और मानसिक तनाव को दूर कर ऊर्जावान बनाता है। रिश्तों में तनाव और पारिवारिक कलह की स्थिति में योग हमें सहनशीलता, धैर्य और प्रेम भाव का अभ्यास करवाता है। कोरोना काल में जब संपूर्ण विश्व भय और असुरक्षा से घिरा था, तब योग ही वह माध्यम बना जिसने लोगों का मानसिक संतुलन बनाए रखा और इस विषम परिस्थिति को भी हम झेल सके। इस प्रकार यदि हम सारांश रूप में बात करें तो कह सकते हैं कि आज जीवन के हर क्षेत्र में चुनौतियां हैं, शरीर से लेकर आत्मा

0: तक, लेकिन इन सभी समस्याओं का एकमात्र स्थायी और प्रभावी सहज समाधान है योग। योग अपने आप में बहुत विस्तृत है, जिसमें कुछ व्यायाम हम ले सकते हैं, कुछ आसन है, वही प्राणायाम है, ध्यान है, योग निद्रा है, चक्र मेडिटेशन है। योग अपने आप में विशालतम दुनिया है। योग हमें न केवल रोगों से बल्कि राग, द्वेष, चिंता, भ्रम और असंतुलन से भी मुक्ति देता है। योग कोई धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने की वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पद्धति है। इसलिए हमें चाहिए कि केवल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के एक दिन ही नहीं अपितु जीवन के हर दिन हर पल योग को अपनी मानसिकता में शामिल करें, अपनी दिनचर्या में इसे स्थायी रूप से स्थान दें। योग केवल शारीरिक व्यायाम न माने बल्कि समग्र जीवन शैली के रूप में अपनाएं। योग करें निरोग रहें, योग करें संयमित बने, योग करें समाधान पाएं।
1: अभी आपने सुनी वार्ता योग स्वास्थ्य की चाबी संतुलित जीवन की राह। वार्ताकार थी सविता अग्रवाल।

0: केवल रोगों से बल्कि राग द्वेष चिंता भ्रम और असंतुलन से भी मुक्ति देता है। योग कोई धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने की वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पद्धति है। इसलिए हमें चाहिए कि केवल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के एक दिन ही नहीं अपितु जीवन के हर दिन हर पल योग को अपनी मानसिकता में शामिल करें, अपनी दिनचर्या में इसे स्थायी रूप से स्थान दें। योग केवल शारीरिक व्यायाम न माने बल्कि समग्र जीवन शैली के रूप में अपनाएं। योग करें निरोग रहें, योग करें संयमित बने, योग करें समाधान पाएं।
1: अभी आपने सुनी वार्ता योग स्वास्थ्य की चाबी संतुलित जीवन की राह। वार्ताकार थी सविता अग्रवाल। स्वास्थ्य का ध्यान हम कैसे रखें, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में शरीर और मन को कैसे सही रखना है, इसकी बहुत ही विस्तृत जानकारी हमें सविता जी ने दी, जिसका लाभ आप अपने जीवन में जरूर लें। इसी तरह हम अपनी बहनों से साझा करते रहेंगे और भी बहुत सारी जानकारी, लेकिन पहले सुनवा देती हूँ उनको ये प्यारा सा गीत।

0: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: अरे शर्मिला, अब तुम इतने खामोश होकर किसके बारे में इतनी वहन मनन कर रही हो?
2: अरे कुछ नहीं, बस सोच रही थी आज के दिन एक महान आत्मा के बारे में, एक महान आदमी के बारे में जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी।
1: अच्छा, किसकी बात कर रही हो?
2: आज 1 अगस्त को राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन का जन्मदिन है।
1: हाँ शर्मिला, याद दिला दिया। वो टंडन जी जिनकी वजह से आज हम सर उठाकर हिंदी बोल पाते हैं।
2: और ये इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकील भी थे और आजादी के आंदोलन भी में भी इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और ये जेल भी गए थे।
1: अच्छा, और जेल से निकले तो सीधे हिंदी के पीछे लग गए। वे कहते थे कि गुलाम देश की भाषा भी गुलाम ही हो जाती है।
2: हाँ, और 1910 में इन्होंने नागरी परिचारिणी सभा भी संभाली थी और 1918 में हिंदी विद्यापीठ भी खोल दी थी। बस एक ही रट थी इनकी, राजकाज हिंदी में होगा।
1: और वो ये करवा कर ही माने। 1961 में उन्हें भारत रत्न मिला, पर उन्होंने कहा यह सम्मान मुझे नहीं हिंदी को मिला है।
2: बहुत बड़ी बात थी ये, है ना? और आज अगर हम फॉर्म भी भरते हैं तो वो भी हिंदी में, बच्चे पढ़ते हैं हिंदी में भी पढ़ते हैं। पता नहीं संधि का हमारा क्या ही होता, क्योंकि ये सब इनकी जिद की वजह से ही जो है वो हो पाया है। और देखियो, आज एक दिवस और भी है जो 7 दिन तक

0: उतरेगा और हम बात करेंगे उस अमृत की जो न बोतल में मिलता है न डिब्बे में, जो सीधे माँ के दिल से बच्चे के दिल तक उतरता है।
1: बिल्कुल, जन्म के पहले एक घंटे यानी बस 60 मिनट, अगर इन 60 मिनट में बच्चे को माँ का पहला पीला दूध कोलेस्ट्रॉल मिल जाए तो उसे जिंदगी भर की ताकत मिल जाती है।
0: और 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, पानी की एक बूंद भी नहीं, और फिर 2 साल तक ऊपर के खाने के साथ भी माँ का दूध मिल जाए तो और भी अच्छा है। ये कोई रिवाज नहीं, विज्ञान है।
1: और माँ का दूध बच्चे को बीमारियों से लड़ना सिखाता है, दिमाग तेज करता है और माँ को भी जोड़ता है अपने बच्चे से, और एक ऐसा रिश्ता जो दुनिया की कोई भी ताकत तोड़ नहीं सकती। तो बहनों, अब इसी अच्छी चर्चा के बाद में हम सुनते हैं एक अच्छा सा गीत।

0: बहनों, भारत की इस पुण्य भूमि ने समय समय पर ऐसे महान सपूतों को जन्म दिया है जिन्होंने अपने ज्ञान, साहस व त्याग से देश का भविष्य गढ़ा है। कोई कलम से क्रांति लाया, कोई तलवार से, तो किन्हीं ने किसी महापुरुष ने अपने विचारों से सोई हुई जनता को जगा दिया। ऐसे ही एक अमर राष्ट्र महानायक थे बाल गंगाधर तिलक, और आज उनकी पुण्यतिथि है। और आज पूरे देश में बड़ी श्रद्धा व सम्मान के साथ उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है।
1: बिल्कुल सखियो, और जब भी स्वतंत्रता आंदोलन की बात होती है ना, तो लोकमान्य तिलक का नाम बड़े आदर से हम लोग लेते हैं। अब एक बात और मन में आती है कि उन्हें लोकमान्य क्यों कहा जाता है, लोकमान्य क्या होता है? तो बहनों, बाल गंगाधर तिलक का जन्म 22 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था। वे विद्वान थे, बहुत बड़े शिक्षक थे, समाज सुधारक थे, पत्रकार और महान स्वतंत्रता सेनानी भी थे। जनता उनके विचारों से इतनी प्रभावित थी कि उन्हें लोकमान्य अर्थात जिसे जनता ने अपना नेता माना हो, ये उपाधि उन्हें मिली थी।
0: बिल्कुल सही कहा शर्मिला, और उनका सबसे प्रसिद्ध नारा तो आज भी हर भारतीय के दिल में गूंजता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा।
1: बिल्कुल,
0: लोकमान्य तिलक ने केसरी व मराठा जैसे

0: समाचार पत्रों के माध्यम से अंग्रेजी शासन की नीतियों का खुलकर विरोध किया और उन्होंने लोगों में राष्ट्रीय चेतना जगाई और ये विश्वास दिलाया कि भारत को स्वतंत्र होना चाहिए।
1: और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये भी रही कि उन्होंने गणेश उत्सव और शिवजी जो कि जो जयंती हम मनाते हैं उसको भी सार्वजनिक रूप से मनाने की शुरुआत भी इन्होंने की थी। इसके जो लोग थे वो इसके मतलब बहुत ज्यादा संख्या में एकत्रित हो सके, भक्ति भावना उनमें और देशभक्ति की भावना उनके अंदर जाग सके, है ना। लोकमान्य तिलक केवल स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं थे बल्कि एक महान लेखक भी थे। उन्होंने जेल में रहते हुए गीता रहस्य जैसी महान पुस्तक की रचना की जो आज भी प्रेरणा स्रोत हमारी मानी जाती है।
0: और फिर 1 अगस्त 1920 को देश के इन महान सपूत ने संसार से विदा ले ली, लेकिन उनके विचार आज भी हम भारतीयों के मन में जीवित है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि यदि इरादे मजबूत हो तो असंभव हर असंभव बात भी संभव हो सकती है। तो आइए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि पर हम उनके आदर्शों, देश प्रेम, शिक्षा, साहस व कर्तव्य निष्ठता को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लें।
1: और बहनों, साथ ही इन्हीं प्रेरक विचारों के साथ हम लोकमान्य तिलक को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और अब संतोष, हम अपनी बहनों को ले चलते हैं मनोरंजन की दुनिया में और सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: तो बहनों, अब कार्यक्रम का वक्त पूरा होता है। अब लीजिए विदा अपने सखी संतोष चारण
1: और डॉक्टर शर्मिला को। फिर से मिलेंगे। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला जगत, प्रस्तुतकर्ता थी डॉक्टर शर्मिला और संतोष चारण। यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। अब आप सुनेंगे मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार। ये समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे।

0: Eastema with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates Greenfield Aluri Sitaramaraju International Airport at Bhogapuram in Vijayanagaram district of Andhra Pradesh. Prime Minister launches projects worth 18,000 crore rupees in infrastructure and energy sectors. In Jammu and Kashmir, second labourer injured in yesterday's terrorist attack in Kulgam succumbs to injuries. Price of 19 kg commercial LPG cylinder reduced by about 200 rupees. Flood situation remains critical in Orissa, with Mahanadi River continuing to swell, threatening fresh areas. And in Taipei Open Badminton, Tanvi Sharma storms into women's singles final. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today said, Andhra Pradesh is moving ahead at a rapid pace and that the centre is fully committed to realising the vision of Swarn Andhra and Viksit Bharat through large-scale infrastructure and industrial development. Addressing a public meeting after inaugurating the Aluri Sitaramaraju International Airport at Bhogapuram, the Prime Minister said, development projects worth about 18,000 crore rupees, including airport, road and energy infrastructure, reflect the state's fast-paced progress under the NDA governments at the centre and in the state.
1: आज यहाँ करीब 18,000 करोड़ रुपीस की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है।
0: Mr. Modi described the new airport as the runway for the growth of Andhra Pradesh, particularly North Andhra, and a launchpad for the aspirations of the state's youth. He announced that the airport has been named after freedom fighter Aluri Sitaramaraju, saying the name would inspire future generations with the spirit of patriotism and public service.
1: NDA सरकार में आज छोटे शहर के साधारण लोग भी फ्लाइट से आ जा रहे हैं। 12 इयर्स में सिर्फ एयरपोर्ट की संख्या ही नहीं बढ़ी है, हमारी उड़ान योजना के कारण आज गरीब परिवार के लोगों को भी जहाज में बैठने का अवसर मिल रहा है। इस योजना ने गरीब से गरीब को अपना सपना पूरा करने में मदद की। कुछ दिन पहले ही सरकार ने उड़ान योजना के दूसरे फेज की शुरुआत की। इस पर भी 29,000 करोड़ रुपीज खर्च किए जाएंगे।
0: Mr. Modi said the centre is transforming Andhra Pradesh into a major growth engine through ports, highways, railways and logistics under the PM Gati Shakti National Master Plan. He said railway projects worth nearly 1 lakh crore rupees are under implementation, while more than 70 railway stations are being modernised. The Prime Minister expressed confidence that under the leadership of Chief Minister N. Chandrababu Naidu, Andhra Pradesh would play a major role in achieving the goal of Viksit Bharat 2047.
1: मुझे पूरा विश्वास है आज यहाँ जितने भी प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है, जिनकी नींव रखी गई है, वो सारे प्रोजेक्ट स्वर्ण आंध्रा और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में बहुत बड़ा योगदान देंगे। आंध्र प्रदेश विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा ऊर्जा स्रोत बन रहा है। मैं एक बार फिर इन सभी परियोजनाओं के लिए आंध्र प्रदेश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu praised Prime Minister Modi's leadership for helping rebuild Andhra Pradesh and transform North Andhra. He said the inauguration of the Aluri Sitaramaraju International Airport at Bhogapuram was a historic milestone that would bring investment, industries, jobs and new opportunities to the region. Indian Railways has approved the multi-tracking of the 29-kilometre Danapur to Fatuha section of East Central Railway at a cost of 976 crore rupees. The Railway Ministry said the project will decongest one of the busiest stretches on the Patna Rail Corridor and create room for a large increase in both passenger and freight services. The Ministry said that in the first year of operation, the project will allow 22 additional passenger trains and 18 additional freight trains every day.

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आधारभूत ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र के लिए 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले में कल हुए आतंकी हमले में घायल दूसरे मजदूर की भी मौत। 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 200 रुपए कम हुई। ओडिशा में महानदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से बाढ़ की स्थिति गंभीर। और ताइपे ओपन बैडमिंटन में तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आंध्र प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है और केंद्र सरकार व्यापक अवसंरचना और औद्योगिक विकास के माध्यम से स्वर्ण आधार और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने भोगपुरम में आज अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हवाई अड्डे, सड़क और ऊर्जा अवसंरचना सहित लगभग 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं।
1: आज यहाँ करीब 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत में विमानन क्षेत्र के तेजी से होते विस्तार का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश में परिचालित हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर 166 हो गई है और उड़ान योजना ने आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा को किफायती बना दिया है।
1: एक समय था जब हवाई उड़ानें सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित थी। एनडीए सरकार में आज छोटे शहर के साधारण लोग भी फ्लाइट से आ जा रहे हैं। 12 इयर्स में सिर्फ एयरपोर्ट की संख्या ही नहीं बढ़ी है, हमारी उड़ान योजना के कारण आज गरीब परिवार के लोगों को भी जहाज में बैठने का अवसर मिल रहा है। इस योजना ने गरीब से गरीब को अपना सपना पूरा करने में मदद की। कुछ दिन पहले ही सरकार ने उड़ान योजना के दूसरे फेज की शुरुआत की। इस पर भी 29,000 करोड़ रुपीज खर्च किए जाएंगे।
0: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने इस हवाई अड्डे के उद्घाटन को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के विकास में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूर पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे।
2: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेका स्मारक स्वामी विवेकानंद के विचार और सिद्धांत के प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस स्मारक के साथ ओडी एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फीथिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम की ओर से यहाँ शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: तेल विपणन कंपनियों ने आज 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें लगभग 200 रुपए कम कर दी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस फैसले से रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल और खाने पीने के कारोबार से जुड़े लोगों को राहत मिलेगी। वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें कम होने के बाद दिल्ली में वाणिज्यिक सिलेंडर का मूल्य अब 2,738 रुपए हो गया है। वहीं कोलकाता में अब वाणिज्यिक सिलेंडर 2,872 रुपए 50 पैसे, मुंबई में 2,691 रुपए 50 पैसे और चेन्नई में 2,906 रुपए में मिलेगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अनुसार वाणिज्यिक सिलेंडर की नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी। वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह में पिछले महीने उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है और ये 2,11,205 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये जुलाई 2025 में 1,83,065 करोड़ रुपए के मुकाबले 15.4% की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सकल घरेलू जीएसटी राजस्व 1,44,695 करोड़ रुपए रहा। ये एक वर्ष पहले की तुलना में 10.1% अधिक है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप,

0: और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के केलम में आतंकी हमले में घायल दूसरे श्रमिक की आज सवेरे मृत्यु हो गई, इससे मृतकों की संख्या दो हो गई है। एक रिपोर्ट।
1: वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि घायल श्रमिक की मौत श्रीनगर के एक अस्पताल में चिकित्सा के दौरान हुई। कल शाम ईंट भट्टे पर काम कर रहे इन दो श्रमिकों पर अज्ञात आतंकवादियों ने गोलीबारी की थी। घटना के तुरंत बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए तलाश अभियान जारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मजदूरों की हत्या की कड़ी निंदा की और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। कुलगाम जिला प्रशासन की ओर से 6-6 लाख रुपए की तत्काल सहायता भी दी जाएगी। श्रीनगर से इश्फाक शाह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: तेलंगाना में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के लिए निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम में संशोधन किया है। इसमें बूथ स्तर के अधिकारी 10 अगस्त तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा अब 17 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा। दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 17 अगस्त से 16 सितंबर तक जारी रहेगी, जबकि उनका निपटान 15 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 19 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। ओडिशा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तिथि निर्वाचन आयोग ने बढ़ाकर इस महीने की 19 तारीख कर दी है। दावों और आपत्तियों के निपटान की समय सीमा भी 17 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। आयोग ने बताया कि ओडिशा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर इस समय सारणी में संशोधन किया गया है। दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल आज से शुरू हो गया है। पात्र महिलाएं आधिकारिक वेबसाइट dly.delhi.gov.in पर पंजीकरण कर सकती हैं। दिल्ली सरकार ने पिछले महीने दिल्ली मंत्रिमंडल की इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी, इसका ऐलान किया था। वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए 5,110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस के नशा मुक्त अभियान नशे से दूरी है जरूरी के दूसरे चरण में 5 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। लंदन स्थित वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इन सभी 5 उपलब्धियों को मान्यता दी है। इस अभियान ने कई विश्व रिकॉर्ड भी बनाए हैं। इंदौर पुलिस आयुक्त कार्यालय ने 17 लाख से अधिक लोगों को नशा विरोधी ई शपथ दिलाई और 8,534 प्रतिभागियों की मानव श्रृंखला बनाई। रेलवे ने पूर्वी मध्य रेलवे के 29 किलोमीटर लंबे दानापुर से फतोहा खंड पर 976 करोड़ रुपए की लागत से एक से अधिक लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस परियोजना से पटना रेल कॉरिडोर के सबसे व्यस्त खंडों में से एक पर भीड़ कम होगी और यात्री और माल ढुलाई सेवाओं में वृद्धि संभव होगी। मंत्रालय ने बताया कि परिचालन के पहले वर्ष में इस परियोजना से प्रतिदिन 22 अतिरिक्त यात्री ट्रेन और 18 अतिरिक्त मालगाड़ी चल सकेंगी। इससे प्रति वर्ष 52 लाख टन अतिरिक्त माल ढुलाई की क्षमता भी बढ़ेगी। आयकर विभाग ने बताया है कि वर्ष 2026-27 के लिए 31 जुलाई 2026 तक 59 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए। सोशल मीडिया पोस्ट में करदाताओं को धन्यवाद देते हुए विभाग ने कहा कि उनका विश्वास और समय पर अनुपालन ही भारत के विकास को गति देने वाली ऊर्जा प्रदान करता है। वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने आज नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। गोवा स्थित नौसेना अकादमी के 38वें एकीकृत कैडेट पाठ्यक्रम के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल एएन प्रमोद जुलाई 1990 में नौसेना में कमीशन हुए थे। 36 वर्ष से अधिक के अपने विशिष्ट करियर में कई पदों पर उन्होंने कार्य किया। दिसंबर 2023 से जुलाई 2026 के बीच नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में वे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नौसेना की योजना तैयारी और परिचालन तत्परता में सक्रिय रूप से शामिल रहे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, इससे राज्य में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने राज्य में अधिक बारिश का अनुमान व्यक्त किया है।
2: ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है क्योंकि महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे कटक, पुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रपड़ा और खोर्धा जिलों के निचले इलाकों में फिर से बाढ़ आने की खतरा पैदा हो गया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज भद्रक, बालेश्वर, जाजपुर और केन्द्र जैसे बाढ़ प्रभावित

0: अवस्था बुरी तरह बाधित है, जिससे हजारों लोग भोजन, पीने का पानी और जरूरी सामान के लिए जूझ रहे हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, केरलम और माही में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, विदर्भ और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले दो दिन बिजली गिरने की स्थिति बनी रहेगी। राजधानी दिल्ली में आज शाम कई स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: ताइपे ओपन बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा ने आज सेमीफाइनल में शानदार जीत के साथ महिला सिंगल्स के फाइनल में अपनी जगह पक्की की। 17 वर्षीय तन्वी ने चीनी ताइपे की हुआंग यू हुसुन को सीधे गेम में हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई है। फाइनल में अब तन्वी का मुकाबला वियतनाम की थुई लिन हु गुएन से होगा। उन्नति हुडा सेमीफाइनल में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। उधर ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत के पास कई पदक जीतने के मौके हैं। बॉक्सिंग में ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहन की अगुवाई में 10 मुक्केबाज फाइनल मुकाबले खेलेंगे। अस्मिता डे और हर्ष सिंह के कल जूडो में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने के बाद जूडो खिलाड़ी भी मैदान में उतरेंगे। लॉन बाउल्स में नवनीत सिंह और दिनेश कुमार की पुरुष डबल्स जोड़ी इंग्लैंड के खिलाफ महत्वपूर्ण मैच खेलेगी। विजेता सेमीफाइनल में पहुंचेगा। खिलाड़ी पैरा एथलेटिक्स और ट्रैक साइकिलिंग में भी पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे।
1: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति बढ़ती जा रही है। पिछले 4 दिनों में पाकिस्तानी सेना की हिंसक कार्रवाई में 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के सदस्य सरदार उमर नजीर कश्मीरी ने आरोप लगाया कि इन मौतों के लिए सुरक्षा बल जिम्मेदार हैं। एक और बयान में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कहा कि मुजफ्फराबाद इलाके में देर रात तक विरोध प्रदर्शन जारी रहे। लोग अपने बुनियादी अधिकारों की सुरक्षा और स्थानीय अधिकारों द्वारा किए गए वायदों को पूरा करने की मांग को लेकर सड़कों पर डटे रहे। इस बीच अमेरिका स्थित मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने निहत्ते प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा बल प्रयोग की निंदा की है। संगठन ने पाकिस्तानी अधिकारियों से कार्रवाई रोकने, मोबाइल संचार सेवाएं बहाल करने और बल के किसी भी गैर कानूनी इस्तेमाल के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच सीमा पार व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। दोनों देशों के बीच व्यापार 6 वर्षों से रुका हुआ था। इससे 6 साल से ज्यादा समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। भारत और रवांडा ने आपसी व्यापार को बढ़ाने के अपने संकल्प को दोहराया है। नई दिल्ली में हुई भारत रवांडा संयुक्त व्यापार समिति की बैठक के पहले चरण में दोनों पक्षों ने वस्तुओं और सेवाओं के आपसी व्यापार की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष आपसी व्यापार के दायरे को विविधतापूर्ण बनाने, व्यापारिक संबंधों को आसान बनाने और बाजार तक पहुंच से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने से जुड़ी पहलों पर सहमत हुए। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने रात भर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। इसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 22 घायल हो गए। यह हमला पूरे यूक्रेन में रूस के बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले के ठीक 2 दिन बाद हुआ है, जिसमें 10 नागरिकों की मौत हो गई थी और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने कहा कि देश सेवा के प्रति उनका समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आधारभूत ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र के लिए 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले में कल हुए आतंकी हमले में घायल दूसरे मजदूर की मौत। 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 200 रुपए कम हुई। उड़ीसा में महानदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से बाढ़ की स्थिति गंभीर। और ताइपे ओपन बैडमिंटन में तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार। ये समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए गए थे। यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात

1395 किलोहर्ट्ज़ पर। आप हमें एफएम चैनल पर 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर भी सुन रहे हैं। दोपहर के 2:30 हुए हैं, श्रोता सुनेंगे फिल्म संगीत।

0: Akashvani at 90.
1: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: लीजिए अब सुनिए मिली फिल्म का गीत, स्वर लता मंगेशकर और साथियों का है। गीत के बोल योगेश के हैं, संगीत SD बर्मन का।

फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं। लीजिए सुनिए सपना अवस्थी और सुखेंद्र सिंह की आवाज में दिल से फिल्म का गीत। गुलजार के लिखे इस गीत को संगीत दिया है AR रहमान ने।

फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे कामचोर फिल्म का गीत। किशोर कुमार और लता मंगेशकर के गाए इस गीत को लिखा है इंदिवर ने, संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

पत्थर के सनम फिल्म में मोहम्मद रफ़ी के गए मजरू सुल्तानपुरी की लिखी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीतबद्ध की इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का हमारा आज का ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है। यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। दोपहर के 3 बजे है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज पर हमारी यह सभा समाप्त होती है। एफएम चैनल 101.6 मेगाहर्ट्ज पर हमारी सभा जारी रहेगी।

0: 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 5 बजने को है हमारी आज की दूसरी सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं। इस सभा में लीजिए सबसे पहले सुनिए हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन किया। यह स्मारक स्वामी विवेकानंद की 1892 में मैसूरू की ऐतिहासिक यात्रा की याद में बनाया गया है, जब उन्होंने मैसूर के दीवान सर के श्रेष्ठाद्री अय्यर से मुलाकात की थी और शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लेने के लिए अमरीका की यात्रा के लिए मैसूर के महाराजा श्री चामराजेंद्र वाडियार से आर्थिक सहायता प्राप्त की थी। प्रधानमंत्री ने विवेक स्मारक का भ्रमण किया और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। उन्होंने स्मारक में एक पौधा भी लगाया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आंध्र प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है और केंद्र सरकार व्यापक अवसंरचना तथा औद्योगिक विकास के माध्यम से स्वर्ण आंध्र और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने आज भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि हवाई अड्डे, सड़क और ऊर्जा अवसंरचना सहित लगभग 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती है।
2: आज यहाँ करीब 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है।

0: प्रधानमंत्री कल नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का देशव्यापी जन भागीदारी अभियान शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा शामिल होंगे। माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों, युवा क्लबों, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, गैर सरकारी संगठनों, उद्योग संगठनों के युवा प्रकोष्ठों और 125 से अधिक आध्यात्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भी वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। केंद्र सरकार ने आज राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किस्त जारी की है। यह राशि 10 अगस्त को निर्धारित नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजी और विकास व्यय में तेजी लाने के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज भनसवा कचरा निस्तारण स्थल का निरीक्षण किया और दिल्ली नगर निगम के अवशिष्ट निपटान कार्यों की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री को जानकारी दी गई कि 31 जुलाई तक कचरा निस्तारण स्थल पर लगभग 99 लाख मीट्रिक टन अवशिष्ट निपटान किया जा चुका है और शेष अवशिष्ट को इस वर्ष 15 अक्टूबर तक निपटाने की उम्मीद है। श्री लाल ने नगर निगम को निर्देश दिया कि लैंडफिल साइट पर आने वाले नए अवशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए हाल ही में आवंटित कार्य में तेजी लाई गई। सिक्किम में नाथूला दर्रे से भारत और चीन के बीच सीमा पार व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। तेल विपणन कंपनियों ने आज 19 किलो वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में लगभग 200 रुपए की कटौती की है। नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल विश्वनाथ शर्मा सेवानिवृत्त का आज नई दिल्ली में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनका कल सुबह 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। थल सेनाध्यक्ष जनरल धीरज सेठ ने पुष्पचक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज भारत ने 2 और स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। मुक्केबाजी में प्रीति पवार और जैस्मिन लंगोरिया ने स्वर्ण पदक जीते। प्रीति ने महिलाओं के 54 किलोग्राम और जैस्मिन ने 57 किलोग्राम वर्ग में ये पदक हासिल किए। पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में जादुमणि सिंह ने रजत पदक जीता। इसके अलावा पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल ने रजत और सेल्वा प्रभु तिरुमरन ने कांस्य पदक अपने नाम किए। भारत 7 स्वर्ण, 14 रजत और 7 कांस्य समेत कुल 28 पदकों के साथ छठे स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: 215.5 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 5:05 हुए हैं। अब हमारे युवा मित्र अपना कार्यक्रम सुनेंगे।

0: एक गुरु ने अपने शिष्य से पूछा, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? शिष्य बोला, मेरा ज्ञान। गुरु मुस्कुराए और बोले, ज्ञान तुम्हें आगे ले जाएगा, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़ाव तुम्हें ऊंचा बनाएगा। पेड़ जितना ऊंचा होता है, उसकी जड़ें उतनी ही गहरी होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में, और मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त और होस्ट सलोनी तारिक।
1: और मैं हूँ दोस्तों दिशा। दोस्तों, आज की दुनिया में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, स्टार्टअप्स की बात करते हैं, ग्लोबल करियर की बात करते हैं, लेकिन एक सवाल शायद हम खुद से कम पूछते हैं, क्या तेजी से आगे बढ़ते हुए हम अपनी जड़ों से भी जुड़े हुए हैं?
0: बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों, आज की इसी बातचीत हम कोई किताबों के पन्नों से नहीं शुरू करके, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्यों ना शुरू करें। अगर मैं आपसे कहूँ कि योगा, माइंडफुलनेस या सस्टेनेबल लिविंग या प्लांट बेस्ड लाइफस्टाइल और मेडिटेशन, ये सब शब्द आजकल हम ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, हम सोशल मीडिया पर बहुत देखते हैं और सुनते हैं, तो क्या आप मानेंगे कि इनमें से ज्यादातर बातें भारत सदियों पहले से जीता आ रहा है?
1: बिल्कुल। और मजेदार बात तो सलोनी ये है कि कई बार विदेशों में कोई पुरानी भारतीय परंपरा या नया अंग्रेजी नाम लेकर वायरल हो जाता है,

0: और तब हमें ये एहसास होता है कि अरे ये तो हमारे घर में पहले से होता आया है।
1: बिल्कुल सही बात है दोस्तों, भारतीय संस्कृति का मतलब केवल त्योहार मनाना या पारंपरिक कपड़े पहनना नहीं है। संस्कृति दरअसल हमारी सोचने का तरीका है। जब हम बिना किसी के परिचय के किसी बड़े को देखकर हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं, जब मेहमान के आने पर सहज ही कहते हैं आइए, जब खाना परोसते समय सबसे पहले हम दूसरे की थाली में परोसते हैं, वहीं से संस्कृति दिखाई देने लगती है।
0: और मुझे लगता है कि आज का युवा भारतीय संस्कृति से दूर नहीं जा रहा, बल्कि उसे नए तरीके से दुनिया तक पहुंचा रहा है। सोचिए आज सोशल मीडिया पर कितने युवा भारतीय शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, योग को एक नए अंदाज में दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। यानी संस्कृति अब केवल संग्रहालयों में नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया के माध्यम से लाखों लोग तक पहुंच रही है।
1: बिल्कुल सही बात कही है दिशा तुमने। और दोस्तों एक और दिलचस्प बात यह है कि यूनेस्को ने कुंभ मेला, गरबा, दुर्गा पूजा, योगा को अपनी सांस्कृतिक परंपराएं जो हमारी है उनको यूनेस्को ने इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के रूप में मान्यता दी है। यानी हमारी संस्कृति सिर्फ हमारी पहचान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी सीखने योग्य विरासत है।
0: और आजकल एक शब्द बहुत सुनने को मिलता है, वर्क लाइफ बैलेंस। लोग अक्सर गौर करें तो भारतीय देश तो सदियों पहले से कहता आया है कि योग कर्मसु कौशलम, यानी अपने हर काम को संतुलन और कौशल के साथ करना ही योग है। मतलब दोस्तों बैलेंस कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बस उसका नाम थोड़ा चेंज कर दिया गया है।
1: और एक और बात है दिशा जो इसके अलावा मुझे भारतीय संस्कृति की पसंद आती है, वो ये है कि विविधता में एकता। हमारे देश में सैकड़ों भाषाएं हैं, अलग अलग खान पान है, अलग अलग पहनावे हैं, लेकिन फिर भी जब तिरंगा लहराता है तो हमारी पहचान सिर्फ एक होती है, भारतीय होने की।
0: और दोस्तों आज के युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह नहीं कि मॉडर्न बन गए हैं, बल्कि यह है कि मॉडर्न बनने की दौड़ में हम अपनी ओरिजिनलिटी को ना खो दें। इंग्लिश बोलना अच्छी बात है, लेकिन अपनी मातृभाषा बोलने में संकोच क्यों?
1: टेक्नोलॉजी अपनाना जरूरी है, लेकिन परिवार के साथ बैठकर दो बातें करना भी उतना ही जरूरी है। ग्लोबल सिटीजन बनिए दोस्तों, लेकिन अपनी लोकल आइडेंटिटी को कभी मत भूलिए। और शायद भारतीय संस्कृति की यही सबसे बड़ी खूबी है, यह कभी बदलाव का विरोध नहीं करती, यह तो हमेशा कहती है अच्छा अपनाइए लेकिन अपना मत छोड़िए।
0: और दोस्तों संस्कृति किताबों में बंद कोई विषय नहीं है, वह रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों में दिखाई देती है। बड़ों का सम्मान, प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता, परिवार के साथ थोड़ा सा समय बिताना और जरूरतमंद की मदद करना, यही हमारी संस्कृति की असली पहचान है।
1: तो दोस्तों याद रखिए, जड़ें दिखाई नहीं देती लेकिन वही पूरे पेड़ को खड़ा रखती है। और इंसान की जड़ें होती है उसकी संस्कृति, उसके संस्कार और उसकी पहचान।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने। तो आइए अपनी संस्कृति पर थोड़ा गर्व करें, नई सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। और उस वक्त है, अब वक्त है संगीत के कुछ खूबसूरत सुरों का।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: एक जमाने से कहानी है, सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दोस्तों, अब बारी है आपके और हमारे पसंदीदा सेगमेंट क्विज टाइम का, जहां हम आपसे पूछेंगे दो सवाल और कार्यक्रम के अंत में देंगे उनके जवाब।
3: तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेलों की पुरुष 100 मीटर T47 स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता। मैं अपना सवाल फिर से दोहराती हूँ, राष्ट्रमंडल खेलों की पुरुष 100 मीटर T47 स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता।
2: और आपका दूसरा सवाल है, यूनेस्को ने भारत के किस शहर को 45वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में सम्मिलित किया है। मैं सवाल फिर से दोहराती हूँ, यूनेस्को ने भारत के किस शहर को 45वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में सम्मिलित किया है।
3: दिशा, अभी हम बात कर रहे थे भारतीय संस्कृति सिर्फ हमारी

0: पहचान नहीं बल्कि समाज को जोड़ने की ताकत भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों, हमारे इतिहास में एक ऐसे महापुरुष भी हुए जिन्होंने इसी संस्कृति को आजादी की लड़ाई का सबसे सशक्त माध्यम बना दिया।
1: बिल्कुल सलोनी, आज हम बात कर रहे हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की, जिनकी पुण्यतिथि हमें ये याद दिलाती है कि सही सोच, दृढ़ संकल्प और जागरूक समाज किसी भी बड़े परिवर्तन की शुरुआत कर सकते हैं।
0: तो दिशा, क्यों ना एक छोटी सी घटना हम हमारे दोस्तों को सुनाते हैं।
1: क्यों ना,
0: एक समय था जब अंग्रेजों ने लोगों के एक साथ इकट्ठे होने पर कड़ी निगरानी रखी थी। खुलकर देश की बात करना आसान नहीं था। ऐसे समय में एक व्यक्ति ने सोचा, अगर लोग राजनीति के लिए नहीं मिल सकते तो संस्कृति के नाम पर तो जरूर मिल सकते हैं।
1: और दोस्तों, यही सोच एक क्रांति बन गई। लोकमान्य तिलक जी ने सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत की। जो त्योहार पहले घरों तक सीमित था, वह समाज को जोड़ने और देशभक्ति जगाने का अब माध्यम बन गया। अब बाद में उन्होंने शिवाजी जयंती को भी जन भागीदारी का उत्सव बनाया। यह सिर्फ उत्सव नहीं था बल्कि लोगों में आत्मविश्वास और राष्ट्रीय चेतना जगाने का एक छोटा सा प्रयास था।
0: और शायद इसी वजह से उन्हें केवल नेता नहीं बल्कि लोकमान्य कहा गया। यह कोई सरकारी सम्मान नहीं था दोस्तों, बल्कि जनता का दिया हुआ सम्मान था। यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसने पूरे समाज से दिल से जिसको समाज ने स्वीकार किया हो।
1: और एक बात जो आज के युवाओं को जरूर जाननी चाहिए, लोकमान्य तिलक जी सिर्फ स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे दोस्तों, वे एक शिक्षक, गणितज्ञ, पत्रकार और समाज सुधारक भी थे। उनका मानना था कि अगर देश को बदलना है तो सबसे पहले लोगों की सोच बदलनी होगी। इसी उद्देश्य से उन्होंने केसरी और द मराठा जैसे समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों तक अपने विचार पहुँचाए।
0: सोचिए ना दोस्तों, आज हमारे पास सोशल मीडिया है जहाँ कुछ ही मिनटों में एक विचार लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। लेकिन 100 साल पहले जब न इंटरनेट था न मोबाइल था, तब सिर्फ अपने शब्दों की ताकत से पूरे देश में चेतना जगाना कितना बड़ा काम रहा होगा।
1: बिल्कुल सलोनी, और शायद इसीलिए उनका प्रसिद्ध उद्घोष आज भी उतना ही प्रेरणादायक लगता है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। लेकिन अगर हम आज के समय में इस वाक्य को समझे तो इसका अर्थ केवल राजनीतिक आजादी नहीं है। आज का स्वराज्य है सही निर्णय लेने की स्वतंत्रता, जिम्मेदार नागरिक बनना, गलत जानकारी से बचना और अपने विवेक से समाज के लिए सकारात्मक भूमिका निभाना।
0: बिल्कुल सही बात है दोस्तों। एक और रोचक जानकारी है कि लोकमान्य तिलक का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं बल्कि एक ऐसा नागरिक तैयार करना है जो समाज और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझे। इसीलिए उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया और युवाओं को जागरूक बनाने पर विशेष जोर दिया।
1: मुझे तो लगता है सलोनी कि यह बात उन्हें आज के समय में भी प्रासंगिक बनाती होगी। आज हमारे पास अवसर भी है, तकनीक भी है, अपनी बात कहने के अनगिनत मंच भी है। जरूरत बस इस बात की है कि हम अब उनका उपयोग सही दिशा में कैसे करें।
0: बिल्कुल सही कहा। इतिहास में कुछ लोग अपने समय के लिए काम करते हैं, लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके विचार हर पीढ़ी को नई दिशा देते हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भी उन्हीं महान व्यक्तित्वों में से एक हैं।
1: तो आइए दोस्तों, हम एक वादा करते हैं कि ज्ञान, संस्कृति और जागरूकता इन तीनों को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब युवा जागरूक होगा तभी समाज और राष्ट्र मजबूत बनता है।
0: दोस्तों, लोकमान्य तिलक जी का जीवन हमें यही सिखाता है कि रास्ते चाहे कितने भी कठिन क्यों न हो, हिम्मत और विश्वास की पतवार हो तो सफर आगे बढ़ता ही है।

0: व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में।
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक।
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी।

0: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: दिशा, आजकल जब भी अंतर्राष्ट्रीय खबरें या देश विदेश की बात होती है तो एक शब्द बार बार सुनने को मिलता है, वो है क्वाड।
2: बिल्कुल सलोनी, और कई बार ये शब्द सुनने में थोड़ा पेचीदा भी लगता है, लेकिन असल में इसे समझना बहुत आसान है।
1: दोस्तों, क्वाड का सीधा सा मतलब है चार देशों का एक समूह। इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। अगर दुनिया के नक्शे पर इन चारों देशों को एक रेखा से मिलाया जाए तो एक चौकाकार यानी चतुर्भुज जैसी आकृति बनती है, इसीलिए इसे क्वाड कहा जाता है। इसका औपचारिक नाम है कोऑर्डिनेटेड सिक्योरिटी।

0: डायलॉग।
1: और अगर इसके इतिहास की बात करें तो साल 2004 में जब हिंद महासागर में भयानक सुनामी आई थी, तब भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर बहुत बड़े पैमाने पर राहत और बचाव कार्य चलाया था। उस वक्त पहली बार ये एहसास हुआ कि चार देश मिलकर कितनी बड़ी आपदा से निपट सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। लेकिन औपचारिक रूप से 2007 में जापान की पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इस विचार को आगे बढ़ाया। फिर 2017 में जब हिंद प्रशांत यानी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीति संतुलन और सुरक्षा की जरूरत महसूस हुई, तब क्वाड को दोबारा और बेहद मजबूती के साथ पुनर्गठित किया गया।
1: लेकिन सलोनिया, इसके अहम सवाल तो यह है कि चार देश एक साथ मिलकर काम क्यों कर रहे हैं? इसका सबसे मुख्य उद्देश्य है इंडो पैसिफिक यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थिरता, स्वतंत्र व्यापार को बढ़ावा देना।
0: दोस्तों, इंडो पैसिफिक क्षेत्र पूरी दुनिया के व्यापार के लिए रीढ़ की हड्डी माना जाता है। दुनिया का एक बहुत बड़ा समुद्री व्यापार इसी रास्ते से होकर गुजरता है। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि समुद्री रास्ते किसी एक देश के नियंत्रण में न रहें, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत सभी देशों के लिए खुले और सुरक्षित रहें।
1: बिल्कुल, और सबसे अच्छी बात तो यह है कि क्वाड सिर्फ सुरक्षा या रक्षा मामलों तक सीमित नहीं है, समय के साथ इसका दायरा बहुत व्यापक हो गया है। आज ये समूह स्वास्थ्य सेवा, जलवायु परिवर्तन, नई तकनीक, साइबर सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में भी मिलकर काम कर रहा है।
0: जैसे कोविड-19 महामारी के समय क्वाड वैक्सीन पहल के तहत करोड़ों वैक्सीन खुलकर बांटी गई थी। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं के समय मिलकर मदद पहुंचाना, समुद्र में अवैध मछलियां पकड़ने वाली गतिविधियों पर नजर रखना और ग्रीन एनर्जी यानी पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा को बढ़ावा देना, ये सब क्वाड के मुख्य एजेंडा में शामिल है दोस्तों।
1: और सलोनी, अगर भारत के नजरिए से देखें तो क्वाड की सदस्यता हमारे लिए रणनीतिक और आर्थिक रूप से बेहद इम्पोर्टेंट है। इससे हिंद महासागर में भारत की स्थिति और भी मजबूत होती है और साथ ही तकनीक, व्यापार और सुरक्षा के मामले में विश्व की बड़ी शक्तियों के साथ हमारी साझेदारी गहरी होती है।
0: बिल्कुल, और यह बहुत समझने की बात है कि दोस्तों, क्वाड कोई सैन्य गठबंधन या नाटो जैसी संस्था नहीं है। ये चार लोकतांत्रिक देशों का एक ऐसा मंच है जो कानून के शासन, स्वतंत्रता और आपसी सहयोग के सिद्धांतों पर काम करता है।
1: बिल्कुल, क्वाड चार जिम्मेदार देशों की एक ऐसी दूरदर्शी साझेदारी है जो न केवल हिंद प्रशांत क्षेत्र में बल्कि पूरी दुनिया में शांति, सुरक्षा और समृद्धि बनाए रखने के लिए काम कर रही है।
0: बिल्कुल, वैसे दिशा, कुछ बातें जुबा से नहीं कही जाती, बस गाने के जरिए दिल तक पहुंच जाती है।

0: माह के पहले और तीसरे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिएगा कार्यक्रम हेल्दी बीकाना आकाशवाणी बीकानेर के भोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: सलोनी, हम अक्सर न्यूज में सुनते हैं कि सरकार ने कोई नया कानून बनाया या सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगे। सोचो, ऐसे में कई बार ये ख्याल भी आता है कि इतने बड़े देश की सरकार अपने कानूनी मामले कैसे संभालती होगी और उन्हें सही सलाह कौन देता होगा।
2: दिशा, असल में इसके लिए हमारे

0: संविधान निर्माताओं ने बहुत पहले से एक स्पष्ट व्यवस्था तैयार कर दी थी। हमारे संविधान के अनुच्छेद 76 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद का जिक्र है, वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया।
1: वैसे दोस्तों, अगर इसे बहुत ही आसान भाषा में अगर समझे तो जैसे किसी आम नागरिक को अपने कानूनी मामलों या कोर्ट कचहरी के काम के लिए एक वकील की जरूरत होती है ना, ठीक वैसे ही अटॉर्नी जनरल भारत सरकार के सबसे बड़े और मुख्य वकील होते हैं। इन्हें देश का प्रथम कानूनी अधिकारी यानी फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है।
0: दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 76 मुख्य रूप से चार पांच बड़ी बातों पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसे इनकी नियुक्ति कैसे होगी, योग्यता क्या होगी, इनके काम और अधिकार क्या होंगे और इनका कार्यकाल कितना होगा।
1: और सबसे पहले अगर नियुक्ति और योग्यता की बात करें तो अनुच्छेद 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि राष्ट्रपति इस पद पर किसी भी व्यक्ति को नियुक्त नहीं कर सकते। उस व्यक्ति के पास सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की पूरी योग्यता होनी चाहिए।
0: और इसके अलावा अगर राष्ट्रपति की नजर में वे कानून के बहुत बड़े जानकार या प्रसिद्ध विद्वेता हैं तो उन्हें इस पद पर चुना जा सकता है।
1: और अब बारी आती है इनका मुख्य काम क्या है। अनुच्छेद 76 के अनुसार इनका सबसे बड़ा कर्तव्य है भारत सरकार को उन सभी कानूनी मामलों पर सलाह देना जो राष्ट्रपति द्वारा उन्हें भेजे जाते हैं। इसके अलावा सरकार से जुड़े जितने भी कानूनी मामले होते हैं उनमें सरकार का पक्ष रखना इनकी जिम्मेदारी होती है।
0: निशा सिर्फ सलाह देने ही नहीं बल्कि भारत के किसी भी हिस्से में किसी भी अदालत में, चाहे वह सुप्रीम कोर्ट हो या किसी राज्य का हाई कोर्ट, अगर भारत सरकार से जुड़ा कोई मामला चल रहा है तो अटॉर्नी जनरल को वहां जाकर सरकार की तरफ से पैरवी करने का पूरा अधिकार होता है। संविधान उन्हें भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार यानी राइट ऑफ ऑर्डिनेंस देता है।
1: और इस अनुच्छेद की एक बहुत ही दिलचस्प और अनोखी बात है, तुम पता है सुनोनी, अटॉर्नी जनरल को संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बैठकों में शामिल होने का अधिकार है। यहाँ तक कि अगर संसद की कोई संयुक्त बैठक या ज्वाइंट सिटिंग हो रही हो तो संसद की कोई विशेष समिति बन रही हो तो उसमें भी वे बैठकर अपनी बात रख सकते हैं।
0: लेकिन यहाँ एक और बहुत बड़ा नियम है दिशा, वो है जो आमतौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बहुत बार पूछा जाता है, वो है कि अटॉर्नी जनरल संसद की कार्रवाई में बोल सकते हैं, चर्चा में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन उन्हें संसद में वोट देने का अधिकार नहीं होता है क्योंकि वे संसद के चुने हुए सदस्य नहीं होते हैं, इसलिए वे किसी विधेयक या प्रस्ताव पर मतदान नहीं कर सकते।
1: अच्छा, इसके साथ ही अटॉर्नी जनरल को भी सभी विशेषाधिकार और अनुमतियां मिलती है जो संसद के एक सदस्य यानी एमपी को मिलती है।
0: अब अगर इनके कार्यकाल और पद से हटने की प्रक्रिया को समझें तो संविधान में अनुच्छेद 76 के तहत इनके कार्यकाल का कोई निश्चित समय तय नहीं किया गया है, यानी ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि वे 3 साल या 5 साल के लिए ही चुने जाएंगे।
1: बिल्कुल, अगर संविधान की भाषा में कहें तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बने रहते हैं।
0: दोस्तों, अनुच्छेद 76 हमारे देश के कानूनी ढांचे का एक बहुत बड़ा मजबूत खंभा है। यह सुनिश्चित करता है कि देश की सरकार जो भी नीतियां या कानून बनाए वह संविधान और कानून के दायरे में रहकर बनाए।
1: वैसे सलोनी, हमने बातें तो काफी की लेकिन कुछ बातें पन्नों पर लिखी नहीं जाती है, बस महसूस की जाती है। चलो आज दिन की उसी अनकही बात को थोड़ा गुनगुनाते हैं।

0: सोनी, तुम्हें याद है कि साल 2025 में खिंचन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रामसर वेटलैंड का दर्जा मिला था, जो पूरी राजस्थान के लिए बहुत बड़ी और ऐतिहासिक उपलब्धि है।
1: सच में दिशा, यह बेहद खुशी की बात है। अब खिंचन सिर्फ राजस्थान या भारत के नक्शे पर ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में पक्षी संरक्षण और पर्यावरण के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में पहचाना जाएगा।
0: बिल्कुल, और सबसे खास बात यह है सलोनी कि यह नमभूमि यानी वेटलैंड केवल पानी का एक जरिया नहीं है, बल्कि यह हजारों बेजुबान प्रवासी पक्षियों की जीवन रेखा है।
1: बिल्कुल, हर साल सर्दियों के मौसम में साइबेरिया, मंगोलिया, चीन जैसे सुदूर और ठंडे इलाकों से हजारों किलोमीटर की कठिन उड़ान भरकर कुर्जा पक्षी सीधे यहाँ आते हैं। उनके लिए खिंचन का यह शांत वेटलैंड एक सुरक्षित और अनुकूल आशियाना बन जाता है।
0: और इतनी लंबी दूरी तय करके आने वाले इन मेहमान परिंदों को खिंचन का पानी, यहाँ की हवा और पूरा माहौल बहुत भाता होगा ना। पर इस पूरी कहानी की सबसे खूबसूरत कड़ी तो खिंचन गांव के लोग और उनका निस्वार्थ प्रेम है।
1: तुमने एकदम सही कहा दोस्तों, गांव वालों ने जिस तरह से इन विदेशी पक्षियों को अपनों की तरह अपनाया है, वो मिसाल हर जगह देखने को नहीं मिलती। उन्होंने पक्षियों के दाने पानी के लिए गांव में बकायदा छुग्गा घर बनाया हुआ है, जहां रोज सैकड़ों किलो अनाज डाला जाता है।
0: सुबह और शाम के वक्त जब हजारों की तादाद में कुर्जा पक्षी एक साथ उस वेटन के किनारे उतरते होंगे, दाना चुगते होंगे, पानी के साथ अटखेलियां करते होंगे, तो शायद वो नजारा कितना मनमोहक होता होगा ना।
1: बिल्कुल,
0: पूरे माहौल में उनकी आवाज और पंखों की सरसराहट गूंज उठी होगी।
1: और दिशा, यही तो इंसान और कुदरत के बीच का अद्भुत जुड़ाव है, जिसने खिंचन को दुनिया भर के वैज्ञानिकों, पर्यटकों और पर्यावरण प्रेमियों का पसंदीदा ठिकाना बना दिया है।
0: दोस्तों, इसी अनूठी तालमेल और खिंचन के इकोसिस्टम के महत्व को देखते हुए ही 2025 में इसे विश्व स्तरीय वेटलैंड का दर्जा दिया गया था। अब अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिलने का फायदा यह होगा कि इस इलाके का संरक्षण वैज्ञानिक तरीके से होगा, यहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और पक्षियों की सुरक्षा और मजबूत होगी। इससे इस नमूने को साफ और सुरक्षित रखने में और बड़ी मदद मिलेगी।
1: बिल्कुल सही बात है, और यह अंतर्राष्ट्रीय पहचान हमें ये भी याद दिलाती है कि हमारी नमभूमियों और जल स्रोतों को बचाना हमारे पूरे पर्यावरण के संतुलन के लिए कितना जरूरी है।
0: सच में सलोनी, खिंचन गांव और उसका ये खूबसूरत वेटलैंड ये साबित करता है कि अगर हम प्रकृति को थोड़ा प्यार और सुरक्षा दें, तो कुदरत अपनी पूरी सुंदरता हमारे आंगन में बिखेर देती है।
1: बिल्कुल दिशा, खिंचन का यह वेटलैंड हमारे पर्यावरण की एक अनमोल धरोहर है, और इसका संरक्षण हम सबकी साझी जिम्मेदारी है।
0: देखो कि हजारों मील दूर से आकर खिंचन की धरती पर बेफिक्र घूमना, ये आजादी सिर्फ पक्षी ही महसूस कर

0: सुनो नहीं, तुम्हें याद होगा कि कार्यक्रम की शुरुआत में हमने दोस्तों से सवाल पूछे थे
1: जी,
0: तो वक्त है उन सवाल के जवाब देने का।
1: तो दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न था कि राष्ट्रमंडल खेलों की पुरुष 100 मीटर T47 स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है और हमारे देश का गौरव बढ़ाने वाले उस इंसान का नाम है दिलीप महादो गावित।
0: दोस्तों आपका दूसरा सवाल था, यूनेस्को ने भारत के किस शहर को 45वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में सम्मिलित किया है, जिसका सही जवाब है सारनाथ का प्राचीन बौद्ध स्थल।
1: दोस्तों अब वक्त है रोजगार समाचार का। संघ लोक सेवा आयोग

0: यूपीएससी ने विभिन्न ग्रुप ए और ग्रुप बी पदों पर सीधी भर्ती के लिए कुल 40 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं।
1: सलोनी, इन पदों में एग्रीकल्चर इंजीनियर, साइंटिस्ट बी, मेडिकल ऑफिसर जैसे अनेक पद शामिल हैं। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता संबंधित पद के अनुसार निर्धारित की गई है, इसलिए अभ्यर्थी आवेदन करने से पहले विस्तृत अधिसूचना अवश्य पढ़ लें।
0: दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 25 जुलाई 2026 से शुरू हो चुकी है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है।
1: और अधिक जानकारी, योग्यता, आयु सीमा, ऑनलाइन आवेदन के लिए आप यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upscionline.nic.in पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, आज हमारे सफर में बातों और विचारों का कारवां बहुत ही खूबसूरत रस्तों से गुजरा। आज हमने जाना कि खिंचन वेटलैंड की खूबसूरती हमारी कुदरत का तोहफा है, और तो अनुच्छेद 76 हमारे संविधान की ताकत, वैश्विक स्तर पर क्वाड से भारत की बढ़ती चमक हो या फिर लोकमान्य तिलक जी के पुण्यतिथि पर उनके दिए गए अमर विचार हो, ये सब यही याद दिलाते हैं कि भारतीय संस्कृति और हमारी युवा पीढ़ी ही इस देश का असली भविष्य है।
0: और दोस्तों, इससे एक और चीज है जो हमें याद रखनी चाहिए कि जीवन में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत, लगन और सकारात्मक सोच ही वो कुंजी है जो आपके हर सपने की हकीकत में बदलने की क्षमता रखती है। नया दिन हर एक नई उम्मीद और एक अवसर लेकर आता है कुछ सीखने का, कुछ नया करने का और अपने आप को पहले से बेहतर बनाने का।
1: दोस्तों, अपने सपनों को पूरा करने के सफर में यही कभी रास्ते कभी कठिन तो कभी रुके नहीं, बल्कि और मजबूती से आगे बढ़ते हैं। हर छोटी जीत आपको बड़े लक्ष्य के करीब ले जाती है, और अपनी मेहनत पर विश्वास करें और यह भी समझें कि विफलताएं केवल सीढ़ियां हैं जो हमें ऊंचाई तक ले जाती हैं।
0: इसी सकारात्मक ऊर्जा और जोश के साथ हम आपसे विदा लेंगे। अगली बार फिर मिलेंगे नए विषयों, नई कहानियों और दिलचस्प चर्चाओं के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। नमस्कार।

युवा मित्रों ने अभी अपना कार्यक्रम सुना। कार्यक्रम का नाम था युवाणी। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मरु चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है हमारे इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम।

श्रोताओं, आज रात 10 बजे सुनिएगा संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। इसे हम आपके लिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। दिल्ली से ही रिले होने वाला एक और कार्यक्रम है रात 9:30 पर। कार्यक्रम का नाम है साहित्य भारती।

संगीत सुनकर रात 9:15 पर और लोक संगीत का समय है रात 8:30। बीकानेर की सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों का साप्ताहिक कार्यक्रम बीकानेर दर्पण आप सुन सकते हैं रात 8:00।

श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम ग्रामीण जगत होगा संध्या 7:30 पर। आज इस कार्यक्रम में फरमाइशी पत्रों व ईमेल पर आधारित लोकगीतों का कार्यक्रम होगा। गूंजे गांव गुवार।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी आज आप सुन सकते हैं संध्या 7 बजे। ये कार्यक्रम आपके लिए आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले किया जाएगा।

अब से कुछ ही देर बाद आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत संध्या 6:05 पर। ये तो था हमारे इस संध्या में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्स और FM 101.6 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 6 बजने को है। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का युवा अब दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के विचार सदैव ऊंचे रहे और उन्होंने शास्त्रों का आत्मसात किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैसूरू भारत की अनादि सांस्कृतिक चेतना का केंद्र है।
1: मैसूरू भारत की अनादि सांस्कृतिक चेतना का केंद्र रहा है। यहाँ के मंदिर, यहाँ की परंपराएं और उत्सव, मैसूरू का दशहरा, यहाँ के भव्य महल, इसका संगीत और साहित्य, भारत की विरासत इस शहर के कण कण में रची बसी है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीतारामा राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है और केंद्र सरकार व्यापक अवसंरचना तथा औद्योगिक विकास के माध्यम से स्वर्ण आंध्र और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि हवाई अड्डे, सड़क और ऊर्जा अवसंरचना सहित लगभग 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती है।
1: आज यहाँ करीब 18,000 करोड़ रुपीज की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री कल नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का देशव्यापी जन भागीदारी अभियान शुरू हो जाएगा। इसका

0: कार्यक्रम में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा शामिल होंगे। माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों, युवा क्लबों, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, गैर सरकारी संगठनों, उद्योग संगठनों के युवा प्रकोष्ठों और 125 से अधिक आध्यात्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भी वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज भलसवा कचरा निस्तारण स्थल का निरीक्षण किया और दिल्ली नगर निगम के अपशिष्ट निपटान कार्यों की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री को जानकारी दी गई कि 31 जुलाई तक कचरा निस्तारण स्थल पर लगभग 99 लाख मीट्रिक टन अपशिष्ट का निपटान किया जा चुका है और शेष अपशिष्ट को इस वर्ष 15 अक्टूबर तक निपटाने की उम्मीद है। श्री लाल ने नगर निगम को निर्देश दिया कि लैंडफिल साइट पर आने वाले नए अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए हाल ही में आवंटित कार्य में तेजी लाई जाए। केंद्र सरकार ने आज राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किस्त जारी की है। यह राशि 10 अगस्त को निर्धारित नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजी और विकास व्यय में तेजी लाने के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच सीमा पार व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज अब तक भारत ने 3 और स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। मुक्केबाजी में प्रीति पवार ने 54 किलो और जैस्मिन ने 57 किलो में स्वर्ण पदक जीते। 55 किलो में जादूमणि सिंह ने रजत पदक जीता। इसके अलावा सोनम राणा ने पैरा एथलेटिक्स के शॉट पुट F57 वर्ग में पहला स्थान हासिल किया। शुभम जोयाल को रजत पदक मिला। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रावेल ने रजत और सेल्वा प्रभु तिरुमरन ने कांस्य पदक अपने नाम किए। पदक तालिका में भारत 8 स्वर्ण, 15 रजत और 7 कांस्य समेत कुल 30 पदकों के साथ 6ठे स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 MHz पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 6:05 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की युगल स्वर में फिल्म नहले पे दहला का ये गीत।

0: फैल गया है पटल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: प्रत्येक मंगलवार गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: लता मंगेशकर की गाय फिल्म आशीर्वाद के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ही कार्यक्रम यही समाप्त हुआ। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्स और FM 101.6 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 6:30 होने को है। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, उसके बाद 6:40 पर जिले की चिट्ठी और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उड़ान योजना ने आम लोगों के लिए हवाई यात्रा को किफायती बनाया। मुख्यमंत्री मदनलाल शर्मा ने उदयपुर से राज्य स्तरीय वन महोत्सव की शुरुआत की। पर्यावरण संरक्षण को सामूहिक जिम्मेदारी बताया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने विद्यार्थियों को बौद्धिक रूप से सशक्त बनाने की जरूरत पर जोर दिया। और ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का उत्कृष्ट प्रदर्शन, कई मुकाबलों में पदक जीते। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में विमानन क्षेत्र का तेजी से विस्तार हो रहा है। उन्होंने कहा कि उड़ान योजना ने आम लोगों के लिए हवाई यात्रा को किफायती बना दिया है। श्री मोदी ने आज आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में बने नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि साल 2014 से देश में 74 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या बढ़कर 166 हो गई है। श्री मोदी ने कहा कि NDA सरकार में छोटे शहरों के लोग भी हवाई सफर कर रहे हैं।
2: एक समय था जब हवाई उड़ानें सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित थी। NDA सरकार में आज छोटे शहर के साधारण लोग भी फ्लाइट से आ जा रहे हैं। 12 इयर्स में सिर्फ एयरपोर्ट की संख्या ही नहीं बढ़ी है, हमारी उड़ान योजना के कारण आज गरीब परिवार के लोगों को भी जहाज में बैठने का अवसर मिल रहा है। इस योजना ने गरीब से गरीब को अपना सपना पूरा करने में मदद की। कुछ दिन पहले ही सरकार ने उड़ान योजना के दूसरे फेज की शुरुआत की। इस पर भी 29,000 करोड़ रुपीज खर्च किए जाएंगे।
1: प्रधानमंत्री श्री मोदी कल नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल माध्यम

0: से शुभारंभ करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के माय भारत पोर्टल के जरिए इस देशव्यापी अभियान का आयोजन किया जा रहा है। 10,000 से ज्यादा स्थानों को जोड़ते हुए यह अभियान नशे के सेवन के खिलाफ सामूहिक संकल्प की एकजुटता को मजबूत करता है। इसमें सामाजिक आध्यात्मिक संगठन, युवा क्लब, शैक्षणिक संस्थान, औद्योगिक संघ और गैर सरकारी संगठनों के स्वयंसेवक अपने अपने स्थानों से जुड़ेंगे। 100 सप्ताह के इस अभियान के दौरान पदयात्रा, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक और खेल आयोजन तथा अन्य गतिविधियां होंगी। इन सभी के जरिए नशा मुक्ति का संदेश दिया जाएगा। ये अभियान युवा पीढ़ी को नशे के खिलाफ मजबूती से खड़े होने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण सामूहिक जिम्मेदारी है, इसमें हर नागरिक की भागीदारी होनी चाहिए। आज उदयपुर में राज्य स्तरीय वन महोत्सव को संबोधित करते हुए श्री शर्मा ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और स्वच्छ पर्यावरण बनाए रखने को लेकर सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे।
1: विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की थी, आज वो एक जन आंदोलन बन गया है और आपके माध्यम से मैं राजस्थान की जनता को कहना चाहता हूँ कि वो एक पेड़ माँ के नाम अवश्य लगाएं, हमारी माँ की स्मृतियों को भी सजोएं, आने वाली प्रकृति, आने वाले पीढ़ी को भी हम ये बताएं कि उनको हम फल भी दे करके जा रहे हैं, छाया भी दे करके जा रहे हैं और पर्यावरण को सुरक्षित करके भी जा रहे हैं।
0: मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कालका माता नर्सरी परिसर से इस अभियान की शुरुआत की। गौरतलब है कि मिशन हरियालो राजस्थान के तहत इस साल मानसून में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं इस मिशन के तहत अब तक 20 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। अरावली संरक्षण के लिए 30,000 हेक्टेयर क्षेत्र से अधिक में वृक्षारोपण किया जाएगा। वहीं उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और बांसवाड़ा में चंदन वन की स्थापना की जाएगी। प्रदेश भर में आज स्तनपान सप्ताह की शुरुआत हुई। इसके तहत 7 अगस्त तक लोगों में स्तनपान के प्रति जागरूकता फैलाई जाएगी। इस दौरान प्रसूताओं, धात्री माताओं और उनके परिजनों को स्तनपान का महत्व बताया जाएगा। अलवर के मदर मिल्क बैंक में स्तनपान सप्ताह के दौरान वर्कशॉप, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता और रैली सहित अन्य आयोजन होंगे। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज प्रदेश में सुरक्षित मातृत्व सेवाओं की समीक्षा की। उन्होंने गर्भवती महिलाओं को समय पर बेहतर इलाज के लिए रेफरल परिवहन तंत्र को मजबूत करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने सुरक्षित प्रसव और जननी एक्सप्रेस सेवाओं के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश सहित परिपत्र जारी करने को कहा। जयपुर स्थित स्वास्थ्य भवन से वीसी के जरिए हुई इस बैठक से मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्य, अस्पताल अधीक्षक, सीएमएचओ और अन्य अधिकारी जुड़े। मुख्य सचिव ने उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं में एनीमिया और हाइपरटेंशन के लिए एसओपी जारी करने को कहा, जिससे प्रदेश भर में एक समान उपचार प्रोटोकॉल की पालना हो सके। राज्य में कर चोरी और अपात्र कर लाभ के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत वाणिज्यिक कर विभाग की ओर से कई जिलों में आज सर्वे की कार्यवाही की गई। राजसमंद, बाड़मेर, प्रतापगढ़, जैसलमेर और जयपुर सहित कई जिलों में एक साथ जांच की। इसमें कई मामलों में कर कानूनों के उल्लंघन और कम टैक्स दिखाने और देने जैसी गड़बड़ियां सामने आई हैं। इन मामलों में दस्तावेजों की विस्तृत जांच की जा रही है। विभाग ने कहा है कि राजस्व को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आज बीकानेर के स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह में शिरकत की। श्री बागड़े ने SKRAU में ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय ने पिछले 40 वर्षों में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। करीब 28,000 से अधिक विद्यार्थियों ने कृषि प्रशिक्षण किया है। श्री बागड़े ने कहा कि विद्यार्थियों को बौद्धिक रूप से सशक्त बनाना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है।
2: राजस्थान में अभी जो नीट का निकाल लगा उसमें राजस्थान ने अच्छी प्रगति की, लेकिन इससे और भी करने की जरूरत है। और माध्यमिक स्कूल, उच्च माध्यमिक, हमारे जूनियर कॉलेज, यहाँ के जो छात्र छात्राएं परीक्षा देती है,

0: अभ्यास करती है, उन्हीं के लिए उनकी बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए सभी शिक्षकों ने, अध्यापकों ने, यूनिवर्सिटी और स्कूल वालों ने कोशिश करना है।
1: केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि एसकेआरएयू को इंडिया एआई मिशन से कृषि आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की मंजूरी मिली है। इस पर 20 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे क्षेत्र के किसानों और कृषि शोधार्थियों को फायदा मिलेगा। नीट यूजी काउंसलिंग 2026 में केंद्र सरकार और एनसीसी ने वन टाइम फिजिकल रिपोर्टिंग और ऑनलाइन दस्तावेज सत्यापन की नई व्यवस्था शुरू की है। इसमें छात्र घर बैठे ही फ्रीज और फ्लोट विकल्प ऑनलाइन चुन सकेंगे। विद्यार्थियों को कॉलेज के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। नीट यूजी काउंसलिंग को लेकर आज चिकित्सा शिक्षा आयुक्त बाबूलाल गोयल ने राज्य के सभी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों के नोडल अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन सत्यापन निर्धारित समय सीमा में पूरा करना होगा। देरी होने पर संबंधित सीट स्वतः ही निरस्त हो सकती है। श्री गोयल ने प्रवेश शुल्क की जानकारी पोर्टल पर तत्काल अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। ऑल इंडिया कैटरर्स फेडरेशन का राष्ट्रीय सम्मेलन जयपुर में आयोजित किया जा रहा है। इसमें देश भर से कैटरिंग व्यवसाय से जुड़े प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। सीतापुरा स्थित जेईसीसी में हो रहे इस सम्मेलन को आज विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने संबोधित किया। श्री देवनानी ने इस मौके पर प्रदर्शनी का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान के पारंपरिक व्यंजन यहाँ की पहचान और संस्कृति है। कैटरिंग उद्योग के लोग इसे देश दुनिया तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कैटरिंग और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े लोगों से स्वाद के साथ साफ सफाई, आधुनिक तकनीक और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देने पर जोर दिया है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघिन T127 दो शावकों के साथ नजर आई है। इससे वन्य जीव प्रेमियों और पर्यटकों में उत्साह है। हमारे संवाददाता ने बताया कि शावकों की सुरक्षा के लिए कैमरा ट्रैप और फील्ड पेट्रोलिंग के जरिए लगातार निगरानी रखी जा रही है।
2: रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से आज एक बार फिर खुशखबरी मिली है। बाघिन T127 दो शावकों के साथ जोन नंबर 7 में नजर आई है। बाघिन T127 लक्ष्मी T8 लाडली की बेटी है, जो करीब 6 वर्ष की है तथा पहली बार मां बनी है। यह बाघिन जोन नंबर 6 और 7 में विचरण करती है। बाघिन के साथ नए शावक देखे जाने के बाद वन्य जीव प्रेमियों और पर्यटन व्यवसायियों में खुशी की लहर है। बाघिन के क्षेत्र में लगातार निगरानी और प्रभावी गश्त के निर्देश दिए गए हैं। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर।
1: ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने जेवलिन थ्रो, ट्रिपल जंप, जूडो और मुक्केबाजी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए पदक हासिल किए हैं। महिला मुक्केबाजी में प्रीति पवार और जैस्मिन लंबोरिया ने स्वर्ण, नीरज चोपड़ा ने रजत, यशवीर सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खेल मंत्री मनसुख मांडविया सहित विभिन्न नेताओं ने देश का गौरव बढ़ाने पर इन खिलाड़ियों की मेहनत और शानदार प्रदर्शन की सराहना की है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज और कोटा की बेटी अरुंधति चौधरी की जीत के लिए भी प्रार्थनाओं का दौर चल रहा है। उनका मुकाबला आज इंग्लैंड की चेंटेल रीड से होगा। 8 गोल्ड, 15 सिल्वर और 7 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में भारत फिलहाल 6 स्थान पर बना हुआ है। फ्रेंडशिप डे यानी मैत्री दिवस कल मनाया जाएगा। देश भर में अगस्त के पहले रविवार को यह दिन मनाया जाता है। मैत्री दिवस दोस्ती को समर्पित है। इस दिन लोग एक दूसरे को फ्रेंडशिप बैंड, उपहार और कार्ड का आदान प्रदान करते हैं। ये दिन एक दूसरे से जुड़ने, मित्रों के आभार व्यक्त करने के साथ ही आत्मीय और खुशनुमा माहौल प्रदान करता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उड़ान योजना ने आम लोगों के लिए हवाई यात्रा को किफायती बनाया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उदयपुर से राज्य स्तरीय वन महोत्सव की शुरुआत की। पर्यावरण संरक्षण को सामूहिक जिम्मेदारी बताया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने विद्यार्थियों को बौद्धिक रूप से सशक्त बनाने की जरूरत पर जोर दिया। और ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का उत्कृष्ट प्रदर्शन, कई मुकाबलों में पदक जीते। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। पिछले महीने बीकानेर जिले में पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन और सामाजिक जागरूकता से जुड़ी कई महत्वपूर्ण गतिविधियां रही। हरियाणा राजस्थान अभियान के तहत व्यापक पौधरोपण हुआ, नशा मुक्ति अभियान को गति मिली, स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां शुरू हुई और विभिन्न विभागों ने जन सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए। प्रस्तुत है बीकानेर जिले की प्रमुख गतिविधियां। हरियाणा राजस्थान अभियान के तहत राजकीय आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा एकीकृत महाविद्यालय में औषधीय पौधों के वृक्षारोपण का विशेष कार्यक्रम हुआ। महाविद्यालय परिसर में पारिजात, अर्जुन, बिल्व, करंज, मीठा नीम और खेजड़ी सहित अनेक औषधीय पौधे लगाए गए। इस अवसर पर विशेषज्ञों ने इन पौधों के औषधीय महत्व और पर्यावरण संरक्षण में उनकी भूमिका की जानकारी दी और अधिक से अधिक पौधरोपण करने का आह्वान किया। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाने की तैयारियां जिले में शुरू हो गई हैं।

0: सेव, करंज, मीठा नीम और खेजड़ी सहित अनेक औषधीय पौधे लगाए गए। इस अवसर पर विशेषज्ञों ने इन पौधों के औषधीय महत्व और पर्यावरण संरक्षण में उनकी भूमिका की जानकारी दी और अधिक से अधिक पौधरोपण करने का आह्वान किया। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाने की तैयारियां जिले में शुरू हो गई हैं। जिला कलेक्टर निशांत जैन ने तैयारियों की समीक्षा करते हुए सभी अधिकारियों को समयबद्ध ढंग से सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने ध्वजारोहण, मार्च पास्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सुरक्षा, पेयजल, पार्किंग और अन्य व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा की तथा विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखने पर जोर दिया। राज्य सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना के तहत जिले के वरिष्ठ नागरिकों को भी बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए भेजा जा रहा है। देवस्थान विभाग के अनुसार बीकानेर जिले के 205 वरिष्ठ नागरिक इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों के ठहरने, सुरक्षा, अन्य आवश्यक सुविधाओं का बंदोबस्त किया गया है। दहेज प्रतिषेध दिवस के अवसर पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग में अधिकारियों और कर्मचारियों ने दहेज नहीं लेने और नहीं देने की शपथ ली। इस अवसर पर दहेज प्रथा के विरुद्ध जागरूकता का संदेश दिया गया। विभाग की ओर से सरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों और छात्रावासों में भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जिला स्तरीय नार्को समन्वय समिति की बैठक में नशे की रोकथाम और जन जागरूकता गतिविधियों की समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर ने कहा कि नशे के खिलाफ प्रशासन, समाज, शिक्षण संस्थानों और आमजन की संयुक्त भागीदारी जरूरी है। बैठक में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री पर प्रभावी कार्रवाई, जागरूकता अभियान और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया। पुलिस विभाग ने बताया कि ऑपरेशन नीलकंठ के तहत नशा तस्करों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है तथा सूचना देने के लिए विशेष हेल्पलाइन भी चलाई जा रही है। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों और आगंतुकों की सुविधा के लिए अधिष्ठाता छात्र कल्याण एवं कुलानुशासक कार्यालय का शुभारम्भ किया गया। साथ ही विश्वविद्यालय परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार पर अभ्यागत केंद्र भी शुरू किया गया है। इससे विद्यार्थियों, अभिभावकों और अन्य आगंतुकों को आवश्यक सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकेंगी। जिले में जन्म और मृत्यु पंजीकरण व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित हुई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर उम्मेद सिंह रत्नू ने सभी सरकारी अस्पतालों में जन्म और मृत्यु का शत प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नगर निगम में हेल्प डेस्क स्थापित करने, वृद्धजनों और महिलाओं को प्राथमिकता से सहायता उपलब्ध कराने तथा पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने पर जोर दिया। जिला कलेक्टर ने बीते दिनों छतरगढ़ क्षेत्र का दौरा कर विभिन्न सरकारी संस्थानों और ग्रामीण सेवा शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने छात्रावास, अस्पताल, पशु चिकित्सालय, अन्नपूर्णा रसोई और अन्य कार्यालयों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को आमजन से जुड़े कार्यों का समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए। ग्रामीण सेवा शिविर में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र दिए गए और ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान करने पर बल दिया गया। इसी के साथ बीकानेर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो उड़ान योजना जनता सारो हवाई सफर किफायती बनायो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा उदयपुर राज्य स्तर रा वन महोत्सव की शुरुआत की। पर्यावरण बचावण ने सगला ने भली जिम्मेदारी बतायो। राज्यपाल हरिभाव बागड़े विद्यार्थियों ने दिमागी तौर मजबूत बनावण माथे जोर दिनो। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेला में भारत रा खिलाड़ियों रो चोखो खेल रो दर्शाव। 30 तमगा सागे फिलहाल छठी ठौड़ माथे। समाचारों सागे में सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो है कि देश में विमानन हलको तेजी बढ़ रही है। वे कहो कि उड़ान योजना जनता सारू हवाई सफर में किफायती बना दिनो है। वे आज आंध्र प्रदेश रा भोगपुरम माई बनाई जानुआ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रा उद्घाटन रा मौके बोल रहा है।

0: मोदी कहो कि साल 2014 में देश में 74 हवाई अड्डा हा जानी तादाद अब बेधर 166 वैकी है। वह कहो कि एनडीए रा राज में नाना शहरों ने जनताई हवाई सफर कर रही है।
1: एक समय था जब हवाई उड़ानें सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित थी। एनडीए सरकार में आज छोटे शहर के साधारण लोग भी फ्लाइट से आ जा रहे हैं। 12 इयर्स में सिर्फ एयरपोर्ट की संख्या ही नहीं बढ़ी है, हमारी उड़ान योजना के कारण आज गरीब परिवार के लोगों को भी जहाज में बैठने का अवसर मिल रहा है। इस योजना ने गरीब से गरीब को अपना सपना पूरा करने में मदद की। कुछ दिन पहले ही सरकार ने उड़ान योजना के दूसरे फेज की शुरुआत की। इस पर भी 29,000 करोड़ रुपीज खर्च किए जाएंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो काल नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान री वर्चुअल तरीका शुरुआत करण रो कार्यक्रम है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय रा माई भारत पोर्टल रा जरिए वो अभियान आखा देश में चलायो जावेला। 10,000 मोमबत्ती ठोणा न जोड़ता थका वो अभियान नशोकरण रा खिलाफ बड़ा संकल्प न मजबूत करेला। 100 सप्ताह रा ई अभियान रा दौरान हर दीतवार न पदयात्रा ध्यान सत्र सांस्कृतिक और खेल आयोजन सागे न्यारा न्यारा कार्यक्रम राखर नशो उन्मूलन रो संदेश दियो जावेला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहे है कि पर्यावरण में बचावा दी सगला दी भेड़ी जिम्मेदारी है जिनमें हर रहवासी री भागीदारी वे होनी चाहिए। वे आज उदयपुर में राज्य स्तर रा वन महोत्सव कार्यक्रम में बोल रहा है। श्री शर्मा कहो कि आवती पीढ़ियां सारू सुरक्षित और स्वच्छ पर्यावरण बनाए रखने बाबत सगला ने मिलकर कोशिश करनी वेला।
2: बस पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की थी, आज वो एक जन आंदोलन बन गया है। और आपके माध्यम से मैं राजस्थान की जनता को कहना चाहता हूँ कि वो एक पेड़ माँ के नाम अवश्य लगाएं, हमारी माँ की स्मृतियों को भी सजोएं, आने वाली प्रकृति आने वाले पीढ़ी को भी हम ये बताएं कि उनको हम फल भी दे करके जा रहे हैं, छाया भी दे करके जा रहे हैं और पर्यावरण को सुरक्षित करके भी जा रहे हैं।
0: मुख्यमंत्री पौधों रो पर कालका माता नर्सरी परिसर इन्हें शुरुआत की। ध्यान जोग है कि मिशन हरियाणा और राजस्थान का तेत ई चौमासा में 10 करोड़ पौधा रोपण तय करी चियो है। ई मिशन का तेत हाल ताई 20 करोड़ उम्बत्ता पौधा रोप दिया चिया है। अरावली री डूंगरिया में बचावन सारू 30,000 हेक्टेयर उम्बत्ता हल्का माए पौधा रोपया जावेला, जबकि उदयपुर प्रतापगढ़ सिरोही और बांसवाड़ा माए चंदन वन बनाया जावेला। प्रदेश में आज स्तनपान सप्ताह शुरू हुआ। इना तेत बच्चा ने मारो दूध पावन रबारा माए 7 अगस्त तक जाग जगाई जावेला। इस दौरान नू मायड़ा दूध पावन माए मायड़ा हरवाना परिवार वाला ने स्तनपान रा महत्व री जानकारी दी जावेला। इस सप्ताह रा दौरान अलवर रा मदर मिल्क बैंक माए वर्कशॉप सवाल जवाब री होड़ और रैली समेत न्यारा न्यारा कार्यक्रम रखा जा रहा है। प्रदेश में हिफाजत सागे मां बनबाऊ जुड़ी सेवाओं रो मुख्य सचिव वीर श्रीनिवास आज जायजो लीनो। वे आस वाले लुगाइयों ने टीम सर बेहतर इलाज सारू रेफरल परिवहन तंत्र ने मजबूत बनावन रा हुक्म दीना। मुख्य सचिव हिफाजत सागे जापो करावन और जननी एक्सप्रेस सेवा सारू एकदम साफ दिशा निर्देश समेत सर्कुलर जारी करने बाबत कहो। जयपुर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेडिकल कॉलेज रा प्रिंसिपल अस्पताल रा सुप्रिंटेंडेंट सीएमएचओ और दूजा अहलकार सागे बातचीत करता था कल मुख्य सचिव घनी जोखिम वाली आस वाली लुगाइया माए खून री कमी और हाइपर टेंशन जुड़ी एसओपी जारी करन रा हुक्म दीना। राज्य में कर चोरी और अपात्र कर लाभ के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान रा तहत वाणिज्यिक कर विभाग की ओर आज राजसमंद बाड़मेर प्रतापगढ़ जैसलमेर और जयपुर समेत कई जिलों में सर्वे री कार्रवाई करी जी। इस दौरान कई मामलों में कर कानून नहीं मानवा और टैक्स री कम जिम्मेदारी बतावन से री की गड़बड़ियां सामने आई। आम मामलों में कागजात री और जाँच करी जा रही है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहे हो। राज्यपाल हरिभाव बागड़े आज बीकानेर रास्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्व

0: का स्थापना दिवस समारोह में शामिल किया वह ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र रो उद्घाटन किया। इस मौके राज्यपाल कहो के ओ विश्वविद्यालय लारवा 40 साल में 28,000 विद्यार्थियों ने खेतीबाड़ी री सिखावण दीनी। श्री बागड़े कहो के विद्यार्थियों ने दिमागी तौर मजबूत बनाने आज रा भगत री सब मोटी जरूरत है।
1: राजस्थान में अभी जो नीट का निकाल लगा उसमें राजस्थान ने अच्छी प्रगति की, लेकिन इससे और भी करने की जरूरत है। और माध्यमिक स्कूल, उच्च माध्यमिक, हमारे जूनियर कॉलेज, यहाँ के जो छात्र छात्राएं परीक्षा देती है, अभ्यास करती है, उन्हीं के लिए उनकी बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए सभी शिक्षकों ने, अध्यापकों ने, यूनिवर्सिटी और स्कूल वालों ने कोशिश करना है।
0: इस मौके केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कहो के SKRAU ने इंडिया AI मिशन खेतीबाड़ी जुड़ियो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलन री मंजूरी देनी है। वो सेंटर खोलन सारू करीब 20 करोड़ रुपया रो खर्च आवेला। नीट UG काउंसलिंग 2026 में केंद्र सरकार और मेडिकल काउंसलिंग कमेटी एक दफा जावन और ऑनलाइन तरीकों कागजात रो सत्यापन करावन री नई व्यवस्था शुरू की है। इन तहत विद्यार्थी घर बैठे फ्रीज और फ्लॉट विकल्प ऑनलाइन तरीकों चुन सकेला। नीट UG काउंसलिंग के बारे में आज चिकित्सा शिक्षा आयुक्त बाबूलाल गोयल प्रदेश का सगड़ा मेडिकल और डेंटल कॉलेजों और नोडल अहलकार सागर मीटिंग की। वह कागजात रो ऑनलाइन सत्यापन ते मियाद में पूरा करण रा हुकम दीना। ऑल इंडिया कैटरर्स फेडरेशन रो राष्ट्रीय सम्मेलन जयपुर में राख्यो जा रो है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी इन रो उद्घाटन किनो। इस मौके वह एक प्रदर्शनी री शुरुआती कीनी। कार्यक्रम में देवनानी कहो कि राजस्थान का पारंपरिक व्यंजन अठरी पिछाण है और कैटरिंग उद्योग रा लोग इन देश दुनिया ताई पुगावन रो काम कर रहा है। वह कैटरिंग एंड मेहमान नवाजी जुड़िया लोगों स्वाद सागे साफ सफाई नई तकनीक और पर्यावरण ने बचावन माथा खास ध्यान देवन बाबत कहो। श्री देवरानी कहो कि प्लास्टिक कम काम लेवन और भोजन की बर्बादी रोकण सारो सगला में मिलर कोशिश करनी भैला। रणथंबोर टाइगर रिजर्व में बाघिन T127 दो बच्चा सागर नजर आई है। माणा खबर नवीस बतायो कि बाघिन रा बच्चा री हिफाजत सारो कैमरा ट्रैप और फील्ड पेट्रोलिंग रे जरिए लगातार निगरानी रखी जा रही है।
2: रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान से आज एक बार फिर खुशखबरी मिली है। बाघिन T127 दो शावकों के साथ जोन नंबर 7 में नजर आई है। बाघिन T127 लक्ष्मी T8 लाडली की बेटी है जो करीब 6 वर्ष की है तथा पहली बार मां बनी है। यह बाघिन जोन नंबर 6 और 7 में विचरण करती है। बाघिन के साथ नए शावक देखे जाने के बाद वन्य जीव प्रेमियों और पर्यटन व्यवसायियों में खुशी की लहर है। बाघिन के क्षेत्र में लगातार निगरानी और प्रभावी गश्त के निर्देश दिए गए हैं। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार,
0: सवाई माधोपुर। अरब खबर राष्ट्रमंडल खेलों। स्कॉटलैंड में ग्लासगो में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का खिलाड़ी भाला फेंक, तीन दफा कूद, जूडो और मुक्केबाजी री होना में तमगा जीतिया है। महिलाओं री मुक्केबाजी में प्रीति पवार और जैस्मीन लंबोरिया सोनारा, रजत चोपड़ा चांदीरो और यशवीर सिंह कंसा रो तमगो जीतियो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया समेत न्यारा न्यारा नेता देश रो माथो ऊंचो करण वाला आम खिलाड़ियों ने मेहनत और शानदार खेल री सराहना कीनी है। इस बीच भारत री मुक्केबाज और कोटा री बेटी अरुंधति चौधरी रो आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड री चेंटल रीडो मुकाबलो फैला। सोनारा 8, चांदीरा 15 और कांसारा 7 तमगा सागे पदक तालिका में भारत फिलहाल छठी ठौर माथे है। काम धंधा सारू काम ले जावन वाली रसोई गैस री टंकी रो मोल करीब 200 रुपया कम करती उचियो है। तेल कंपनियां रा ई फैसला रेस्तरां, होटल, ढाबा और खान पीन री चीजों रा कारोबारियों ने फायदो मिलेला। तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन रमजब गैस री टंकियां रो नो मोल आज लागू फेंक्यो है। वस्तु

0: जीएसटी मद में लाडला महीना 2,11,200 करोड़ रुपये बत्ते रकम भेड़ी करी ची। लाडला साल जुलाई महीना रा 1,83,065 करोड़ रुपये रा मुकाबले आ 15% बत्ती बढ़ोतरी है। माली साल 2026-27 सारू काल ताई 5,90,00,000 बत्ती आयकर रिटर्न दाखिल करी ची। इन सारू आयकर विभाग री ओरू सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए रिटर्न दाखिल करने वाला रो धन्यवाद करी चियो। प्रदेश रा कई हलका में आज मीह बरसियो। बांसवाड़ा, पाली और भीलवाड़ा में चोखो मीह वियो, जबकि भरतपुर और बाड़मेर में छाटो छिड़को फियो। आखिर में खास समाचार एक और फिर सुन ले रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो उड़ान योजना जनता सारू हवाई सफर किफायती बनायो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा उदयपुर और राज्य स्तर का वन महोत्सव की शुरुआत की। पर्यावरण बचावन न सगला ने भली जिम्मेदारी बतायो। राज्यपाल हरिभाव बागड़े विद्यार्थियों ने दिमागी तौर मजबूत बनावन माथे जोर दिनो। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल में भारत रा खिलाड़ियों रो चोखा खेल रो दर्शाओ। 30 तमगा सागे फिलहाल छठी ठौड़ माथे। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भियो। नमस्कार।
1: मेडिंगर 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलावारू चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। इसे हम आपके लिए आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, अब सूखे पड़े या कीड़े फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
2: मोबाइल से फसल कटाई तथा जोखिम का लाभ, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान संपादन
3: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपके लिए
2: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
3: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
2: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
4: किसान वाणी कार्यक्रम सुनवाला सगला श्रोताओं ने आशा धाबाई का घना घना राम राम सा, और प्रभु भाई आपने भी मारा घना घना राम राम।
5: बिल्कुल, आपने वो सुनवा वाला जितना भी अपना हितालो श्रोता है जगह दूर दराज गांव ढंडी में मैंने बैठ रेडियो सुने हैं, और आज को तो आपने विशेष कार्यक्रम है किसान वाणी, तो आप सगला हितालो ने घने मानसो थका भाई प्रभु दयाल वर्मा की तरफ से भी राम राम सा। देखो बिरखारो दौर चलन लाग रही है, और अस्यारे महीने जहाँ आप रोजना कोई ना कोई कार्यक्रम के माध्यम से बात रही अपना किसान भाई तक पूछती हुए कि भाई अच्छा टाइम का माए, तो एक तो आपने पानी है भी की अपन बचत करनी चाहिए।
4: बिल्कुल,
5: क्योंकि आपने जीवन को जल न है जो जीवन को आधार बताए गए है, और महापुरुष भी गए कि भाई तीन रतन है जगत में, दाना पानी और बोल, आंख आगे और क्या देखा खूब टटोल, यानी कि दाना है पानी है और बोल है इंसान रा, ए दुनिया का बड़ा जगह रतन है, कीमती वस्तुओं वह गवाई ने शामिल किया गया है, तो भाई सोच समझ रहा अपन शब्दों को इस्तेमाल भी सोच समझ रहा करना चाहिए।
4: बिल्कुल सही, बिल्कुल,
5: और अन है बिन भी अपन बचाना चाहिए, क्योंकि विश्व अपनी उधर पूर्ति हुए, और पानी को भी अपन बचत करनी चाहिए, क्योंकि पानी बचल लो तो अपना जीवन है जो

0: असलो पानी पर देखो अपनो पूरो जीवन को निर्माण या किस कारण जीवन की उत्पत्ति है जगी भी पानी से हुई ये वास्ते अपन बिरखा रो टेम है तो अपना जगह भूमिगत जल स्तर है बिन सोले वगे वास्ते बरसात रो पानी अपन या परंपरागत अपनी नाडी है बावड़ी है बाको अपन संरक्षण टूटड़ा टूटड़ा पड़े है तो बन अपन थोड़ा सा ठीक कर
1: और प्रभु भाई अपना काश्तकार भाई ई बात में बहुत अच्छी तरह समझे छे भाई सूखा प्रदेश में भी रहे छे राजस्थान छे पानी की कद कमी हो जावे कद कोई अतो पतो को ना ई तई ई मेहतर ने तो वे अच्छी तरह ही समझे छे और अब देखो आगे कार्यक्रम किसान वाणी ना आगे बढ़ावा ना आपा
0: और आगे बढ़ाता था अपने किसान भाइयों तक जकी जानकारी है मेरे वास्ते डॉक्टर महेश कुमार शर्मा जी अपने स्टूडियो में है तो क्यों ने आशा भाई थी बातचीत बसु करोड़ किसान भाइयों की आज को जो विषय है अपनों किसानों की आमदनी बढ़ावा के वास्ते फल और सब्जियों को प्रसंस्करण ई विषय पर जानकारी आप डॉक्टर साहब सुन लियो
1: बिल्कुल बिल्कुल सर किसान वाणी कार्यक्रम सुन वाला सगला श्रोतावा ने आशा धाबाई का घना घना राम राम सा श्रोतावा आज अपने साथ स्टूडियो में छे महेश के शर्मा आप डीन कृषि महाविद्यालय कोटपुतली सबसे पहले तो कार्यक्रम में आपको खूब खूब स्वागत छे शर्मा साहब राम राम सा
2: राम राम सा
1: और आज आप यहाँ से बात करेला किसाना की आमदनी बढ़ावा के लिए फल सब्जियों का प्रसंस्करण का बारे में शर्मा साहब यह बताओ सा कि जहाँ की आज को आपनो विषय छे कि किसाना की आमदनी बढ़ावा के लिए वहाँ की आर्थिक स्थिति ने मजबूत करवा करती है अगर आप फल और सब्जियों को प्रसंस्करण करा पर इन्हें समझ वाली यह बात छे कि प्रसंस्करण जो हुआ छे वो काई हुआ छे
2: राम राम किसान भाइयों देखो किसान भाइयों ये प्रसंस्करण मतलब छे अपना जो बड़का आपने कहावत कहा करे छे कि आम का आम और गुठली का दाम तो ई का मान काई छे आपा आजकल देखो किसान भाई कितनी मेहनत से खेती करे और खेती के बाद में आपा जे मान लो 100 किलो अपना टमाटर पैदा करे तो लगभग 30 किलो टमाटर बेकार जाए सड़ गल जाए जब सीजन हो तो बहुत प्रोडक्शन होया करे और वो प्रोडक्शन आपने भी के मायने करीब करीब मतलब 30-40% खराब हो जाए तो इन्हें बचावाट है ये जो वेस्टेज है एक तो एनवायरमेंट भी खराब हो किसान भाई ने इनकम भी कम मिले और दूसरा कंज्यूमर ने भी अच्छी क्वालिटी को मिले तो फूड प्रोसेसिंग से मतलब से किसान भाइयों कि जो भी खेती से आपने फल एवं सब्जियां का जो प्रोडक्ट खावा मिले खाना का रूप में बदल दो या खाना का एक रूप में दूसरा रूप में बदल खाबो तो फूड प्रोसेसिंग में कई बातें होया करे जी आप फूड प्रोसेसिंग में वैल्यू एड कर दिया मतलब जो बाजार मूल्य है उन्हें बढ़ा दिया जी हाँ बार आप आम की बात करा
1: जी।
2: तो आम जी सीजन में आपने मिले 50 रुपए किलो मिल जाए तो बिल्कुल पल्प निकाल और अगर आप सर्दियों के मायने जो आपने फरवरी मार्च अप्रैल महीने में बेचा तो वो आप 200 रुपए किलो तक भी पल्प बिके तो इस हिसाब से आप इन्हें प्रोसेसिंग करे और ज्यादा आमदनी कमा सका
1: जी यानी कहवा को मतलब यही काश्तकार भाई कि सीजन का टाइम जो चीज सस्ती छे उना आप ले अगर ऑफ सीजन में जबकि वा पैदा कौन हो उ टाइम बाजार में अगर बेचोला तो आपने उ चीज को अच्छो दाम मिल जावलो ई के लिए आपने वहां सामानों को फलों या सब्जी वहां की प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी ताकि वहां की जो उम्र छे वा बढ़ जावे वासा बहुत ही बढ़िया तरीको छे किसानों के लिए कि प्रोसेसिंग कर वे आपको जो सामान छे उन्हें उच्च दरों पर बेच सके छे और आपकी आमदनी में बढ़ा सके छे अब आपसे यह पूछबो सामना सा कि जब प्रसंस्करण की आप बात कर रहे छे कि फल और सब्जियों का किसान भाई प्रसंस्करण कर कहीं आपकी आमदनी में बढ़ा सके छे तो प्रसंस्करण का तरीका जो छे वे कौन कौन सा छे सामान्य तरीका से किसान भाई की तरीका से फल और सब्जियों को प्रसंस्करण कर सके छे
2: देखो किसान भाई जो आप सामान्य तरीका फूड प्रोसेसिंग की बात करना प्रसंस्करण की बात करना पर्टिकुलरली फलार सब्जियां की तो भी मैं आप गर्म कर कुछ हल्का गर्म कर भी उसमें आप जो फल एवं सब्जियां की सतह पर माइक्रोऑर्गेनिज्म्स जो सूक्ष्म जीव पाए जाए जो फलाने खराब करे भी उसमें बचा सका डिब्बाबंदी जिन्हें आप कैनिंग कहा डिब्बाबंदी में आप कहें करा कि जो सब्जियां की डिब्बाबंदी करा तो वह आप बैन सोल्यूशन में नमक का 2% घोल में करा और जो फला की डिब्बा बंदी करा कैनिंग करा बी के मायने आप जो शुगर सिरप चीनी को जो चाशनी हुए बी के मायने किया करा जूस और जूस निकाल भी आप प्रोसेसिंग कर सका और जूस में आजकल तो फला को जूस निकाल जूस में ऐसा आप फ्रीज में रखे डीप फ्रीज कर सका दूसरा जूस में आप कंसंट्रेट कर सका बिल्कुल पानी में इवेपोरेट कर गर्म कर वाष्प के बिना उड़ा और बिना आप गाढ़ो कर सका जिन पानी मिला बाद में पिला सका इसके अलावा भी पाउडर फॉर्म में जूस में पाउडर का रूप में बना सका है जिस को बोलू आयतन कम हो जाए बिना आप मार्केट में बेचो आसानी रहे जी हाँ आपने एक गिलास बनाओ तो आपने 5 ग्राम पाउडर बहुत छे तो यहाँ पाउडर फॉर्म में भी जूस में आप बना सका बिना पानी उडार इसके अलावा फर्मेंटेशन आप देखो अचार बनाओ कैरी को अचार

0: मंदा को अचार बनावा आता, लसुड़ा को अचार बनावा, ये सब अचार फर्मेंटेशन द्वारा बनाए जाए और फर्मेंटेशन के बाद में बिना आता तेल सुप्रजोर करा। एक अलावा जमना फ्रीजिंग जी पल्प, आम को पल्प निकाल लिया बिना पा फ्रीज लो टेम्परेचर फ्रीज कर दिया तो जम जाए, और फिर जब ये कसर एप्पल सीताफल को अपना पल्प में निकाल फ्रीजिंग टेम्परेचर में फ्रीज कर लिया तो वो बिल्कुल ठोस बन जाए, और जे अपन खाओ जब बिने तो बिने बाहर निकाल कमरा का टेम्परेचर पर रख दो तो वो मेल्ट हो जा लो और फिर अपन बिने खा सका। इसके अलावा संशोधित वातावरण पैकेजिंग, आजकल ये भी खूब चाल रही है कि फलाने सब्जियां ने जो एनवायरमेंट चाहे जी मॉडिफाइड एटमोस्फेयर पैकेजिंग को भी सिस्टम चाल गो जी के मायने जी ऑक्सीजन की अपना कम कर दिया कंसंट्रेशन CO2 ज्यादा तो वही के मायने बिकी जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो श्वसन क्रिया कम हो जाए ली और खराब होने में टाइम लाग लो। पास्टराइजेशन, पास्टराइजेशन आप कहें कराएं कि टेम्परेचर दे स्टीम दे और भी को जो माइक्रोब्स पाए जाए भी सत्ता पर फल एवं सब्जियां पर बाल आप खत्म कर दिया जिसमें भी की सेल्फ लाइफ बढ़ जाए। इसके अलावा भी कुछ और नई नई तकनीक है जाके द्वारा किसान भाई फल एवं सब्जियां ने प्रोसेस कर और संरक्षित कर सके।
1: शर्मा साहब आपा किसाना का आय बढ़ावा के लिए फल और सब्जियां का प्रसंस्करण की बात कर रहे थे और आप बहुत ही विस्तार से बता भी रहे थे, प्रोसेसिंग को भी आप तरीको बताया कि की तरह से प्रोसेसिंग करी जावे जाए। अब आपसे यह जान पूछावे ना कि प्रसंस्करण का जो मोटा मोटा फायदा छे या आपा यह सोच लेवा की उद्देश्य ने ले प्रसंस्करण करो जावे और मुख्य रूप से इनका फायदा काश्तकार भाई ने की तरीका से मिले चाहे किसान छोटो हो या फिर बड़ो।
0: देखो किसान भाइयों फला सब्जियां का प्रसंस्करण सबसे बड़ा फायदा होता है कि आप जो उत्पादन आप करे वो पूरे को पूरे उत्पादन आप सेफ रहे और आपने उसमें ज्यादा पीछा मिले आप बाजार में भेज दिया, पहली बात तो यह होगी। दूसरी बात जब बाजार में आपने भाव कम रहे हैं जो टमाटर खूब पैदा होगा तो भाव कई बार देखा कि अपन तोड़ा को भाव कम मिले तो भी टमाटर ने आप प्रोसेसिंग कर भी चाहे पल्प बना रख लिया है फ्रीजिंग कर जिन्हें आप फिर जब टमाटर 50 रुपए किलो 100 रुपए किलो होगा तो बेच दिया अं भी को सॉस बना सका आप टमाटर केचप बना सका ये भी का वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है जी उत्पाद का आप वैल्यू मतलब की प्राइस वैल्यू बढ़ा दिया
1: कीमत
0: बढ़ा दिया ई तरह से आप माने संरक्षण कर सका। तीसरी बात जो आवे आप उत्पादन जो भी हो तो वो आपने अगर बिना आप सड़वा के वहां से बचा लिया तो आप वातावरण भी को शुद्ध रह लो। और चौथी बात है जो आप मतलब अच्छी क्वालिटी संरक्षण कर कंज्यूमर ने बेचाना तो कंज्यूमर का स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे थे और कंज्यूमर की भी की एक्सेप्टेबिलिटी मतलब उन्हें खरीद बाय की इच्छा जो रहते वह भी ज्यादा रह ली। और जो सबसे बड़े किसान भाई फायदा हो लो वो हो लो ई के माया ने आपने किसान माया ने इनकम जो है क्योंकि आज को टाइम छे आर्थिक युग छे बिना पैसा काम चालू हो तो किसान माया ने आमदनी भी ज्यादा होली करीब करीब डबल हो जाएगी तो ऐसा सब चीजा देख रही आप प्रोसेसिंग को काम करा और किसान भाइयों की आमदनी बढ़ावा के बारे में सोचा।
1: शर्मा साहब और आप बात कर रहे थे शुरुआत में तो आप एक शब्द को उपयोग कर रहे थे कि कैनिंग, तो कैनिंग की जब बात करा चा या डिब्बा बंदी जी ने आप समझ सका चा सरल शब्द में उनके बारे में बताओ सा कि जो काश्तकार भाया छे चाहे वो छोटो किसान हुए बड़ो किसान हुए वो की तरीके से इन्हें कर सके चे काई की विधि चे कितो पीसो लागे चे कितो समय लागे चे विस्तार से समझाओ सा।
0: देखो किसान भाई जो कैनिंग छे डिब्बा बंदी छे अब जी आप बात करा सब्जियां में कैनिंग की तो सब्जियां में कैनिंग जनरली मटर में हुआ करे, मटर का पहले आप छिलका ने छिला ला और फिर दाना निकालना माने और बाद दाना निकाल अपना भी ने अच्छी तरह से धो लेना ग्रेडिंग कर लेना साफ सफाई कर लेना और फिर उनके बाद में माने थोड़ा हीटिंग थोड़ा गुनगुना पानी में और उनके बाद में आप माने डिब्बा बंदी करा ब्राइन सोल्यूशन में, ब्राइन सोल्यूशन और नमक को घोल 2% नमक का घोल जो माने मान आप डिब्बा बंदी कर और फिर अच्छी तरह पैकिंग कर दिया और पैकिंग कर और फिर माने आप अच्छी तरह जीवाणु रहित कर और अच्छी तरह मतलब कोल्ड स्टोरेज में रख देवा और जब जरूरत है मार्केट में या मटर को सीजन चले गए सर्दियों के बाद में तो गर्मियों के मायने आप मार्केट में निकलना और अच्छी रेट पर किसान भाई माने बेच सके। यही बात करा फला की कैनिंग की अगर जी हाँ आम की कैनिंग करा आप तो आम में कहीं करा कि आम का छिलका ने पहले धोधार अच्छी तरह अच्छी क्वालिटी का आम आप सिलेक्ट करा और फिर आम जो सिलेक्ट कर लिया मैंने छील और फिर बाकी जो पल्प छे बिने टुकड़ा में काट और अच्छी तरह मतलब उन्हें थोड़ा सो हल्को सो भाप दे और फिर आप उन्हें चीनी का घोल के अंदर

0: और डिब्बा के अंदर डाल और अच्छी तरह बंद कर कैनिंग और पास्टराइज कर और फिर कोल्ड स्टोरेज में रखा। और जब आम को खवा को सीजन फ्रेश आम खवा को सीजन चली जाए सर्दियां में उन टाइम आप उन्हें खवा के काम में ले सका।
1: यानी खवा को मतलब यही चे काश्त कर रहे हैं कि साल भर सब्जियां और फल की उपलब्धता के लिए और ऑफ सीजन में जी टाइम उत्पादन कोनो हुए उ टाइम अच्छी आमदनी लेबा के लिए ये दोनों तरीका बहुत बढ़िया छे कि आप प्रसंस्करण कर और कैनिंग कर भी फल और सब्जियां ने रख सको और आपकी आमदनी बढ़ा सको। अगर आप निर्जलीकरण की भी बात करें चाहे तो आपसे विस्तार से जानबो चावला काश्तकार भाई ने बताओ सा कि निर्जलीकरण से काई मतलब छे और इका काई फायदा छे और काई तरीका से करी जाओ।
0: जी हां, भथु हो छो पालर हो छो आज हमने धूप में सुखा दिया करे जा और फिर धूप में सुकार जब ये कुछ सीजन को अंदर जो पालक को बथवा को तो बीकी सब्जी बनाया करे जा। पर आजकल वो धूप में सुकावा में जो सबसे बड़ी दिक्कत छे बीके मायन का है कि बीको कलर फेड हो जाए छे। अगर डायरेक्ट सनलाइट में सूर्य की धूप में ये हरी पत्तीदार सब्जियां सुखावला तो आप देखा होगा किसान भाई की सब्जियां को जो रंग छे वो हरे हो छे। और अगर मैंने डायरेक्ट आप सूर्य की धूप में सुखा देना तो वो रंग उड़ जाए छे और हल्को पड़ जाए जो देख में अच्छो बन लागे। आजकल जो छे सोलर ड्रायर आ रहा जो सूर्य की उष्मा में एब्जॉर्ब कर रहे हैं, आजकल तो लाइट भी चला रहे हैं सोलर सूट, तो सोलर ड्रायर आवे बाग माय ना पाए सुखा सका हरी पत्तीदार सब्जियां ने और बने सुखा। और फिर जब बाग ऑफ सीजन है या महंगी छे उन टाइम बने आप उपयोग में ले सका। जी करेलो छे, करेलो अभी आपने खूब पैदा हो रहे हो, अब ई टाइम ई करेला ने आप थोड़ा अच्छी तरह साफ सुथरो कर छील और नमक का घोल में थोड़ा धो और फिर भी ना आप अगर सोलर ड्रायर में सुखा लिया तो बिने ऑफ सीजन में आप बेच अच्छा मुनाफा कमा सकते। आपने हरी पत्तीदार सब्जियां में चाहे वो भथु हो चाहे चौलाई हो आपने चाहे पालक हो आ समय भी आप सोलर ड्रायर में सुखा और ऑफ सीजन में या जब भी बाकी रेट बाजार में ताजा पत्तीदार सब्जियां रेट ज्यादा हो तो आप बाने बेच अच्छो मुनाफो कमा सका। केवल सीधो सीधो एक ही सिस्टम है कि जो भी खावा की चीज है भी में जो पानी रहे या पत्तीदार सब्जियां या जो भी सब्जियां भावे 80 सौ ले 90 सौ 95% तक पानी रहे, पत्तीदार सब्जियां में करा तो 90 सौ 95% तक पानी रहे तो भी पानी ने उड़ावो बस। और जो भी मान ठोस पदार्थ है वो ही आपने बच्चे लो पानी बिल्कुल उड़ा जाला जिसमें वो संरक्षित रह सके लंबा टाइम
1: तक, मॉइस्चर और नमी जो भी उन्हें खत्म करनी
0: उन्हें खत्म करनी। इसके अलावा जो भी जो फल का बात करा फल के जो छिलको उतरो अब जो नींबू में बात करा नींबू को छिलको उतरो तो वो छिलका का पीसा है जी हाँ। किसान भाई के दर्द आम का आम गुठली का दाम तो मैं यही बात करूंगा जी आम को पल्प भी आपने निकाल लिया
1: जी।
0: आम की गुठली से स्टार्स निकाल लिया और वो स्टार्स जो वो आपने बहुत इंडस्ट्रीज में काम आया आजकल तो आई नींबू का मायने नींबू की जो इवन छिलको छे बीसों भी बीम तेल निकले बीम सुगंध निकले बीम रंग भी निकले नेचुरल तो ऐसे सब चीजा सो और मुनाफा है। जूस को तो पीसो मिल ही मिल गो और उनके अलावा जो भी का बाय प्रोडक्ट था जो पहले किसान भाई यहीं फेंक देता वो बीसों भी आपने आमदनी मिल रही है आजकल तो न तो आप लोग एनवायरमेंट खराब है बीसू वातावरण खराब हो पॉल्यूशन कौन है और पीसा भी मिला है डबल मुनाफा हो किसानों ने तो ये सब चीजें कर रहा था आजकल मतलब ज्यादा ज्यादा आमदनी कमा सका। जी नींबू का बीज का मौसमी को बीज बिक माने तेल पाए जाए थे तो बी को भी तेल निकाल और आजकल मार्केट में बेचो जाए वो नेचुरल तेल तो बहुत ही महंगा जाकर जो सुगंध हो जाए बहुत अच्छी हो जाए क्योंकि आजकल सिंथेटिक ज्यादातर सुगंध रही है मार्केट में आ रही है नेचुरल तो बहुत महंगी बिके तो ये हिसाब से अगर किसान भाई काम कर रहा तो बहुत ज्यादा आमदनी हुए कमा सकते।
1: यानी कहवा को मतलब यही है कि थोड़ी सी आपने तकनीक जाननी चाहिए थोड़ी सी आपने जानकारी रखनी चाहिए फिर हर एक चीज की वैल्यू चाहे हर एक चीज की कीमत चाहे कोई भी चीज बेकार को ना चाहे बीज हो छिलको हो अंदर को पल्प हो या कोई भी चीज हो वैसा बहुत ही बढ़िया तरीका से आप जानकारी दे रहे। श्रोताओं महेश के शर्मा डीन कृषि महाविद्यालय कोटपुतली आपने साथ से और आज आपने बता रहे थे किसानों की आमदनी बढ़ावा के लिए फल और सब्जियां का प्रसंस्करण का बारे में। शर्मा साहब एक और जो तकनीक चे उको नाम काफी सुनवा में आवे चे स्पंदित विद्युत प्रौद्योगिकी तो यो काई चे काई तरीको चे इ तकनीक का बारे में भी माका जो काश्तकार भैया चे वाना विस्तार से बताओ ताकि वे जाने इन्हें काम में लेवे और आपकी जी की आमदनी चे उन्हें बढ़ा पावे।
0: स्पंदित विद्युत क्षेत्र प्रौद्योगिकी के बारे में किसान भाई एक नई तकनीक चे इनमें काई कराए पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करे टेक्नोलॉजी एक है जिसमें हल्की फूड प्रिवेशन तकनीक है और लिक्विड प्रोडक्ट जो जूस हो चे है दूध हो चे या जो फला की पूरी जो पल्प हो चे भी वो नुकसानदायक बैक्टीरिया ने खत्म करवा एक छोटी सी बिजली की पल्स मतलब बिजली को भी वो तरण दिया जाए पल्स दिया जाए भी को इस्तेमाल हो चे और उनकी सेल्फ लाइन

0: रहे छ क्योंकि वो जो खराब करने वाला जो बैक्टीरिया है फंगस भी छ वह खत्म हो जाए उसके सु साथ ही उनमें ताजापन में कम से कम असर डाले छ और जो या स्पंदित विद्युत क्षेत्र प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी है को इस्तेमाल और टेस्ट अलग अलग मकसद से किया जाए जहाँ जूस में प्रिजर्व करवा हटे या फलान को पानी निकाल बा की बेहतर बनावा हटे सुखावा पहली ट्रीटमेंट के तौर पर भी इन्हें यूज किया जाए या बहुत अच्छी तकनीक से नई तकनीक।
1: शर्मा साहब आप बात कर रहे हैं बार फल और सब्जियां का बारे में जो काश्तकार बयां फलों का बगीचा लगावे छे वहां से आमदनी पावे छे वहां के लिए आपसे पूछना चाहूंगी कि जो अमरूद का प्रसंस्कृत उत्पाद छे वे कशा कशा छे और की तरीका से वहां से और अच्छी वैल्यू यानी कीमत ली जा सके छे।
0: देव किसान भाई अमरूद में जहाँ पहले तो आप खावा चाहो ताजा फल नहीं खाया जा है सीधे अमरूद में खाया जा
1: बिल्कुल
0: पर आजकल अमरूद बहुत पैदा हो रहे थे और देश दुनिया के दूसरी जगह भी आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं तो अमरूद में ताजा तो खा ही सके टेबल पर्पज के रूप में तो खूब पैदा हो रही थे तो आपने बिल्कुल प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन भी करना
1: चाहिए
0: तो अमरूद का गुदाना आप फ्रीजिंग लो टेम्परेचर पर फ्रीज कर रख सका और जब ऑक्सीजन हो तो बिना आपा जो रूम टेम्परेचर भी निकाल रहे आपा रख दिया तो वो खावा लायक बन जाए। दूसरा आजकल आप देख रहे हो ना जूस भी पी रहे जो अमरूद को बहुत अच्छे लगे टेस्ट को है शादी गाँव में लोग आजकल दे जाते हैं तो अमरूद को आपा मशीनों से जूस निकाल और बिना कंडेंस कर लिया थोड़ा पानी उड़ा दिया और कंडेंस कर और फिर बिना लो टेम्परेचर पर कैन डिब्बा में बंद कर और रखकर लो टेम्परेचर पर रखा जिससे वो खराब कौन हो और जब जरूरत हो तो बिना आपा मार्केट में बेच और अच्छा पैसा कमा सका। इसके अलावा आप आजकल देखो कि भी को लेदर गुआवा लेदर बन रहा है गुआवा लेदर का हो जाए कि भी के मायने गुआवा को जो पल्प है बिना थोड़ा मॉइस्चर ने सुखा और प्रिजर्व कर लिया करे और फिर जब भी जरूरत हो उन्हें आप अमरूद का पल्प की या मतलब ठोस भी को आप खा सके या बर्फी हो जाए बिना खा सका तो ये कई अमरूद का प्रोडक्ट आजकल मार्केट में आ रहा है आप माने बना सके। अमरूद
1: अब जो नींबू और नींबू वर्गीय फल हो वन की तरह से प्रसंस्कृत करे और कई कई उत्पाद नया बन प्रसंस्करण के बाद बाजार में आ रहे थे जाकि वैल्यू एडिशन बहुत ज्यादा है और काश्तकार भाई ने जागरूकता रखनी चाहिए नई तकनीक ने अपनानी चाहिए और यहाँ सब्जियां ने और फल ने प्रसंस्कृत करनी चाहिए।
0: नींबू नींबू तो देखो किसान भाई आजकल आप देखो 200 रुपए किलो तक भी बिके आजकल सस्ते हो मतलब गर्मी के टाइम तो 200 रुपए किलो तक
1: बिल्कुल
0: तो नींबू तो प्रसंस्कृत करवा को सबसे इम्पोर्टेंट फल है। अभी मैं नींबू का मायने कहें करा नींबू का रस ना आप प्रसंस्कृत कर सका और इको ड्रिंक्स बना सका जूस बना सका नींबू का लेमन जेस्ट नींबू को बाहरी छिलका में एसेंशियल ऑयल हो तो बीच में आप तेज खुशबूदार स्वाद दे वालो तेल निकाल सका दूसरों जूस को पाउडर बना सका नींबू का जूस को भी अगेन पूरा पानी ना आप मशीनों से ऑपरेट कर डाला सुखा डाला और फिर भी आप पाउडर का फॉर्म में बना लेला और जब भी अपन जरूरत हो तो पाउडर में पानी मिलाया आप पी सका है जो आपने तेल दे रहे थे आपने सुगंध दे रहे थे आपने कलर दे रहे थे नेचुरल तो ये किसान भाई आटे नींबू तो एक वरदान से प्रकृति को और ये बहुत ही अच्छा आमदनी को साधन से किसान भाई की खेती कर और साथ ही साथ किसान भाइयों ये भी एक ध्यान दवाई बात है कि आजकल जो सरकार आज अपने चाहे वो केंद्र सरकार चाहे राज्य सरकार जो ये सब का अगर एफपीओ बना लेना फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना लेना या खुद फार्मर भी इंडोर फार्मर भी कर सके तो माने ये जो प्रसंस्करण उद्योग लगे बाटे फल एवं सब्जियां का सरकार एक सहायता दे रही सरकारी सहायता मिल रही है तो सरकार भी अच्छा हो कि हमारा किसान भाइयों की आमदनी ज्यादा से ज्यादा बढ़े और माने ज्यादा से ज्यादा हेल्प करा और बाकी प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा मतलब सेफ रहे जो कितनी मेहनत से दिन रात मेहनत से पैदा करें और कंज्यूमर ने भी अच्छी से अच्छी क्वालिटी मिले खबर।
1: शर्मा साहब बहुत ही विस्तार से हर एक चीज ना आप काश्तकार भाई ने बता रहे हो अब जब आपने बातचीत समाप्ति की ओर से तो एक और सवाल मन में आ रहे थे वो आपसे जानना चाहूंगा कि फल और सब्जियों का प्रसंस्करण के बारे में आप इतनी देर से बात कर ही रहे थे काफी सारा फायदा तरीका आप बताया भी अब कहीं कोई नुकसान भी चाहिए या कहीं सावचेती बरतनी चाहिए या भी बताओ।
0: देखो किसान भाई हर चीज आप कहीं भी काम करा लाभ भी हो चाहे तो भी का नुकसान भी हो जाए
1: बिल्कुल
0: जी आप खाणो ही खाणो अगर आपने जितनी भूख से उतना खाना ला तो वो फायदे है
1: बिल्कुल
0: और ज्यादा खा लेना जी अभी ब्याह शादी में गया अगर मिठाई उठाई थोड़ी ज्यादा खा लेना तो वो नुकसान भी कर जाए
1: जी।
0: तो ये आपने फल एवं सब्जियों को प्रसंस्करण भी दोनों चाहिए में भी लाभ तो बहुत ज्यादा चाहिए चाहे पर कुछ हानि भी चाहिए लाभ तो आप बात कर ही चुके किसाना ने इनकम अच्छी मिल ली है पॉल्यूशन एटमोसफेयर को जितने उत्पादन है वो पूरे पूरे कंज्यूमर ने मिल लू अच्छी क्वालिटी मिल ली कंज्यूमर ने ये सब खावा ने सब तो फायदा है आमदनी भी किसान भाइयों ने खूब मिल ली पर कुछ नुकसान भी है जी आप बात करें कि कैनिंग सब्जियां कैनिंग आप करा ब्राइन सोल्यूशन में

0: नमक का घोल 2% कम। तो बी का मान क्या है कि सोडियम नमक मतलब ज्यादा रहते, सोडियम ज्यादा रहते तो वो आपने नमक थोड़ा खावा ज्यादा चल जाए वो आपने स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हुआ। मतलब नुकसान इतना ज्यादा कौन है, जितने नुकसान आपने किसान भाई ने बी की मेहनत को रिटर्न में मिले, कंज्यूमर अच्छी क्वालिटी में मिले और वातावरण ने भी दूषित करे अगर फल सब्जी सड़ जाए तो नुकसान तो बहुत ही नेगलिजिबल है। बिना आप थोड़ी सावधानी रखकर जिया अपना कैनिंग सू टुकड़ा फल का जब निकाल खाए तो बिना आप थोड़ा धोले साफ कर लें जिसमें की बुआ जो चीनी की चास हट जाए। सब्जियां ने जो नमक का सिरप में आप डिब्बाबंदी करा तो जब भी यूज लिया तो बिना थोड़ा अच्छी तरह धो लिया जिसमें की जो ज्यादा नमक है वो निकल जाए। तो थोड़ी बहुत सावधानी रखकर आप जो फल एवं सब्जा बड़ा नुकसान बच सका आराम से।
1: काश्तकार भाया, किसानों की आय बढ़ाने के लिए फल और सब्जियों का प्रसंस्करण इनके बारे में बहुत ही बढ़िया विस्तार से बताया महेश के शर्मा और डीन कृषि महाविद्यालय कोटपुतली। आज आपने स्टूडियो आया और आपने जानकारी दिया, इन तय आपको खूब खूब धन्यवाद सर।
2: अरे अरे अरे क्या कर रहा है
3: इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचा। देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी। अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गो से कैसे फसल करना है। शुद्धता पहली वाली बात कहा,
4: पर हम तो सुन ही डाले
3: सब नहीं। आज भी लाखों छात्रों के साथ परंपरागत विधि से फसल उगा रहे, खर्चा कम और वो बची की बची बेहतर पा
4: सच
3: बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, रूप में बात समेत नहीं किए हैं।
4: ठीक है भाई, मैं भी आज तक खेती शुरू करूंगा।
5: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
6: जी
7: हाँ सर बहन, कार्यक्रम का मायने अब अपन थोड़ा सा संगीत की तरफ चला और राजस्थान की मिट्टी सी एक लोक रचना है जो कि भाई लोगों तक पुगती करवा।
6: बिल्कुल सर।

0: प्रभु भाई थोड़ो सो गीत आज आपा कम सुना पाया चा उनके लिए माफी चाहवा चा
1: बिल्कुल माफी चाहवा लेकिन देखो एक महीने मौसम की बात हो रही है बिजली चमकवा की बात हो रही है तो मौसम की क्यों ना थोड़ी सी बात कर ले तो देखो आज आप जयपुर के अगर तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 33 डिग्री ले 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रिबा को है और न्यूनतम की अगर आप बात करें तो 26-27 डिग्री सेंटीग्रेड और आसमान का मन का बादल है वे छाया रही सिर्फ खट्टे खट्टे हल्की सी बारिश है और बिजली चमक की पूरी पूरी संभावना है।
0: और अब स्टूडियो की गाड़ी कह रही है कि आज को जी को कार्यक्रम चाहे किसान वाणी उनको

0: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
1: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
0: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
1: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसभा केंद्र में जाएं
0: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन को सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मैं दूंगे 215.5 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। संध्या के 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्रामीण जगत। आज कार्यक्रम में आप सुनेंगे फरमाइशी पत्रों व ईमेल पर आधारित लोकगीतों का कार्यक्रम मुझे गांव गुवाड़।

ग्रामीण जगत रो विशेष कार्यक्रम गुंजे गांव गवार सुनला सकला ग्रामीण भाई ने और बहना ने सत्यनारायण शर्मा रा घना घना राम राम। और आज रे दिन शनिवार रा विशेष उड़ीक रवा सकले भाई बहना ने कि आज रे दिन यहाँ सुनावा मन पसंद रा लोकगीत। हमेशा आप बातें करा चौपाल माते बोलावा खेती री पशुपालन की बात करा, पर कई दिन यहाँ है कि अपन थोड़ो क्या करे कि रिलैक्स भी रहना चाहिए। जब भी सारू का ही है कि चौखा चौके गीत सुना तो वह अपने इनमें सहायता करे। तो आज देखो पहले गीत ले रहे हैं सीमा मिश्रा और गौरव जैन गैडो और ये गीत में बड़े चाव सुन सुनना चाहे गोविंदपुरा सीकर सु संगीता कंवर तुषार सिंह रिंकी शेखावत कुड़ी सेक्टर 5 जोधपुर सु रमेश चंद्र चौहान मोहिनी चौहान कल्पित बेबी गर्वी और हिमांश भोपालगढ़ राजस्थान सु धर्मेंद्र छिंपा कपिल छिंपा ईशान पूजा पड़ियार और कमला कॉलोनी बीकानेर सु एडवोकेट सुभाष खत्री। तो यहाँ सागे आप भी वो मीठो शोक लोकगीत सुना सा

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

पार्टी मोमा सर रायडो है और एक गीतर लेने बड़े चाव सो सोनो चावसा रिंगनी छत्तीसगढ़ सो दिनेश वर्मा करुणा वर्मा नेपा नगर मध्य प्रदेश को सुदर्शन सा पलवी सा प्रखर सा नीति सा सुरभी सा मंगलाबेन सा राजेंद्र सा मेरठ कैंसू दिग्दर्शन और कविता गोड़ एक और पानी मखन आईडिया सा मालियान सरदना मेरठ सु अनिल जैन संयम जैन मुस्कान जैन और एक मेल आईडिया सा एकता कॉलोनी कांगड़ा सु सीताराम कांगड़ा बबीता निखिल कांगड़ा और तनवी तनवी तो देखो यहाँ सागे आपा भी एक मीठो सो लोकगीत बड़े चाव सु सुना सा।

0: यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।
1: जलवायु और पानी के भीतर जीवन, यह यूनेस्को का संदेश है। महासागर पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करते हैं, लेकिन आज वो गर्मी, अम्लीकरण और प्रदूषण जैसे बड़े संकटों का सामना कर रहे हैं। कोरल रीफ, मैनग्रोव और समुद्री घास जैसे महत्वपूर्ण पर्यावरण तेजी से नष्ट हो रहे हैं, लेकिन महासागर, हवा और लहरों से स्वच्छ ऊर्जा, स्वस्थ मछली पकड़ने के जरिए और समुद्री जीवन के लिए संरक्षित क्षेत्र देकर जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद भी करते हैं। इसलिए जलवायु को स्थिर और पर्यावरण को स्वस्थ बनाए रखने के लिए महासागर की रक्षा करना बहुत जरूरी है। क्या आप जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ ने कुछ ही दशकों में लगभग 50% कोरल खो दिए हैं।
2: कार्यक्रम में आगे बढ़ावा, अगला एक मीठो शोक लोकगीत सरिता गोस्वामी रे आवाज में, मोरिया आछो बोलियो रे ढलती रात ने सुना, और एक गीत ने बड़े चाव से सुनना चाहे सा हनुमानगढ़ टाउन से रजक मोहम्मद, इकबाल बेगम, समीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान, जिशन खान, व्यास कॉलोनी बिकाने से डॉक्टर अशोक कुमार साई, संतोष साई, राश्री गौरव साई, और एक और मेल आयोड मखन है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, खोखरा वाले श्री गंगानगर से मेरा एडवासा विनोद बारासा, विकास बारासा, रोशनी बारासा, सगुन बारासा, और गांव 5 एमडी पत्रोड़ा अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ़ जिलो राजस्थान से एडवासा मंगल जनागल, रोशनी जनागल, अंकुर जनागल, इंदर और डॉक्टर सुनील जनागल। तो यहाँ पसंद रह सके आपा भी एक मीठा सो लोकगीत सुना सा।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

0: आयुष्मानी बीकानेर के भोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: तो संदेश सर सागे भगत थोर तो जा रही है और कार्यक्रम भी आगे बढ़ाना है तो गीत अपन जरूर सुना सा, पर अभी पहले थाने बता दें कि अभी थे आप रो गीत अगले शनिवार गुंजे गांव ग्वार में सुनना चाहो तो माने एक पानवे लिखो, पानवे जी की है गुंजे गांव ग्वार ढोला मारू चैनल द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बीकानेर, या फिर थे मेल भी कर सको हो जिकी मेल आई डी है बाया पानी ग्रामीण जगत बीकानेर @gmail.com। तो मोबाइल उठाओ और एक मेल करो और अगले शनिवार ने गुंजे गांव ग्वाडर में थारा मनपसंद गीत जी को है सुनाने की पूरी कोशिश जी की है मैं कराना। पर अबार जी को है देखो मखन पांगड़ी आई डी है गाँव कांगर तहसील रतनगढ़ जिला चूरू सू बाबूलाल ढाका मोटारा मेहचा, और एक अपानड़ी आई डी है धोरे खंडे ढाणी गांव तापू तहसील ओशिया जोधपुर सु विष्णाराम बालियान बिदामी देवी सुनील बालियान पूजा सुरेश सुभाष कल्पना बालियान और समस्त बालियान परिवार। और बे कार्यक्रम प्रस्तुत करता ने आप राम राम भी दे लिया घना घना। एक और पांगड़िया सुंदरखेड़ राजमता नगर बुलढाणा महाराष्ट्र सु नरेंद्र नरवाड़े ज्योति नरवाड़े आकांक्षा नरवाड़े आकाश कुमार, और कनेरा मोला पटियाला सु बत्ता परिवार मुकेश बत्ता नीलम बत्ता नितिन पलक करण गीतू निहारिका और वंश बत्ता। एक और पांगड़ी आइडिया सा गांव दौलतपुरा श्रीगंगानगर सु शिवलाल जी बेनीवाल शांति बेनीवाल मोहित हेमंत और मंजू चांदमलबाग गंगा शहर सु रतनलाल महावीर प्रसाद देवेंद्र निशा चिंकी सांखी। और एक आइडिया मखन पांगड़ी चूंगरा चौक बीकानेर सु एस मोहम्मद अली जीतू सबनम बानो अख्तर बानो मोहम्मद साजिद मुगल। और एक और मेल आयड ऐसा देखो मेला बार बार ताजो आयड है और मेल आयड है गांव फरांसी जिला हिसार सु राजकुमार डूडी प्रमोद कुमार डूडी पुष्पेंद्र कुमार डूडी। तो यहाँ सागे और मीठो शोक लोकगीत आप भी बड़े चाव सु सुना सा।

तो ये मीठे से लोक गीत सागे भगत थोड़ी है। अगले वार आप फिर मिलाला मीठे गीतां सागे, पर आज थे दो आज्ञा सतमेन शर्मा ने और घना घना सगला ने मोकला मोकला राम राम।

ग्रामीण श्रोता अपना कार्यक्रम सुन रहे थे ग्रामीण जगत। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्स और FM 101.6 मेगाहर्ट्स पर रात के 8 बजे हैं। आप प्रस्तुत है बीकानेर की सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों का साप्ताहिक कार्यक्रम बीकानेर दर्पण। आज के अंक में वाचक स्वर है श्री महेश उपाध्याय का, प्रस्तुति है श्रीमती पुनीत विश्नोई की और संयोजन है श्री अमित सिंह का।

बीकानेर दर्पण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीकानेर दर्पण के इस अंक में सबसे पहले पायदान पर है स्वच्छता पखवाड़ा। श्रोताओं, आप सब जानते हैं कि दिनांक 16 जुलाई से 31 जुलाई तक प्रतिवर्ष स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाता है और ये प्रयास किया जाता है कि स्वच्छता के प्रति आम और खास लोग जागरूक हों, अपने जीवन में स्वच्छता को प्राथमिकता और महत्व दें। बीकानेर में इस पखवाड़े के तहत विभिन्न विभागों, कार्यालयों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा अनेक प्रकार की गतिविधियों के आयोजन हुए। यह स्वच्छता पखवाड़ा बीते कल यानी 31 जुलाई को संपन्न हो गया। आयोजनों में विभिन्न प्रतियोगिताएं जैसे मेहंदी प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता आदि आयोजित की गई। इसी के तहत विभिन्न स्थानों पर श्रमदान के माध्यम से ये संदेश दिया गया कि स्वच्छता ही जीवन है। अनेक कार्यक्रमों के अलावा स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई। चलिए अब आपको स्वच्छता पखवाड़े के तहत आयोजित कार्यक्रमों में लिए चलते हैं। सबसे पहले सुनिए कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित जन शिक्षण संस्थान बीकानेर द्वारा स्वच्छता पखवाड़े के तहत आयोजित एक कार्यक्रम में स्वच्छता की शपथ कैसे दिलाई गई।

0: स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत एक आयोजन में बीकानेर विधानसभा पश्चिम के विधायक श्री जेठानंद व्यास ने आकाशवाणी से बात करते हुए कहा,
1: मेरे बीकानेर के सभी वासियों से मेरा निवेदन है कि हम स्वच्छता की तरफ विशेष ध्यान दें, क्योंकि स्वच्छता जो है हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण एक अंग है। इसे हम कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते और हम स्वस्थ रहें इसके लिए हम पर्यावरण का विकास करें, अधिक पेड़ लगाएं, क्योंकि स्वच्छता न होने कारण आदमी अस्वस्थ भी होता है, पर्यावरण भी नष्ट होता है। इसलिए इस पखवाड़े के दौरान हम विशेष सभी ध्यान रखें और हम सब मिलके अपने क्षेत्र को स्वच्छ रखें, अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखें और अधिक से अधिक पेड़ भी लगाएं। यह सब हमारे लिए अच्छा होगा। हम सभी मिलकर एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। इसके लिए हम सब इस पखवाड़े में हम सब मिलके ऐसे कार्य करें। सबसे पहले तो हम स्वच्छ अभियान में भाग लें और अपने मोहल्ले, कॉलोनी और सार्वजनिक स्थानों की सफाई सक्रिय रूप से करें। हम सभी केवल उन कर्मचारियों पर आधारित नहीं रहें, क्योंकि हम जहाँ रह रहे हैं जैसे अपने घर को साफ करते वैसे अपने मोहल्ले को भी हम साफ रखें, कचरे को उचित तरीके से हम डालें, वो निर्धारित स्थान पर डालें और गीला और सूखा उसको अलग अलग हम रखें। प्लास्टिक के उपयोग हम कम करें और पुनर्चक्र की को बढ़ावा दें और बीकानेर को प्लास्टिक मुक्त बनाने में हम सब सहयोग करें। अपने परिवार, मित्रों और आसपास के लोगों को स्वच्छता के महत्व के बारे में हम जागरूक करें, उन्हें इस अभियान में हम शामिल करें, अपने दैनिक जीवन में स्वच्छता को अपनाएं और स्वच्छता की आदतें विकसित करें, अधिक से अधिक पौधे लगाएं, उनका ध्यान रखें, जिससे हमारा पर्यावरण हरा भरा और स्वस्थ रहे। इन सभी से व्यक्ति स्वच्छ रहेगा और जो हम विकास चाहते हैं वो एक विकास का ये सर अंग है। हम सभी मिलकर बीकानेर को एक आदर्श स्वच्छ शहर बना सकते हैं। आपका यह योगदान हमारे शहर को एक नई पहचान देगा और यह हम सभी के लिए गर्व का विषय होगा। आइए हम सभी इस स्वच्छता पखवाड़ा में संकल्प लें कि हम अपने शहर को स्वच्छ, स्वस्थ और हरा भरा

0: योगी मन तन धन ये सारे स्वच्छ होने चाहिए, धन भी स्वच्छ होना चाहिए। धन स्वच्छ होने का मतलब है गलत पैसा हमारे पास नहीं आना चाहिए, अच्छा पैसा ही आए जो हमारा एक जरूरी है, जो हम अच्छी कमाई है, है ना। और ये एक ना संस्कार है, अगर माँ स्वच्छता के प्रति जागरूक होगी तो बच्चा भी स्वच्छता के प्रति जागरूक होगा। माँ ही गंदी रहेगी या घर में सब गंदे ही रहेंगे तो आगे बच्चे आने वाले बच्चे भी गंदे ही रहेंगे। तो ये एक ना संस्कार भी है जो हमें ना एक दूसरे को देना चाहिए। स्वच्छता एक संस्कार है जो हमें हर किसी को, हर आने वाले को देना चाहिए, है ना। यहाँ भी हम देखते हैं कि स्वच्छ कपड़े पहन के अच्छा लगता है ना, ऐसे हमारा मोहल्ला या हमारा घर अच्छा होगा तो कैसा भी हो, टूटा फूटा हो कैसा ही हो, लेकिन अगर वो स्वच्छ होता है तो सब अच्छा लगता है ना, आने वाले को भी अच्छा लगता है, वो भी हमसे सीख के जाता है भाई उनके घर तो बहुत सफाई थी।
1: मेरा नाम शिवानी है और क्या बोलते हैं, सफाई के लिए, सफाई सबके लिए बहुत जरूरी है। सफाई चाहे मन की हो चाहे घर की हो, सफाई हर किसी को करनी चाहिए, क्योंकि सफाई करने से अपन को स्वच्छता मिलती है, जीने के आगे बहुत सारे मतलब वाइब अच्छी रहती है, यानी पॉजिटिव ऊर्जा रहती है, उसको अपन को क्या बोलते हैं एनर्जेटिक रहते हैं अपन लोग काम करने के लिए। तो सफाई बहुत जरूरी है, चाहे घर की चाहे बाहर की हो, अपन को हर जगह पेड़ पौधे लगाने चाहिए और उनको अच्छे से अच्छे हरियाली करनी चाहिए ताकि अपन को अच्छी अच्छी सांस मिले, अच्छी शुद्धता मिले हर चीज में। तो इसलिए अपन को स्वच्छता बहुत जरूरी है।
2: माय नेम इज नीलम सोनी। स्वच्छता हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्वच्छता से तन और मन दोनों ही स्वच्छ रखने चाहिए। स्वच्छता हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है और हम स्वच्छता के लिए जो भी आज कर रहे हैं भाई, जो भी कूड़ा होता है ना वो हमें डस्टबिन में ही डालना चाहिए, ये हमें अपना नियम बनाना चाहिए स्वच्छता के लिए। हमें अपने बच्चों को भी यही सिखाना चाहिए, बेटा खुद अगर स्वस्थ रहोगे, स्वच्छ रखोगे तो ही अपन स्वस्थ रहेंगे।
3: मेरा नाम मोनिका कुलड़िया है। स्वच्छता आज की कोई नई बात नहीं है, हम लोग कई टाइम से, हमारे मोदी जी ने जब ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था तब से हम इसके बारे में सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, पर कोई इसको इतना सीरियसली नहीं लेता है। इसलिए हम हमारे जैसे बड़े बूढ़े कहते हैं कि स्वच्छ जब तक घर नहीं रहेगा तब तक देवी देवता भी प्रवेश नहीं करते, ठीक उसी तरह हमें अपना घर जैसे स्वच्छ रखते हैं वैसे ही हमें अपने मोहल्ला सब करना चाहिए। जबकि यहाँ पर आजकल के सबको यही लगता है कि अगर हम बाहर सफाई करेंगे तो हमारी शर्मिंदगी होगी, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हमारी शर्मिंदगी नहीं, वो हमारे लिए गर्व की बात है कि हम देश को अपना स्वच्छ बना रहे हैं। और स्वच्छ का मतलब ये नहीं होता कि बस कचरा उठा लिया और हम स्वच्छ हो गए, हमारा तन मन सब स्वच्छ होगा तभी हम स्वच्छता के अंदर भाग ले पाएंगे। और मैं अपनी तरफ से ये संकल्प लेती हूँ कि मैं जरूर हो सके उतना अपने गली मोहल्ले में सबको अवेयर करवाऊंगी इस बारे में और स्वच्छता का हो सके उतना अपना सहयोग दूंगी। हम सबको यही करना चाहिए कि हम अपने घर मोहल्ले सबको बोलिए कि स्वच्छ करें, जितना स्वच्छ हमारा एरिया होगा हम खुद स्वच्छ होंगे उतना हमारे लिए बढ़िया होगा, यहाँ पे बीमारियां भी कम होगी।
4: श्रोताओं, स्वच्छता की बात चले और स्वच्छता अभियान का गीत याद न आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। या यूं कहूं कि प्रातः एक गीत जैसे ही हमारे कानों को सुनाई देता है हम सब अपने अपने घर का कचरा लेकर बाहर आते हैं, यानी स्वच्छता वाहन में वो कचरा डाल देते हैं। ये कार्य करना भी स्वच्छता अभियान में अपनी भागीदारी निभाना है, क्योंकि अगर वो कचरा हमारे घर के आसपास ही अगर हम फेंकते हैं तो गंदगी फैलती है और रोग फैलते हैं। चलिए एक बार सुनते हैं वो प्रातःकाल का स्वच्छता गीत जो हम सबको स्वच्छता के प्रति प्रेरित करता है।

0: आम लोग किसी अभियान में योगदान दे, सहयोग दे, तो वो कार्यक्रम निश्चय ही सफल होता है। बीकानेर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। आम लोगों ने स्वच्छता के इस अभियान में भागीदारी बढ़ चढ़ कर निभाई। आइए सुनते हैं आम लोगों की क्या राय है स्वच्छता के बारे में।
1: मैं प्रवीण शर्मा, स्वच्छता के बारे में एक ये कहना

0: श्रोताओं, 31 जुलाई का दिन मशहूर पार्श्व गायक मोहम्मद रफी को खोने का दिन था, यानी भारतीय संगीत इतिहास के महानतम गायकों में से एक मोहम्मद रफी साहब की पुण्यतिथि 31 जुलाई को मनाई जाती है। 31 जुलाई 1980 को उनका निधन हुआ था। आपने विभिन्न शैलियों में महारत हासिल की भी थी, शास्त्रीय संगीत, देशभक्ति गीत, रोमांटिक गीत, कव्वाली, भजन और गजल जैसी कई शैलियों में आपने हजारों गीत गाए। आप हिंदी के अलावा असमिया, कोंकणी, भोजपुरी, उड़िया, पंजाबी, बंगाली, मराठी, सिंधी, गुजराती और कई विदेशी भाषाओं में भी गीत गाए। बीकानेर में प्रतिवर्ष की भांति इस मौके पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। विभिन्न संस्थाओं ने रफी साहब के गाए गीतों पर आधारित कार्यक्रम रखे, जिसमें स्थानीय कलाकारों ने अपनी आवाज को रफी साहब तक पहुंचाने का प्रयास कर मोहम्मद रफी साहब को गीतों के माध्यम से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। अमन कला केंद्र के समन्वयक श्री एम रफी कादरी ने बताया।
1: न फनकार तुस्सा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफी तू बहुत याद आया। आज ही के दिन, आज शुक्रवार है, आज ही के दिन 31 जुलाई 1980 को रफी साहब इस दुनिया से कूच कर गए। अनगिनत कलाकारों को बिलखता हुआ छोड़ गए, तो आज उन्हें खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। उन्हें श्रद्धांजलि के रूप में एक कार्यक्रम कर रहे हैं रानी बाजार में, जो रफ़ी साहब के गीतों पर आधारित होगा। जितने भी हमारे बीकानेर के सुधी श्रोता हैं, उनसे विशेष आग्रह की इस प्रोग्राम का हिस्सा बने और उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें।
2: यहाँ लगभग कितने कलाकार आने की उम्मीद है जो रफ़ी साहब के गीत गाएंगे?
1: तकरीबन 15 से 20 कलाकार होंगे, और जो सेलेक्टेड सिंगर है वही इस प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे, जो रफी साहब को अच्छा फॉलो करते हैं।
0: इस कार्यक्रम में आए अन्य श्रोता और कलाकारों ने अपने अपने विचार कुछ यूं रखे।
2: श्रोता, एनडी रंगा साहब हमारे साथ है, और आप संगीत प्रेमी, संस्कृति प्रेमी और परंपराओं को निभाने वाले, परंपराओं को जिंदा रखने वाले हैं। आज सर यहाँ मोहम्मद रफी साहब की याद में कार्यक्रम हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे?
3: रफी साहब की याद में तो हम लोग हमेशा कुछ न कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं, लेकिन उनके इस दिन के लिए हम उन्हें बहुत बहुत मतलब आज के दिन में उनको हम बहुत मिस कर रहे हैं, और इसके लिए अमन कला केंद्र हमेशा रफी साहब को और भी गायकों को वो हमेशा याद करवाते रहते हैं। चूँकि रफी साहब हमारे दिल में हैं, उनको हम कभी भूल नहीं सकते। हर घड़ी हमें वही याद आते हैं, क्योंकि हमारे लिए तो कभी कभी ये लगता है कि वो भगवान थे। और मेरा भतीजा एक और है, वो हम लोगों ने तो हमारा सारा कार्यक्रम रफ़ी के ऊपर छोड़ा हुआ है। जब कभी कहीं मिलते हैं तो रफ़ी साहब की बात करते हैं, और मैंने तो यहाँ तक कह रखा है अपने परिवार वालों को, दोस्तों को, कि मैं जब अगर मरूं उस समय मेरी अर्थी के साथ में रफ़ी साहब का ये गाना ज़रूर होना चाहिए, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। क्योंकि वो जो चिता लगती है ना, उस चिता के लिए उन्होंने जो गाने में लिखा है कि सजाई है जवां कलियों ने अब ये सहज उल्फत की, इन्हें मालूम था कि एक दिन आएगी मोहब्बत रंग। तो हम तो उसी सहज का वेट कर रहे हैं कि किस दिन भगवान हमको बुलाए और हम रफी साहब को याद करते हुए इस दुनिया से विदा हो।
4: विवेकानंद आर्य, अमन कला केंद्र की ओर से मोहम्मद रफी साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए आज ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।

0: मोहम्मद रफ़ी एक नेक इंसान, सीधे सरल और हर दलाइज़ जिनको कह सकते हैं वैसे एक फनकार थे। इनके गाए नगमे आज भी लोगों के दिलो दिमाग पर एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं। ऐसे थे रफ़ी साहब।
1: मोहम्मद रफ़ी की याद में अमन कला केंद्र की तरफ से हर साल 31 जुलाई को प्रोग्राम किया जाता है और हम हर साल यहाँ देखने आते हैं, सुनने आते हैं और बहुत ही शानदार प्रोग्राम इनका रहता है। रफ़ी के बहुत ही शानदार गाने गाए जाते हैं और हम इंजॉय करते हैं।
2: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम में मोहम्मद रफ़ी साहब के गाए गीतों को बीकानेर के कलाकारों ने किस प्रकार अपना स्वर दिया।
3: सारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं।
2: और अब मोहम्मद रफ़ी साहब के गाए कुछ गीतों की झलक हमारे स्टूडियो से।

0: श्रोताओं, बच्चे हमारे देश का भविष्य होते हैं। आने वाले समय में वे ही कर्णधार होंगे, इसलिए उनका स्वस्थ रहना अति आवश्यक है। बच्चों से संबंधित स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम होते ही रहते हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं विश्व स्तनपान सप्ताह की, क्योंकि प्रतिवर्ष मनाया जाता है विश्व स्तनपान सप्ताह। इसके तहत चिकित्सालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों, उप स्वास्थ्य केंद्रों में माताओं, नई प्रसूताओं को जागरूक किया जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य नवजात शिशुओं के लिए स्तनपान के महत्व, पोषण और स्वास्थ्य लाभों के प्रति दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाना है। इस अभियान की शुरुआत विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ द्वारा किया गया था। इनोचेंटी घोषणा पत्र 1990 में हस्ताक्षरित इस घोषणा पत्र की याद में यह सप्ताह प्रतिवर्ष अगस्त के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। और श्रोताओं, अब हम आपको लिए चलते हैं उपनगर गंगा शहर के राजकीय सैटेलाइट चिकित्सालय, जहां हमने बात की यहां की मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बिंदु मित्तल से। तब आपने मां के प्रथम दूध और इसके लाभ पर प्रकाश डालते हुए क्या कहा, आप भी सुनिए।
1: डॉक्टर बिंदु मित्तल हमारे सामने हैं। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी की ओर से। हम जानना चाहेंगे कि विश्व स्तनपान सप्ताह मनाने के पीछे क्या कारण है।
2: विश्व स्तनपान का उद्देश्य मनाने का यही है कि जो जच्चा और बच्चा हैं, जैसे प्रसव होता है तो पहले पुरानी ये धारणा हुआ करती थी कि ये मिथ्या है कि माँ का दूध नहीं देना चाहिए, पर ये है कि माँ का दूध बच्चे नए जन्मे बच्चों के लिए अमृत के समान है। उसके अंदर जो दूध के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह होता है, उसके अंदर विटामिन ए, इम्यूनिटी पावर बच्चे के अंदर बढ़ाने के लिए होती है। तो आजकल जो पहले मिथ्या थी उसको आजकल साइंस ने बिल्कुल चेंज कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि जो भी है माँ का, जैसे ही प्रसव होता आधे घंटे के अंदर अंदर आप बच्चे को स्तनपान कराएं, क्योंकि ये दूध से बच्चा कई आने वाली बीमारियों से बचता है। और जैसे कि कोई उसके अंदर, माँ के दूध के अंदर आयरन, कैल्शियम भी होता है, जिससे उसको विटामिन्स की कमी नहीं।

0: होती है, आयरन की कमी नहीं होती है और होने आने वाले समय के अंदर वो बच्चा हष्ट पुष्ट रहता है, बीमारियों से ग्रसित नहीं होता। तो मैं यही कहूँगी, हर किसी माँ और बहनों को संदेश देना चाहूँगी कि ये जो सप्ताह मनाया जा रहा है तो इसके अंदर कम से कम आप बच्चे को जैसे ही प्रसव होता है और बच्चे को माँ अपना दूध पिलाए और कम से कम 6 महीने से 1 साल तक पिलाना चाहिए ताकि बच्चा हष्ट पुष्ट बने और आने वाली बीमारियों से बचा रहे। धन्यवाद।
1: यहाँ मैडम एक सवाल है कि बहुत बार देखा जाता है कि दूध जो है कुछ उसमें पीलापन होता है, इस वजह से जो है भ्रांति रहती है कि पता नहीं नुकसान करेगा क्या करेगा, तो एक लोग जो है भ्रम में रहते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप?
0: ये दूध पीला इसलिए होता है क्योंकि वो उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल गाढ़ा होता है, विटामिन ए वगैरह विटामिन होते हैं इसके कारण गाढ़ा होता है वो। कोई ये नहीं है कि वो दूध खराब दूध है, वो अच्छा दूध है। तो जैसे गाय का दूध होता है वो पीला होता है, भैंस का दूध सफ़ेद होता है, तो दूध तो माँ का पीला ही आएगा क्योंकि जो उसके अंदर सारे विटामिन और पौष्टिक तत्व है ना। और बाद में भी आप देखोगे, ये जरूरी थोड़ा कि पहला दूध ही पीला आ रहा है, बाद में भी कई दिनों तक दूध पीला ही आता है।
1: अगर माँ का दूध नहीं पिलाना हो, कई स्थितियाँ ऐसी भी होती है जहाँ डॉक्टर मना भी करते हैं, तो वो कौन सी स्थितियाँ?
0: वो स्थितियाँ ऐसी है कि माँ को अगर टीबी हो गई हो तो शुरू के दिनों में जो पहले जैसे 6 महीने का कोर्स होता है तो पहले 2 महीने में जो ड्रग्स चलती हैं वो माँ के दूध से बच्चे के अंदर जाती हैं, एक्सक्रीट होती है, तब मना करा जाता है कि ये 2 महीने आपको माँ का दूध नहीं पिलाना बच्चे को।
1: एक बार और आप अपने शब्दों में जो हमारे श्रोता खासतौर से महिलाएं जो इस कार्यक्रम को सुन रही हैं उनके लिए एक संदेश के रूप में।
0: मैं सभी महिलाएं और बहनों को कहना चाहती हूं कि विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर ये प्रण करें कि बच्चों को पहला दूध ही पिलाएं ताकि इसके लाभों से बच्चों को वंचित ना रख सके, वे हमारे बच्चे हष्ट पुष्ट रहें और बीमारियों से दूर रहें। कि प्रसव के बाद अगर किसी प्रकार की भी माता को परेशानी होती है बच्चा को लेके या जच्चा को लेके, तो तुरंत पास के कोई भी हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर से संपर्क करें।
1: जो प्रसूता के साथ में आते हैं, उनके घर वाले आते हैं, उनके लिए कोई एडवाइज आपकी?
0: हाँ, परिवार वालों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जब माँ बच्चे को जन्म देती है तो एक तरीके से उसका दूसरा जन्म होता है, तो इसके अंदर उसको मतलब प्यार की और उसकी और सहायता की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, जिसके कारण मतलब उसको मन से तन से उसकी मतलब सारी तरह से उसको हर तरीके से उसको साथ देना चाहिए। ताकि कई बार क्या होता है कि डिलीवरी के बाद है ना मदर डिप्रेसिव फेज में चली जाती है, ताकि वो नहीं जाए, पोस्टपार्टम डिप्रेशन फेज के अंदर चली जाती है, तो ताकि वो इस फेज में नहीं जाए और माँ और जो बच्चा है दोनों स्वस्थ रहें। प्रसव के बाद माता को जो है परिवार वालों को एक अच्छा पौष्टिक आहार भी देना चाहिए, जैसे घी वगैरह हलवा वगैरह जो भी देते हैं अच्छा ये खाना भी देना चाहिए ताकि माँ के अंदर खून की कमी और कैल्शियम की कमी नहीं हो और मानसिक संतुलन और स्वस्थ वातावरण भी प्रदान करें।
2: और आइए अब बात करते हैं नर्सिंग ऑफिसर श्रीमती सरला कुमारी से।
1: हम जानना चाहेंगे कि चूंकि आप जो है सीधे सीधे मरीज को या जो महिला है उनको आप देखती हैं, माताओं को आप देखती हैं, तो किस तरह की समस्याएं आपके सामने आती हैं?
3: देखिए, आज हम बात कर रहे हैं विश्व स्तनपान सप्ताह जो कि 1 से 7 अगस्त तक मनाया जा रहा है। इसमें कई माएँ सोचती है कि हम बच्चे को दूध पिलाएं या नहीं पिलाएं, नुकसान तो नहीं करेगा, तो इसमें ना ऐसा कुछ नहीं है। माँ का दूध बच्चे के लिए एक संपूर्ण आहार है और माँ का दूध माँ के लिए नहीं बच्चे के लिए, माँ और बच्चे दोनों के लिए अमृत के समान है। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है और ये पचने में आसान रहता है, जैसे बच्चे को उल्टी दस्त की तकलीफ नहीं रहती है और बच्चे के दिमाग के विकास के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। और आगे जाकर जैसे कई तरह की बीमारियां जैसे एलर्जी, डायबिटीज़, मधुमेह और अस्थमा, इन बीमारियों को भी इनके जोखिम को भी कम करता है। और माँ का दूध बच्चे के लिए नहीं इनके साथ साथ बल्कि माँ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। जैसे माँ का दूध जैसे हम बच्चे को दूध पिलाते हैं तो वो गर्भाशय अपनी स्थिति में पुनः अवस्था में लौट जाता है और प्रसव के बाद जो रक्त स्राव होता है उसको कम करता है, वजन नियंत्रण करता है, बीमारी के जोखिम को कम करता है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, ओवेरियन कैंसर है, इनके रिस्क को कम करता है। मानसिक शांति मिलती है माँ को और बच्चे को। और इस सबसे बड़ा ये है कि जो माँ और बच्चे का भावनात्मक जुड़ाव होता है वो इससे मजबूत होता है।
1: एक संदेश आपके शब्दों में।
3: हाँ, मेरा यही संदेश है सभी मतलब प्रसूताओं के लिए कि मतलब अपने बच्चे को कम से कम 6 महीने

0: अपना दूध ही पिलाएं, इससे बहुत सारे फायदे होते हैं माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी। और किसी भी भ्रांति में ना जाएं, किसी कोई भी तकलीफ हो तो मतलब अपने डॉक्टर से एडवाइस लें।
1: तो ये था आज का बीकानेर दर्पण, संयोजन था श्री अमित सिंह का, प्रस्तुति थी श्रीमती पुनीत बिश्नोई की और वाचक स्वर था महेश उपाध्याय का। श्रोताओं, अगस्त का महीना हमारे लिए बहुत कुछ लेकर के आया है। जी हाँ, तीज त्योहार के साथ साथ राष्ट्रीय पर्व भी इसी महीने में है। हम आपके लिए इन गतिविधियों का एक संकलन करके हर सप्ताह आपके सामने हाजिर होंगे, इस उम्मीद के साथ अब अनुमति दीजिए। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे बीकानेर की सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों का साप्ताहिक कार्यक्रम बीकानेर दर्पण। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। रात के 8:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं लोक संगीत। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए पद्मा व्यास का गाया हुआ ये लोकगीत।

अब सुनिए पूर्णिमा भदानी का गाया हुआ ये लोकगीत।

0: राकेश बिस्सा के गाए हुए इस लोक गीत के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। रात के 8:45 होने को है। अब आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में और उसके पश्चात रात 9 बजे अंग्रेजी में।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। सही मानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे ये सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल में हुई प्रगति का श्रेय युवाओं को दिया। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। केंद्र ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता के लिए 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की अग्रिम राशि जारी की। भारत और चीन ने सिक्किम के नाथुला दर्रे से सीमा पार व्यापार फिर से शुरू किया। ओडिशा में बाढ़ का प्रकोप जारी, केरलम में लगातार बारिश से तबाही, 6 लोगों की मौत। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी में जैस्मिन लैम्बोरिया तथा प्रीति पवार ने और पैरा एथलीट सोमन राणा ने शॉट पुट में स्वर्ण पदक जीता। 7 भारतीय मुक्केबाज आज फाइनल में खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
3: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था।
3: स्वामी विवेकानंद जी युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। उन्होंने स्वयं में देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की है। आज युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है, भारत के युवाओं के सामर्थ्य से।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं।
3: पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनी है। पिछले 12 वर्षों में करीब 14,000 नए कॉलेज बने हैं। 4,000 से ज्यादा नई ITI बनाई गई, 9 नए IIM, 7 नई IIT और 13 नए MBBS स्थापित किए गए हैं। आज देश में MBBS की सीटें करीब 1,40,000 हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है।
2: श्री मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का अवसर दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीतारामा राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे

0: उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं।
1: मुझे पूरा विश्वास है आज यहाँ जितने भी प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है, जिनकी नींव रखी गई है, वो सारे प्रोजेक्ट स्वर्ण आंध्रा और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में बहुत बड़ा योगदान देंगे। आंध्र प्रदेश विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा ऊर्जा स्रोत बन रहा है। मैं एक बार फिर इन सभी परियोजनाओं के लिए आंध्र प्रदेश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: प्रधानमंत्री कल नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का देशव्यापी जन भागीदारी अभियान शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दौरान बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता देने के लिए राज्य आपदा मोचन कोष के केंद्रीय हिस्से की अग्रिम राशि के रूप में 2,117 करोड़ 85 लाख रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है।
2: बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए स्वीकृत सहायता के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को वित्त वर्ष 2026-27 की पहली किस्त की अग्रिम राशि के रूप में 44 करोड़ 55 लाख रुपए जारी किए जाएंगे। वहीं असम के लिए पहली किस्त के रूप में 379 करोड़ 35 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जबकि गुजरात को 500 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश, जिससे वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है, उसे दूसरी किस्त की अग्रिम राशि के रूप में 193 करोड़ 95 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। वहीं ओडिशा को दूसरी किस्त के रूप में 500 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र के लिए पहली किस्त की अग्रिम राशि के रूप में 500 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस मंजूरी का उद्देश्य बाढ़ प्रभावित राज्यों में जारी राहत और बचाव कार्यों को और सुदृढ़ करना है। प्रिया मंडल के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने आज राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किस्त जारी की है। यह राशि राज्यों को हर महीने मिलने वाली किस्त के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजी और विकास व्यय में तेजी लाने के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर नीट पीजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा 30 अगस्त को आयोजित की जाएगी। श्री नड्डा ने कहा कि परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और अभ्यर्थी हितैषी बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को आज महाराष्ट्र के पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने यह पुरस्कार प्रदान किया। श्री शाह ने कहा कि श्री डोभाल ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है।
3: भारत की सेना को आधुनिक बनाना, समसामयिक परिवर्तन करना, सेना के अंदर टेक्नोलॉजी और वीरता दोनों का एक अद्भुत फाइन ट्यूनिंग करना, कई प्रकार के बड़े फैसले अजीत जी के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी ने लिए हैं।
0: दिल्ली भाजपा ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ संसद परिसर में कल धार्मिक भावनाएं आद करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। नई दिल्ली से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने आरोप लगाया कि संसद परिसर के मकर द्वार के पास हुए प्रदर्शन के दौरान विपक्ष ने धार्मिक आस्था का मजाक उड़ाया, सनातन संस्कृति का अपमान किया और संत समाज का अनादर किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन

0: समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। एक रिपोर्ट।
1: पूर्वी सिक्किम में 14,000 फुट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित नाथुला दर्रा सदियों से भारत को तिब्बत से जोड़ने वाले पुराने व्यापार मार्ग का एक प्रमुख हिस्सा रहा है। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद बंद हुआ सीमा व्यापार 2006 में औपचारिक रूप से फिर से शुरू हुआ। 2020 में कोविड महामारी के कारण रोके जाने तक ये बिना किसी रुकावट के जारी रहा। इसका फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। सीमा व्यापार सोमवार से बृहस्पतिवार तक चलेगा। इसमें गेट सवेरे 7:30 बजे खुलेंगे और हर रजिस्टर्ड व्यापारी को हर दिन 2,00,000 रुपए तक का व्यापार करने की अनुमति होगी। गंगटोक से मैनाक चटर्जी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: बलूच यकजहती कमेटी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चल रहे जन आंदोलन पर पाकिस्तानी अधिकारियों की क्रूर कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। समिति के अनुसार यह दमनकारी रवैया असहमति की आवाजों को कुचलने की व्यापक सरकारी नीति का हिस्सा है। पाकिस्तानी सेना की हिंसक कार्रवाई में 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। मौसम विभाग ने कल कर्नाटक, केरलम, माही, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर बढ़ने से कटकपुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा और खुर्दा जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हीराकुंड बांध से 22 फाटकों के माध्यम से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। 10 निचले जिलों में हाई अलर्ट जारी है। 8,00,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 2,59,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। केरलम में लगातार मूसलाधार बारिश के कारण भूस्खलन और जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग ने आज 9 जिलों के लिए रेड अलर्ट और 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बारिश से 6 लोगों की मौत हो गई। प्रभावित जिलों में 65 राहत शिविरों में 1400 से अधिक लोगों को पहुंचाया गया है। और अब ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल की खबरों के साथ है प्रशांत कुमार।
2: राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने आज शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक देश के नाम किए। मुक्केबाजी में भारत ने 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। प्रीति ने महिलाओं की 54 किलोग्राम प्रतियोगिता में कनाडा की स्कारलेट समाना डिल गाडो को 5-0 से हराया। वहीं जैस्मिन ने महिलाओं के 57 किलोग्राम भार वर्ग में माइकेला वॉल्श को 5-0 से शिकस्त देकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में जादुमणि सिंह ने रजत पदक जीता।
3: काफी अच्छा लग रहा है, मेरा पहला कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल आया तो काफी खुश। अगला कंपटीशन उससे और ज्यादा फोकस करूंगा और अच्छा आने वाला कंपटीशन में फर्स्ट मेडल लेना। मेडल मैं मेरे अंकल को दे करूंगा और JFI को, साई को और पूरा इंडिया जो हमारा टीम कोचेस है उन सबको दे करूंगा।
2: दिन का तीसरा स्वर्ण पदक आज एथलेटिक्स से आया, जब सोनम राणा ने पुरुषों के शॉटपुट F57 वर्ग में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया। शुभम जुयाल ने रजत पदक जीता। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रावेल ने रजत पदक अपने नाम किया। सेल्वा प्रभु तिरुमरन ने कांस्य पदक हासिल किया।
0: इसके अतिरिक्त 7 भारतीय मुक्केबाज भी आज फाइनल में खेलेंगे। वॉल्ट फाइनल में देव कुमार मीणा और कुलदीप कुमार की चुनौती होगी। 5,000 मीटर दौड़ के फाइनल में गुलवीर सिंह ट्रैक पर उतरेंगे। मिक्स 4x400 मीटर रिले फाइनल में भारतीय टीम खेलेगी। जम्मू और श्रीनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 44 बंद होने के कारण रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए बडगाम और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह विशेष सेवा सड़क संपर्क बाधित होने से प्रभावित यात्रियों को राहत देने और कश्मीर तथा जम्मू के बीच सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल में हुई प्रगति का श्रेय युवाओं को दिया। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। केंद्र ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता के लिए 2,000 करोड़ रुपए

0: अधिक की अग्रिम राशि जारी की। भारत और चीन ने सिक्किम के नाथुला दर्रे से सीमा पार व्यापार फिर से शुरू किया। ओडिशा में बाढ़ का प्रकोप जारी, केरलम में लगातार बारिश से तबाही, 6 लोगों की मौत। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी में जैस्मिन लंबोरिया तथा प्रीति पवार ने और पैरा एथलीट सोमन राणा ने शॉट पुट में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening, this is Akashwani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates Swami Vivekananda Cultural Youth Centre in Mysuru, credits Indian youth for progress in science, technology and sports. Prime Minister launches development projects worth 18,000 crore rupees in Andhra Pradesh. Centre approves advance release of over 2,000 crore rupees as assistance to flood-affected states. India and China resume cross-border trade through Nathula Pass in Sikkim. Flood fury continues in Odisha, 6 people killed in Kerala as incessant rain causes widespread havoc. And in Commonwealth Games, boxers Jasmine Lamboria and Preeti Pawar win gold medals. Para athletes Oman Rana bags gold in men's shot put F57. Prime Minister Narendra Modi has credited Indian youth for achieving progress in the areas of science, technology and sports and called upon them to contribute in the areas of cleanliness drive, conservation of water and natural resources and gift Indian artefacts. He was speaking after inaugurating the Swami Vivekananda Cultural Youth Centre, Vivek Smarak, in Mysuru today. The Prime Minister emphasized that Swami Vivekananda's vision was to mentor our youth and empower them to work for nation building.
2: Swami Vivekananda ji युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। उन्होंने स्वयं में देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था। भारत के युवा भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की है। भारत का जो युवा कभी जंजीरों में था, आज वो युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से।
1: Mr. Modi further said the capabilities of our youth has transformed India into the second largest mobile phone market. New strides are being made in semiconductor manufacturing, innovations and in private sector space missions. Moreover, Mr. Modi underscored the progress achieved in the last 12 years in the field of education by establishing new universities and colleges, including ITIs, IIMs, IITs, AIMS and increasing medical seats as well.
2: पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनी है। पिछले 12 वर्षों में करीब 14,000 नए कॉलेज बने हैं। 4,000 से ज्यादा नई ITI बनाई गई, 9 नए IIM, 7 नई IIT और 13 नए MBBS स्थापित किए गए हैं। आज देश में MBBS की सीटें करीब 1,40,000 हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है।
1: Karnataka Chief Minister D.K. Shivakumar, Governor Thavarchand Gehlot and the President of Ramakrishna Math, Srimad Swami Gautamanandji Maharaj were present on the occasion. Earlier in the day, Prime Minister Modi launched development projects worth about 18,000 crore rupees, including airport, road and energy infrastructure at Vizianagaram in Andhra Pradesh. Addressing a public meeting, the Prime Minister said Andhra Pradesh is moving ahead at a rapid pace and the centre is fully committed to realising the vision of Swarna Andhra and Vikasit Bharat through large-scale infrastructure and industrial development.
2: आज यहाँ करीब 18,000 करोड़ रुपीज की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास

0: over 2,000 crore rupees as assistance to flood-affected states. India and China resume cross-border trade through Nathula Pass in Sikkim. Flood fury continues in Odisha, 6 people killed in Kerala as incessant rain causes widespread havoc. And Commonwealth Games boxers Jasmine Lamboury and Preeti Pawar win gold medals. Para-athletes Oman Rana bags gold in men's shot put F57. That is all in the news at 9. Good night.
1: मीडियम 215.5 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। रात के 9:15 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

अनुराधा पौडवाल और अभिजीत को आपने सुना, फिल्म का नाम था सड़क। अब सुनिए मोहम्मद रफी और आशा भोसले को, फिल्म का नाम है तीसरी मंजिल।

ये है घड़ी, लेकिन वहाँ कोई और थी। इनके लिए है मोहतरम छेड़ा किसी और को था, खुदा की कसम।

मेरा खुमार इनको भी है, इनके लिए है मोहतरम, छेड़ा किसी और को था खुदा की कसम। हाथ देखिए साहिबो, जो कोई और थी और ये नाजनी है मेरी, मैं इन पे मरता हूँ।

0: हम दोस्तों रुसवा हुए हम दोस्तों इनके लिए है मोहतरम छेड़ा किसी और को था खुदा की कसम। देखिए साहिबो वो कोई और थी और ये नाजनी है मेरी मैं इन पे मरता हूँ।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर

के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। आकाशवाणी बीकानेर का ये भूमा मरु चैनल है। दूरी 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। रात के 9:30 होने को है। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम साहित्य भारती। इसे हम आपके लिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र

आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है। ये पत्रिका शब्दों की उस यात्रा का हिस्सा है जो हमारी भाषाओं, हमारे साहित्यकारों और हमारी राष्ट्रीय चेतना को आपस में जोड़ती चलती है। आज के अंक में हम काव्य से लेकर गद्य तक, वीरता से लेकर भाषा एकता तक और वर्तमान से लेकर स्मृतियों तक एक संक्षिप्त यात्रा करेंगे। करगिल की चोटियाँ आज भी उस अदम्य साहस की गवाह है जब हमारे सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति देकर मातृभूमि की रक्षा की थी। करगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में आज के संपादकीय में हम प्रस्तुत कर रहे हैं एक काव्यांजलि, काव्य अनुभूज उस विजय की। विजय केवल युद्धभूमि में प्राप्त होने वाला एक परिणाम नहीं बल्कि राष्ट्र के स्वाभिमान, साहस और त्याग का अमर घोष है। करगिल विजय दिवस हमें उन वीर सैनिकों की अदम्य वीरता का स्मरण कराता है जिन्होंने दुर्गम हिम शिखरों पर अपने प्राणों की आहुति देकर भारत की अस्मिता की रक्षा की। युद्ध के इतिहास में तलवारें और बंदूकें विजय का मार्ग प्रशस्त करती हैं, किंतु विजय को अमरत्व शब्द देते हैं। यही कारण है कि भारतीय काव्यधारा में वीररस केवल उत्साह का संचार नहीं करता बल्कि राष्ट्रीय चेतना को जागृत भी करता है। कवियों ने समय समय पर अपनी लेखनी से उन वीरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है जिनके बलिदान ने स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा की। ये सभी ज्ञात अज्ञात सैनिकों के प्रति राष्ट्र की सामूहिक कृतज्ञता का स्वर है जो हर मौसम, हर परिस्थिति और हर चुनौती के बीच हमारी सुरक्षा के प्रहरी बने खड़े हैं। देश के सैनिकों से कविता में कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं, फतेह तिरंग आज क्यों न फिर गड़े, जगत प्रसिद्ध शूर सिद्ध तुम सभी, जवान हिंद के अडिग रहो डटे, न जब तलक निशान शत्रु का हटे, हजार शीश एक ठौर पर कटे, जमीन रक्त रुंड मुंड से पटे, तजो न सूचिकाग्र भूम भाग भी। युद्धरत सीमाओं पर सैनिकों को विदा करने का भाव दर्ज करते हुए कवि आमिर हमजा ने लिखा है, चौतरफा गूंजते सायरन के बीच जंग में जाते एक हथियार बंद सिपाही को सरेराह गले लगाने वाली स्त्री, जो उसकी माँ हो सकती है या कि बहन, प्रेमिका हो सकती है या कि दोस्त, या कि फिर पत्नी, उससे बेहतर भला कौन जान सकता है कि हर अलविदा एक यात्रा की समाप्ति है। उसी तरह एक और बेहद भावपूर्ण कविता की इन पंक्तियों में, जिनका अनुवाद किया है रमेश कौशिक ने, कवि अलेक्जेंडर प्रोकोफ्येव कहते हैं, किंतु सैनिक क्रांतिकारी चीखता है, मर नहीं सकता कभी मैं नहीं अब तक मरा हूँ, मैं मरूंगा भी नहीं। तभी थर्राहट हुई, दीवार जो घेरे हुए थी उसमें दरारें पड़

गई और सैनिक के हृदय से सेब तरु की शाख फूटी, फिर बड़ी हो वो खुशी से झूमती है मकबरे पर और गुलाबी श्वेत फल उस पर गिराती है। सैनिक के हृदय की शरा अब तक धड़कती है। इसी क्रम में एक सशक्त भोजपुरी गीतकार और कवि राम जियावन दास बावला ने लिखा, करगिल न कुल कश्मीर छोड़ भागू, बापू का हमरे जगीर छोड़ भागू, भाई समझ के जगवले बहुत हम, आगे लगवले मड़ैया में, छोड़त न बच्चू लड़ैया में, कसके कमरिया अखाड़े जवनवा, उमड़ल बा भीर जस बरसे सवनवा, के बावला मत मरले बा तोहरी, डाके ने ताती तलैया में, छोड़ब न बच्चू लड़ैया में। और हमारे समय के बहुत बड़े कवि रामधारी सिंह दिनकर ने वीर सैनिकों की प्रशस्ति में कहा, जाग रहे हम वीर जवान, जियो जियो जय हिंदुस्तान, हम प्रभात की नई किरण हैं, हम दिन के आलोक मुगल, हम नवीन भारत के सैनिक, धीर वीर गंभीर अचल, हम प्रहरी ऊंचे हिमाद्रि के, सुलभ स्वर्ग की लेते हैं, हम हैं शांत दूत धर्मी के, छांव सभी को देते हैं, वीर कृष्ण माँ की आंखों के, हम नवीन उजियाले हैं, गंगा यमुना हिंद महासागर के, हम रखवाले हैं, तन मन धन तुम पर कुर्बान, जियो जियो ए हिंदुस्तान।

0: वीरता की इन गूंज हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र केवल भूमि से नहीं बल्कि उसकी विविधता में एकता से बनता है, और इस एकता का सबसे सुंदर माध्यम है भाषा। भारत जैसे बहुभाषी देश में हर भाषा हर बोली एक सेतु का काम करती है, जो हमें एक दूसरे से और राष्ट्र की सामूहिक चेतना से जोड़ती है। इसी विचार पर केंद्रित है हमारी अगली प्रस्तुति, भाषाओं का सेतु राष्ट्र का स्वर। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कोंकणी मराठी साहित्यकार श्री दामोदर मावजो इस विषय पर कहते हैं,
1: भाषा एवं साहित्य अपनी संस्कृति की महत्वपूर्ण पहचान होती है। कोई भी भाषा हो, हमारे विविधताओं से भरे भारत देश की ज्यादातर भाषाओं में वाचन लेखन संभाषण जारी रखकर भाषा वृद्धि तथा समाज समृद्धि को बढ़ावा देना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा भाषाओं का ज्ञान हमें प्राप्त होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भाषाओं में वाचन लेखन संभाषण जारी रखना चाहिए। भाषा राष्ट्रीय एकात्मता सबल और संपन्न हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है।
0: स्वरांश सौजन्य, आकाशवाणी पणजी। इसी विचार बिंदु को आगे बढ़ा रहे हैं केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर हितेंद्र मिश्र।
2: भाषाएं संवाद के लिए एक उपयोगी टूल्स के रूप में काम करती हैं, लेकिन केवल टूल्स ही नहीं होती, इनके साथ संस्कृति, समाज, लोगों के अपने जुड़ाव, लोगों की अपनी परंपराएं, लोगों के अपना अस्तित्व, सब कुछ का जुड़ा हुआ होता है। इसलिए भाषाएं जो जोड़ती हैं, जुड़िया काम करती हैं, वो केवल भाषाई आधार पर ही नहीं करती हैं, बल्कि वो सांस्कृतिक, सामाजिक सभी आधारों पर लोगों को जोड़ती हैं। और स्वतंत्रता आंदोलन में जो स्वतंत्रता आंदोलन की व्यापकता थी, जो उसे विस्तार मिला, जो उसे प्रचार प्रसार मिला, उस प्रचार प्रसार में भाषा की भूमिका सबसे अधिक केंद्रीय और अग्रणी भूमिका है। इस रूप में हम भाषा को देखते हैं और बस एक कह सकते हैं कि भारत में जो भाषाई वैविध्य है, इस भाषाई वैविध्य के साथ भी, लेकिन भारत में भाषाई वैविध्य जरूर है, लेकिन भारत में सांस्कृतिक एकता, जो जुड़ने के तार हैं आपस में लोगों के, वह एक है। हम सभी भारतीय हैं, इसलिए भाषाएं अलग होते होते भी हमारे भाव एक हैं, और इस भाव की जो एकता है वह हमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के समय में बड़े महत्वपूर्ण रूप से दिखाई देती है। एक पहली बार जब अंग्रेजों का आगमन होता है और अंग्रेज भारत में अपनी सत्ता स्थापित करते हैं, मुगलों की सत्ता को विस्थापित करते हुए, तब हम देखते हैं कि उस समय जो हम लेखन है, उस लेखन का तरीका अलग है, लेकिन जब वो

यहाँ के लोगों पर शासन करना और निरंकुशता और यहाँ के लोगों के साथ अत्याचार करना शुरू करते हैं, तब उनकी नीति और उनका कार्य पद्धति बदल जाती है। दोनों जो पत्रकारिता है, जो भाषा है, जो हमारी भूमिकाएं हैं, वो अलग अलग ढंग से दिखाई देती हैं। इसकी ताकत भी है और विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे हम हिंदी की बात करें, चाहे हम बंगला की बात करें, चाहे मराठी की बात करें, चाहे गुजराती की बात करें, तमिल की बात करें, इन सभी भाषाओं में स्वाधीनता आंदोलन के लिए स्वर उठे और मजबूती के साथ खड़े हुए और देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया। और भारत में पत्रकारिता की शुरुआत ही व्यवस्था के निरंकुश, व्यवस्था के व्यभिचारी, व्यवस्था के कदाचरण के विरुद्ध खड़ी हुई पत्रकारिता के रूप में भारत में पत्रकारिता विकसित हुई है। हम पहले ही पत्र से अगर देखें तो हम देखते हैं कि वह सत्ता के जो गलत मंशा है उसके खिलाफ पत्रकारिता खड़ी होती है। वह पत्रकारिता चाहे हिंदी की हो चाहे अन्य भाषाओं की हो, हिंदी उसमें एक प्रमुख भाषा थी, हिंदी एक बड़ी भाषा थी क्योंकि वो बोलने वाले समुदाय का व्यापकत्व तो ज्यादा था। तो देखा तो हिंदी में तमाम पत्र पत्रिकाएं थी, जिसमें प्रताप एक महत्वपूर्ण पत्र था जिसे गणेश शंकर विद्यार्थी निकालते थे, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा संपादित अभ्युदय, माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा संपादित हिंदी का कर्मवीर, बंगला में हम देखें तो अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष ने संपादित की, मराठी में तो पत्रकारों की और पत्रिकाओं की सीरीज है पूरी, अगर संक्षेप में चर्चा करें तो केसरी जो प्रतिनिधि पत्र है मराठी का, बाल गंगाधर तिलक ने उसको संपादित किया, स्वयं महात्मा गांधी ने गुजराती में नवजीवन नाम का पत्र निकाला, स्वदेश मित्रन तमिल में सुब्रमण्य अय्यर ने निकाला, उर्दू में मौलाना अबू कलाम आजाद जी ने अल हिलाल नाम का पत्र निकाला। और इन सभी पत्र पत्रिकाओं को अगर आप लेकर के देखें तो इन पत्र पत्रिकाओं का एक ही मंशा थी, वह मंशा थी कि भारत में स्वाधीनता की स्थापना करना। और यह स्वाधीनता सिर्फ राजनीतिक नहीं थी, यह स्वाधीनता स्वदेशी स्वदेश के प्रति एक प्रेम के जागरण की स्वाधीनता थी, जिसमें इन पत्रिकाओं ने अंग्रेजी नीतियों की आलोचना की, लोगों में जनमत तैयार किया, स्वदेशी के प्रति लोगों की में रुचि जागृत की, और इन सब के बाधक तत्व जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को खड़ा करने का काम किया। राष्ट्रीय आंदोलन विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार चल रहा है इसकी सूचना इन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचती थी। पत्र पत्रिकाएं वे साधन थे जिनके माध्यम से हम पूरे देश को एक साथ जोड़ पा रहे थे। आप देखेंगे कि यह समय था, यह दौर था जब अखबारों की एक आवाज पर लाखों लोग सड़क पे इकट्ठा हो जाते थे। यह अखबारों के प्रति, पत्र पत्रिकाओं के प्रति लोगों का विश्वास था। लोगों को यह लग रहा था कि पत्र पत्रिकाएं ये अखबार हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमारी स्वाधीनता के लिए काम कर रहे हैं, हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए लोगों का विश्वास, और लोगों का विश्वास जीतकर पत्र पत्रिकाएं इस देश को एकता के सूत्र में बांधने का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करती है। हम भारतीय मेधा को, भारतीय जो हमारी इंटेलिजेंसिया है, इसको हम किस तरह से पीछे के समय से लेकर के बाहर आए हैं और हमारी क्या आवश्यकताएं हैं, और हम पीछे किस प्रकार स्वाधीनता आंदोलन में हम इनके माध्यम से पूरे देश को एक सूत्र में बांध सके थे, इस सबकी पूरी मुकम्मल जानकारी अनेक आयामों, अनेक विषयों, अनेक संदर्भों के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर दिया जा रहा है। जो कॉलोनियल माइंडसेट है, जो अंग्रेजों का एक माइंडसेट था, उस तरह के जो माइंडसेट को लेकर के हम जब चर्चा करते हैं तो हम यह देखते हैं कि उसके पीछे उनकी मंशा क्या थी, उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या था। वह उद्देश्य था भारत पे अधिकतम समय तक शासन करना, यहाँ की संपदा को लूटना, यहाँ के संसाधनों को लूटना, अपने यहाँ ले जाना, और हमारे संसाधनों का जितना दोहन इस समुदाय ने किया, जिसे हम ब्रिटिश नाम से कहते हैं, वह लोगों को जानना चाहिए। और वह जानने का माध्यम यही है कि हम स्वतंत्रता आंदोलन के समय की पत्रकारिता की चर्चा करें, उस समय के इतिहास की चर्चा करें, उस समय के ज्ञान संपदा की चर्चा करें, उस समय हमारी स्कूलिंग सिस्टम की चर्चा करें, उस समय की हमारी सारी व्यवस्था, जो समाज की व्यवस्था थी, उसकी चर्चा करें, न्याय प्रक्रिया की चर्चा करें, तो लोगों में यह बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी कि जो 200 वर्ष बीता हमारा अंग्रेजी शासनकाल में, वो किस प्रकार का बीता। और इसीलिए स्वतंत्रता आंदोलन भारत की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण और अनिवार्य आवश्यकता थी जो एक समय में खड़ी हुई, और उसके आंदोलन के जरिए ही हम इस बड़े अपने अवरोधक तत्व को, जो हमारे विकास में, हमारे ज्ञान के क्षेत्र में जो बाधक था, उसे हम हटा सके। इसलिए तमाम तरह की जानकारियां दी जानी चाहिए और अनेक प्रकार से दी भी जा रही हैं।

आशा को लेकर के हमारा काम जो निदेशालय का काम है हमारा, उसका जो मैंडेट है वो प्रोपगेशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज है। हम उसके माध्यम से, हम भाषाई परिवारों की संकल्पना के माध्यम से, हम भाषाई एकता के माध्यम से, हम सांस्कृतिक संदर्भों को पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं और लोगों के बीच जाकर के उसकी चर्चा करते हैं। हम तमाम प्रकार की संगोष्ठियां आयोजित करते हैं और विशेष करके जो हिंदी क्षेत्र से इतर क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में, उन क्षेत्रों के लोगों को हम भारत के साथ उनके कैसे सामाजिक सांस्कृतिक संबंध हजारों

0: सकते हैं, और विशेष करके जो हिंदी क्षेत्र से इतर क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में उन क्षेत्रों के लोगों को हम भारत के साथ उनके कैसे सामाजिक सांस्कृतिक संबंध हजारों हजार वर्षों से रहे हैं इसे स्टेब्लिश करने का प्रयास करते हैं, जिसे भारत में एकता एकात्मकता और एकीकरण का भाव हम प्रत्येक समुदाय प्रत्येक व्यक्ति के बीच जागृत कर सके।
1: भाषाओं की इस विविधता में जब राष्ट्र प्रेम शब्दों में ढलता है तो वो कालजयी बन जाता है। राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त की महाकाव्य कृति भारत भारती ऐसी ही एक रचना है जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी भारतीयों के हृदय में राष्ट्र प्रेम की ज्वाला प्रज्वलित रखी है। थोड़े शब्दों में गहन भाव समेटे इस कृति पर आधारित है हमारी अगली प्रस्तुति लघु रूपक अत्यल्प में संपूर्ण।
2: इसे राष्ट्र के स्वाभिमान की वास्तविक संचेतना का पुनरुत्थान राजनीतिक मंचों से नहीं बल्कि किसी निष्ठावान साधक की लेखनी से मिश्रित होता है। सन 1912 का वो दौर जब औपनिवेशिक सत्ता के दंश से संपूर्ण भारतवर्ष की चेतना सुप्त पड़ी थी, तब झांसी के चिरगांव से एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला कर रख दी। एक ऐसी अमर कृति जिसने बहुत कम शब्दों में यानी अत्यल्प में पूरे भारत के गौरव उसकी चेतना और उज्जवल भविष्य के सपनों को समेट लिया। भारत भारती अत्यल्प में संपूर्ण, और इसे अपनी लेखनी से रचा था राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने। तीन खंडों की इस कृति में मैथिली शरण गुप्त ने भारतवर्ष के त्रिकाल का संपूर्ण दर्शन उखेड़ दिया। भारत भारती का पहला खंड था अतीत खंड। वो पन्ने केवल कविता नहीं थे, वो सोई हुई कौम को जगाने के लिए ऋषियों की वाणी की तरह गूंजे थे।
1: उन्नत रहा होगा कभी जो हो रहा अवनत अभी, जो हो रहा अवनत अभी उन्नत रहा होगा कभी, हंसते प्रथम जो पद्म है तम पंख में फंसते वही, मुरझे पड़े रहते कुमुद जो अंत में हंसते वही। उन्नत तथा अवनत प्रकृति का नियम एक अखंड है, चढ़ता प्रथम जो व्योम में गिरता वही मारतंड है, अतएव अवनति ही हमारी कह रही उन्नति कला, उत्थान ही जिसका नहीं उसका पतन ही क्या भला।
2: मैथिली शरण गुप्त का राष्ट्र प्रेम केवल अतीत के यशोगान तक सीमित रहने वाला भावुकता का संजाल नहीं था। भारत भारती की वास्तविक अग्नि उसके वर्तमान खंड में धधक रही थी।
1: तुम सभ्य हो मार्केट जिनका सात सागर पार है, पर ग्राम की वो हाट ही उनका बड़ा बाजार है। तुम हो विदेशों से मंगाते माल लाखों का यहाँ, पर वे अकिंचन नमक गुड़ ही मोल लेते हैं वहाँ। तुम दार्शनिक हो ईश का अस्तित्व सत्य न मानते, है भूत प्रेतों से अधिक वे भी न उसको जानते। हा देव इस ऋषि भूमि का ये आज कैसा हाल है, तू काल सचमुच काल ही है क्रूर और कराल है।
2: गुप्त ने जब औपनिवेशिक गुलामी के दंश हमारी आपसी फूट और सामाजिक शिथिलता पर लेखनी चलाई तो पंक्तियां कविता ना रहकर सोई हुई चेतना पर एक करारा वैचारिक वज्रपात बन गई। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर महेश कटारे कहते हैं,
3: एक समय पर भारत भारती की ये स्थिति थी कि वो काव्य एक समय पर राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का घोषणा पत्र जैसा हो गया था और आम जन के बीच में बहुत ही लोकप्रिय पुस्तक रही थी। वह ये हिंदी की पहली कृति थी जिसने राष्ट्रीयता के प्रसार प्रचार में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था।
2: प्रभात फेरियों से लेकर स्वाधीनता संग्राम की गुप्त बैठकों तक भारत भारती की पंक्तियां आजादी के दीवानों का पाथे बन गई। इसी अप्रतिम जनचेतना और अनूठी राष्ट्र सेवा को देखते हुए सन 1936 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी

0: मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के अमर समादर से अलंकृत किया।
1: हे नव युवाओं, देश भर की दृष्टि तुम पर ही लगी है, मनुष्य जीवन की तुम्ही में ज्योति सबसे जगमगी। दोगे न तुम तो कौन देगा योग दोषोद्धार में, देखो कहां क्या हो रहा है आज कल संसार में। सुख शांति में सरकार का शासन समय है अब यहाँ, सुविधा समुन्नति के लिए है प्राप्त हमको सब यहाँ। अब भी न यदि कुछ कर सके हम तो हमारी भूल है, अनुकूल अवसर की उपेक्षा फूल की फिर शूल है।
0: भारत भारती का तीसरा और अंतिम खंड, भविष्यत खंड, मात्र एक राजनीतिक आजादी की मांग नहीं था, बल्कि वो संपूर्ण मानव जाति के कल्याण, ज्ञान विज्ञान की उन्नति और विश्व बंधुत्व का संकल्प था। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर राजरानी शर्मा बताती हैं,
2: हमारे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने हमें आदर्श की ओर उन्मुख किया। भारत भारती काव्य उन्होंने रचा और किस प्रकार से जीवन की संचेतना को उभारता है, देशभक्ति जगाता है, हमें हमारे अतीत के गौरव से मिलवाता है, वर्तमान का स्वरूप दिखाता है और भविष्य की राह बताता है।
0: भौतिक साम्राज्य नष्ट हो जाते हैं, शासकों के आदेश पन्नों में सिमट जाते हैं, किंतु राष्ट्र चेतना के प्रांगण में रोपे गए शब्द अजर अमर रहते हैं। भारत भारती केवल एक ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं, ये भारतीय संविधान संग्राम की वैचारिक पीठिका है, जिसने हमारी सांस्कृतिक अस्मिता को अक्षुण रखा है। साहित्य मनीषी KBL पांडे कहते हैं,
3: भारत भारती को याद करना न केवल इसलिए जरूरी है कि वो उस समय की एक प्रमुख पुस्तक है, बल्कि इसलिए कि स्वातंत्र्य चेतना की प्रेरणा के रूप में उसका मुख्य स्थान है। हम जब अपने त्रासद वर्तमान से मुक्ति कामना के लिए संघर्ष करते हैं, तो हमारे साथ हमारा वर्तमान ही नहीं होता, बल्कि हमारा प्रेरक और गर्वीला अतीत भी होता है और नए सूर्योदय के भविष्य का प्रकल्प भी होता है। जब हम समय के इन तीनों आयामों के बोध से संपन्न होते हैं, तो रचना की समग्रता के विचार में होते हैं, यानी जो हम करना चाहते हैं उसके प्रति हमारी पूरी दृष्टि होती है काल के तीनों आयामों के साथ।
0: राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का ये कालजयी शब्द शिल्प आज भी हमें यही स्मरण कराता है कि स्वदेश प्रेम ही हर राष्ट्र का शाश्वत प्राण तत्व है।
4: आलेख और वाचन प्रांजल, स्वरांश सौजन्य, आकाशवाणी ग्वालियर। राष्ट्र कवि की कविता के स्वर अभी थमे भी नहीं कि हमें याद आते हैं एक और कालजयी रचनाकार प्रेमचंद, जिनके कलम ने केवल कहानियां ही नहीं लिखी, आजादी के सपनों को भी शब्द दिए। उनकी महान कृतियों में बसा वतन का दर्द और आजादी की आकांक्षा आज भी उतनी ही जीवंत है। उदाहरण के लिए सोजे वतन, जिसकी रचना प्रेमचंद ने नवाब राय के नाम से की थी। सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति कलम का दम और सोजे वतन।
5: तारीख अक्सर युद्ध भूमि की चीखों, तोपों की गूंज और साम्राज्यों के ढहने का हिसाब रखता है, लेकिन किसी राष्ट्र के स्वाभिमान की वास्तविक इबारत किसी निष्ठावान साहित्यकार की मेज पर रखी स्याही से मिश्रित होती है। सन 1908 का वो दौर याद कीजिए, जब आजादी केवल एक राजनीतिक मांग नहीं बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष की आत्मा की आकुलता बन चुकी थी। ठीक उसी दौर में हमीरपुर की एक शांत मेज पर जन्म होता है सोजे वतन का। रचनाकार नवाब राय यहां सोज केवल एक शब्द नहीं बल्कि पराधीनता के दंश से पीड़ित किसी स्वाभिमानी हृदय की वो अंतर्वेदना है जिसने आगे चलकर पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की नींद उड़ा दी। इसमें शामिल अमर रचनाएं दुनिया का

0: सबसे अनमोल रतन शेख मखमूर, यही मेरा वतन है। शोक का पुरस्कार और सांसारिक प्रेम और देश प्रेम केवल कहानियां नहीं थी, बल्कि पराधीन भारत की आत्मा की आकुलता थी। संग्रह की कहानी यही मेरा वतन है में प्रेमचंद ने अपनी मातृभूमि के प्रति जो भाव उकेरे थे, वे किसी श्रेष्ठ कविता से कम नहीं थे।
1: साहित्य मनीषी डॉक्टर मनीषा कहती है,
2: जब वे सूफी वतन में दास्तानों की शैली में दुनिया का सबसे अनमोल रतन और शेख मखमूर कहानी सुनाते हैं, तो उनका लक्ष्य अपने समय की सबसे बड़ी सच्चाई से ही भेंट कराना था, जिसे हुब्बे वतन कहते हैं। प्रेमचंद के समक्ष कहानी की शैली के लिए कोई दुविधा या संकट की स्थिति कभी नहीं रही। इस संकटहीनता को समझने के लिए सूज़े वतन एक सुंदर नमूना है, क्योंकि उसमें दास्तानों की शैली से भिन्न कथा रूप की इश्क दुनिया और हुब्बे वतन भी सम्मिलित है। इन सबसे अलग कहानी के कहन का एक रूप यही मेरा वतन है और सिनेमातम दिखाई पड़ता है। ये दोनों उत्तम पुरुष शैली की कहानियां हैं। प्रेमचंद अपनी रचनाओं के आरंभ, विस्तार, अंत, घटनाओं के चुनाव, भाषा शैली आदि के विषय में बहुत सचेत थे। वे किसी परफेक्शनिस्ट से कम नहीं थे।
0: 20वीं सदी के प्रथम दशक में जब भारतीय स्वाधीनता संग्राम अपनी राजनीतिक चेतना के नए क्षितिज तलाश रहा था, तब इस संग्रह ने कथा साहित्य को क्रांति का एक सशक्त माध्यम बना दिया। संग्रह की पांचवी कहानी सांसारिक प्रेम और देश प्रेम में प्रेमचंद ने ये स्थापित किया कि व्यक्तिगत प्रेम से कहीं ऊंचा स्थान राष्ट्र प्रेम का है। निरंकुश साम्राज्यवादी सत्ताएं शास्त्रों से अधिक विचारों की शक्ति से भयभीत होती हैं। हमीरपुर के तत्कालीन अंग्रेज कलेक्टर ने जब सूज़े वतन के पृष्ठ पलटे, तो उसे प्रत्येक कथा में विद्रोह की गूंज सुनाई दी। इस कृति की 500 प्रतियों को जब्त करके सरेआम अग्नि के समर्पित कर दिया गया। ब्रिटिश हुकूमत को ये भ्रम था कि उन्होंने कागज जलाकर क्रांति की ज्वाला को शांत कर दिया, किंतु वे भूल गए थे कि विचारों की राख से ही नए इतिहास का प्रादुर्भाव होता है।
1: साहित्य मर्मज्ञ मधुर वासी कहते हैं,
3: ये कहानी संग्रह अंग्रेज सरकार की बर्दाश्त से बाहर था। जिला कलेक्टर हमीरपुर उत्तर प्रदेश ने इसकी सभी उपलब्ध प्रतियां अपने सामने जलवा कर नष्ट करवा दी और लेखक रमाप राय, जो उस समय उप विद्यालय निरीक्षक थे, को सरकारी कर्मचारी होने के कारण और ये चेतावनी देकर क्षमा कर दिया कि आगे से वे अंग्रेज सरकार के विरुद्ध कोई साहित्य नहीं लिखेंगे। दो विशेष परिवर्तन हुए। प्रथम तो ये कि नवाब राय का नाम बदल गया और वे प्रेमचंद नाम से लिखने लगे। ये नाम उन्हें अखबार जमाना के संपादक को दयाराम निगम ने दिया। और दूसरा ये कि अब उनकी भाषा उर्दू से हिंदी हो गई।
0: आज जब हम स्वतंत्र भारत की अक्षुण हवाओं में सांस ले रहे हैं, तो हमें उस समर्थ लेखनी को भी नमन करना होगा जिसने बंधनों के कालखंड में स्वाधीनता के दीप प्रज्वलित किए थे। सूज़े वतन केवल एक पुस्तक नहीं, हमारी आजादी की साहित्यिक हुंकार थी।
1: वाचन आनंद श्रीवास्तव, स्वराज सौजन्य, आकाशवाणी आगरा। साहित्य की ये यात्रा उन सबके बिना अधूरी है जिन्होंने अपनी लेखनी से भारतीय साहित्य को समृद्ध किया और आज हमारे बीच शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन जिनकी रचनाएं आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रही हैं। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान, उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा, कथाकार भीष्म साहनी, उर्दू के मशहूर शायर फिराक गोरखपुरी, व्यंग के हस्ताक्षर हरिशंकर परसाई, कथा आलोचना के पुरोधा राजेंद्र यादव, कन्नड़ साहित्य के ज्ञानपीठ विजेता विनायक कृष्ण गोतक, असमिया साहित्यकार सैयद अब्दुल मलिक और कथा आलोचना के पुरोधा राजेंद्र यादव, भारतीय साहित्य में इन विभूतियों के अवदान को

0: मंथन करते हुए संपन्न होता है साहित्य भारती का ये अंक। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए।
1: नमस्कार। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं।
2: संगीत
1: 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और FM 100.6 मेगाहर्ट्ज पर
2: श्री आर संतान गोपालन से प्राप्त की। आप अपने गुरु की प्रमुख शिष्याओं में से एक हैं। संगीत के प्रति विशेष अभिरुचि के कारण आप देश विदेश की विविध संगीत सभाओं में अपना गायन प्रस्तुत करती आ रही हैं। आकाशवाणी तथा दूरदर्शन टीवी चैनलों पर आपके द्वारा प्रस्तुत अनेकानेक कार्यक्रम अत्यंत लोकप्रिय हुए हैं। चिन्मय भगिनी अनेक पुरस्कार एवं उपाधियों से अलंकृत हैं। आज के कार्यक्रम में चिन्मय भगिनी के साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर श्रीमती श्रद्धा रविंद्रन, मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा नरसिंह पर श्री एन सुंदर।
3: दिस इज आकाशवाणी। गुड इवनिंग लिसनर्स। In tonight's national program of music, we bring to you a Carnatic classical vocal recital by Chinmaya sisters, Srimati Uma and Srimati Radhika. Chinmaya sisters are one of the leading and popular duo in the field of Carnatic music. With their mellifluous voices, spirited singing and strict adherence to classicism, the duo has captured the hearts of Rasikas worldwide. Chinmaya sisters are senior disciples of Padma Bhushan awardee Madurai Sri T.N. Seshagopalan and Kalaimamani Neyveli Sri R. Santana Gopalan and have successfully imbibed and absorbed the specialities of their guru's style in their singing. They have travelled extensively and performed in prestigious venues all across India and abroad. They are A-graded artists of Akashvani and have had the privilege of performing in many special programs organized by Akashvani and Doordarshan. In tonight's concert, Chinmaya sisters Srimati Uma and Srimati Radhika are accompanied by Srimati Shrutha Ravindran on the violin, Sri B. Ganapati Raman on the mridangam and Sri N. Sundar on Morsing.
2: कार्यक्रम का प्रारंभ करते हुए चिन्मय भगिनी प्रस्तुत कर रही हैं नाट्य राग और रूपक ताल में हरिकेशनंदन मुत्तैया भागवतर की रचना शक्ति गणपति।
3: द कॉन्सर्ट फॉर टुनाइट बिगिंस विद द कॉम्पोजिशन ऑफ हरिकेशनंदन मुत्तैया भागवतर इन रागा नाट्य सेट टू रूपक तालम शक्ति गणपति।

0: संत्यागराज की रचना ई वसुधा, राग है सहना, ताल है आदि।
1: चिन्मय सिस्टर्स श्रीमती उमा एंड श्रीमती राधिका कंटिन्यूज देयर कॉन्सर्ट विद ई वसुधा, अ कॉम्पोजिशन ऑफ सेंट त्यागराजा इन रागा सहाना सिट्टू आदि तालम।

0: में अब प्रस्तुत कर रही है मां मेरी मीनाक्षी, वराली राग और मिश्र चाकुताल में मुत्तुस्वामी दीक्षितर की रचना।
1: चिन्मया सिस्टर्स श्रीमती उमा एंड श्रीमती राधिका फर्दर कंटिन्यूज देयर कॉन्सर्ट विद मां मव मीनाक्षी, अ कॉम्पोजिशन ऑफ मुत्तुस्वामी दीक्षितर इन रागा वराली सेट्टू मिश्र चापू तालम।

0: कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं चिन्मय भगिनी श्रीमती उमा और श्रीमती राधिका का गायन। आपके साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर श्रीमती श्रद्धा रविंद्रन, मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा नरसिंह पर श्री एन सुंदर।
1: इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी आर लिसनिंग टू अ कर्नाटिक क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय चिन्मया सिस्टर्स श्रीमती उमा एंड श्रीमती राधिका। दे आर अकंपनीड बाय श्रीमती श्रद्धा रविंद्र ऑन द वायलिन, श्री बी गणपति रामन ऑन द मृदंगम एंड श्री एन सुंदर ऑन मरसिंग।
0: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चिन्मया भगिनी प्रस्तुत कर रही है मोहन राग और आदिताल में रचना नन्नू पालिंपा, रचनाकार है संत त्यागराज।
1: चिन्मया सिस्टर्स श्रीमती उमा एंड श्रीमती राधिका कंटिन्यूज देयर कॉन्सर्ट विद नन्नू पालिंपा, अ कॉम्पोजिशन ऑफ सेंट त्यागराजा इन रागा मोहनम सेट टू आदितालम।

0: प्रसंग पर श्री एन सुंदर.
1: You just heard to a Thani Avartanam played on the Mrudangam by Shri B. Ganapati Raman and by Shri N. Sundar on Morsing.
0: कार्यक्रम का समापन करते हुए चिन्मय भगिनी प्रस्तुत कर रही हैं जौनपुरी राग और आदिताल में पापनासम शिवम की रचना मुरुगने बजी मनमे.
1: चिन्मया सिस्टर्स कंक्लूड देयर कॉन्सर्ट विद मुरुगने बजी मनमे, अ कॉम्पोजिशन ऑफ पापनासम शिवन इन रागा जौनपुरी सेट टू आदितालम.

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे चिन्मय भगिनी श्रीमती उमा और श्रीमती राधिका का गायन। आपके साथ संगत कर रहे थे वायलिन पर श्रीमती श्रद्धा रविंद्रन, मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा मोरसिंह पर श्री एन सुंदर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के चेन्नई केंद्र में रिकॉर्ड किया गया तथा आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।
1: In tonight's national program of music, you just listened to a Carnatic classical vocal concert by Chinmaya sisters Srimati Uma and Srimati Radhika. They were accompanied by Srimati Shweta Ravindran on violin, Sri B. Ganapati Raman on mridangam, and Sri N. Sundar on mursing. With that, we come to the end of tonight's national program of music. This program was recorded at the studios of Akashvani Chennai and was broadcast from Akashvani Delhi.
2: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर रात 12 बजे हैं।

होंगे। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का

0: श्री मोदी ने ये बात कही।
1: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनी है। पिछले 12 वर्षों में करीब 14,000 नए कॉलेज बने हैं। 4,000 से ज्यादा नई ITI बनाई गई, 9 नए IIM, 7 नई IIT और 13 नए MBA स्थापित किए गए हैं। आज देश में MBBS की सीटें करीब 1,40,000 हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है।
0: श्री मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का अवसर दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में NDA सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। गृहमंत्री अमित शाह ने दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता देने के लिए राज्य आपदा मोचन कोष के केंद्रीय हिस्से की अग्रिम राशि के रूप में 2,117 करोड़ 85 लाख रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर बढ़ने से कटक, पुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा और खुर्दा जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हीराकुंड बांध से 22 फाटकों के माध्यम से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। 10 निचले जिलों में हाई अलर्ट जारी है। 8 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 2,69,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी और अन्य संगठनों को मिली विदेशी फंडिंग की जांच शुरू कर दी है। गृह राज्य मंत्री पंकज भोयर ने कहा कि जांच की जा रही है कि विदेश से प्राप्त राशि का इस्तेमाल कैसे किया गया, जबकि प्रवर्तन निदेशालय भी समानांतर जांच कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर राशि का इस्तेमाल गैर कानूनी गतिविधियों के लिए किया गया है तो उचित कार्रवाई की जाएगी। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 12 स्वर्ण, 16 रजत और 8 कांस्य पदकों सहित कुल 36 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, प्रिया घंघास, अरुधंती चौधरी और सचिन सिवाच ने अपने अपने फाइनल मुकाबलों में शानदार जीत हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।